ये आकाशवाणी है एफएम एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आश्विन माह की 17वीं तिथि, तदनुसार 9 अक्टूबर सन 2026। इस समय सुबह के 8:55 होने को है। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 8:57 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर, और भक्ति संगीत वंदना का समय रहेगा सुबह 9:20 पर। श्रोताओं, सुबह 9:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इनसे मिले के अंतर्गत दंत रोग कारण एवं निराकरण विषय पर डॉक्टर हापुराम से अशोक कुमार गोयल की बातचीत। गाने पुराने जमाने की फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 10 बजे, और सुबह 10:30

20 मिनट पर समय रहेगा गाने नए, तराने नए, फिल्म संगीत। युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5 बजे और कार्यक्रम महिला जगत आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। शाम 6:05 पर समय रहेगा फिल्म संगीत का और कार्यक्रम माटी के स्वर आप सुनेंगे शाम 6:20 पर। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती बाड़ी आप सुनेंगे शाम 7 बजे और NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग समय रहेगा शाम 7:30 पर। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गजलें और कव्वालियां, गाने नए जमाने के फिल्म संगीत का समय रहेगा रात्रि 8:30। सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 9 बजे। रात्रि 9:25 पर समय रहेगा विशेष कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में कार्यक्रम श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9 बजने को है। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कैंसर दवाइयों की कीमतों में कमी के उद्देश्य से गैर अनुसूचित दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले मार्जिन पर सीमा तय की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला तथा बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कल सभी पंचायत समितियों पर प्रत्याशी प्रबोधन कार्यशाला आयोजित की जाएगी और बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास तरंग शक्ति के दौरान जोधपुर में एयर शो आयोजित लड़ाकू विमानों और एरोबेटिक टीमों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले मार्जिन पर सीमा तय कर दी है, जो एमआरपी पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने की संभावना है। इससे कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। अनुसूचित सूची में शामिल आवश्यक कैंसर दवाओं पर पहले से ही सरकार द्वारा निर्धारित सख्त अधिकतम मूल्य सीमाएं लागू हैं। वहीं ये नया निर्णय मार्जिन सीमित करके गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं को भी मूल्य संरक्षण प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला तथा बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल शुरू हुए इस सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। उपमुख्यमंत्री और महिला तथा बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने शिखर सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने राजस्थान में महिला सशक्तिकरण, बाल कल्याण, बालिका शिक्षा, पोषण और आंगनबाड़ी सेवाओं के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों और नवाचारों की जानकारी दी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को सशक्त बनाने

0: बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में कल जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है। जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिषद द्वारा अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी परिषद की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए किए गए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कोटा स्थित चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध बजरी खनन रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपने कोटा प्रवास के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने अवैध खनन रोकने के लिए संयुक्त कार्य योजना बनाने और गश्त बढ़ाने को कहा। साइबर थानों में मामलों की समीक्षा के दौरान उन्होंने बैंकों और पुलिस के बीच तालमेल बढ़ाकर साइबर धोखाधड़ी से पीड़ितों की राशि बचाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने न्यू मैल का सुधार के निर्देश दिए। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अब बाघों के साथ साथ लेपर्ड की गतिविधियों पर भी अत्याधुनिक तकनीक से नजर रखने की तैयारी है। वन प्रशासन लेपर्ड की निगरानी के लिए साइलेंट डिवाइस और हाई ट्रैक सेंसर लगाने की कवायद कर रहा है। रणथंभौर के मुख्य वन अधिकारी मानस सिंह ने बताया कि इन उपकरणों के जरिए आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आने वाले वन्य जीवों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी ताकि ग्रामीणों को समय रहते सतर्क किया जा सके।
1: बहुत से ऐसे डिवाइसेज लगाए गए हैं, उनका हम परीक्षण और ट्रायल अभी कर रहे हैं, जिसमें एक सायरन डिवाइस है जो जैसे ही लेपर्ड का मूवमेंट होता है वो आसपास के घरों में सायरन बजता है और उनको एक बार सूचना मिल जाती है कि कोई लेपर्ड का मूवमेंट है, घर के आसपास चल रहा है। इसी तरीके से हम इंटीग्रेटेड लोकल एरिया नेटवर्क में जो हमारा कैमरा ट्रैप नेटवर्क है जो डेडिकेटेड सिर्फ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के लिए होगा, उसको भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे ही कोई टाइगर या लेपर्ड का मूवमेंट होता है वो हमें मोबाइल फोन पर सूचना देते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कल सभी पंचायत समितियों में प्रत्याशी प्रबोधन कार्यशाला आयोजित की जाएगी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के मद्देनजर होने वाली इन कार्यशालाओं में रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी तथा संबंधित अधिकारी संभावित प्रत्याशियों को नामांकन प्रक्रिया और चुनाव संबंधी दिशा निर्देशों की जानकारी देंगे। साथ ही मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका के बारे में भी बताया जाएगा। इससे पहले कल पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के पहले चरण की लोक सूचना जारी होने के साथ ही नामांकन जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में अजमेर, अलवर, जोधपुर, कोटा, नागौर और उदयपुर सहित 16 जिलों में जिला परिषद सदस्यों और 104 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होंगे। प्रत्याशी 13 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भर सकेंगे, वहीं 15 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य के लिए मतदान 22 अक्टूबर को होगा, वहीं 24 अक्टूबर को पंच और सरपंच पद के लिए वोट डाले जाएंगे। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर चल रहे बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास तरंग शक्ति के दौरान एयर शो आयोजित किया गया। एयरफोर्स डे पर रखे गए इस एयर शो में करीब 13,000 लोगों ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों और एरोबेटिक टीमों का प्रदर्शन देखा। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के 9 विमानों ने विभिन्न फॉर्मेशन बनाए, जबकि सारंग टीम के 5 हेलीकॉप्टरों ने भी प्रदर्शन किया। एयर शो में तेजस, राफेल, सुखोई 30, एमकेआई, एलसीएच, प्रचंड और F-16 विमानों ने अपनी

0: क्षमताओं का प्रदर्शन किया। एयर शो देखने पहुंचे स्कूली छात्रों ने इस अनुभव को यादगार बताया।
1: जैसा कि मैं खुद IAF में जाना चाहती हूँ, दैट्स व्हाई आई एम हियर।
2: मेरा फर्स्ट टाइम है KV2 AFS जोधपुर से, और यहाँ सारे अलग अलग जैसे जर्मनी ऑस्ट्रेलिया के एयरफोर्स और फाइटर जेट्स देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल।
1: मेरे को जब उड़ते थे तब मैं सोचती थी ये तो बहुत छोटे हैं, लेकिन मैंने पहली बार पास से देखा तब मेरा एक्सपीरियंस सच बता रही हूँ बहुत ज्यादा अच्छा था। एकदम पास से देखे तब पता चला हाँ ये इतने बड़े होते हैं।
3: मेरा मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, कब से मतलब ये एक ड्रीम था कि मैं ऐसे तरंग शक्ति में आऊँ कभी, मतलब यहाँ आते ही मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट दिसंबर 2026 सत्र के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसरशिप या PhD के लिए वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन 28 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कैंसर दवाओं की कीमतों में कमी के उद्देश्य से गैर अनुसूचित दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले मार्जिन पर सीमा तय की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला तथा बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कल सभी पंचायत समितियों पर प्रत्याशी प्रबोधन कार्यशाला आयोजित की जाएगी। और बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास तरंग शक्ति के दौरान जोधपुर में एयर शो आयोजित, लड़ाकू विमानों और एरोबेटिक टीमों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान।

श्री राम, सीता और लक्ष्मण अत्र ऋषि के आश्रम में पधारे हैं। ऋषि ने भक्तिपूर्वक श्री राम की वंदना करके उनसे अपने चरणों में अटूट अनुराग देने की प्रार्थना की। शीलवती तथा विनम्र सीता जी ने ऋषि पत्नी अनुसुईया के चरणों में सिर नवाकर उनका आशीर्वाद मांगा। ऋषि पत्नी सीता जी की विनम्रता देख अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र तथा आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। अनुसुईया जी ने मधुर और कोमल वाणी में सीता जी के स्त्री धर्म पालन का बखान किया।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत वंदना।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओं, आज के कलाकार हैं छोटे मजी शोला और साथी।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
3: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
4: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत वंदना FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम इनसे मिलिए के अंतर्गत दंत रोग कारण एवं निराकरण विषय पर डॉक्टर हापुराम से अशोक कुमार गोयल की बातचीत।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर हापुराम चौधरी, जो कि न केवल एक दंत चिकित्सक हैं बल्कि अपना इनका स्वयं का चिकित्सालय यहाँ संचालित हो रहा है महादेव हॉस्पिटल के नाम से, और साथ में आप विभिन्न सामाजिक सरोकारों से और समाज सेवा से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और नागौर की जनता को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे एक दंत चिकित्सक के रूप में। तो डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, अगर हम दांतों की बात करते हैं तो एक समय था जब लोग दांतों को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे और जो दांतों से संबंधित कोई समस्या होती थी तो उसको इग्नोर करते थे या उसको टालते थे या, लेकिन आज हम देखते हैं कि अधिकांश लोग जो है दांतों की समस्या से किसी न किसी समस्या से पीड़ित हैं, और वो चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हों, चाहे बूढ़े हों, वो किसी न किसी दंत समस्या से जुड़े हुए हैं। और दांत का महत्व तो तब पता लगता है जब एक दांत में थोड़ा सा अगर हल्का सा दर्द भी होता है तो फिर आदमी को भाग के और चिकित्सक के पास जाना पड़ता है। तो इसलिए दांतों को हल्के में लेना वो ठीक नहीं है। ये सबसे पहली बात तो ये है कि दांतों को, जो भी दांत संबंधी कोई समस्या हो तो उसको आप गंभीरता से लें और चिकित्सक से संपर्क करें। अब डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं हमें जानना चाहूँगा कि किस प्रकार की दंत समस्याएँ हैं जो कि आम है, बहुत कॉमन है, जिसके पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं।
2: जी, अपने शास्त्रों में कहा गया है पहला सुख निरोगी काया, जिसमें मैं एक और जोड़ देता हूँ कि जिसमें मुख स्वास्थ्य का दर्पण है। कोई भी प्रॉब्लम होती है सिस्टमिक तो डॉक्टर साहब अपने को यही कहते हैं कि पहले आपकी जीभ दिखाओ, तो ओरल कैविटी या पूरा मुख, तो मैं इसको दंत एवं मुख स्वास्थ्य समस्या कहूँगा।
1: जी,
2: और जो आपने पहले बताया कि पहले लोग इस पर ध्यान नहीं देते थे, तो किसी भी चिकित्सा सेवा को लेकर एक जागरूकता का क्रम होता है, तो समाज पहले जागरूक नहीं था। जैसे जैसे आर्थिक सामाजिक स्तर लोगों का बढ़ा है, उसी के हिसाब से दंत एवं मुख संबंधी स्वास्थ्य को लेकर भी लोगों की जागरूकता बढ़ रही है, और
1: जी
2: इस मतलब अभी बहुत अवेयरनेस आ रही है लोगों में।
1: जी, लेकिन किस तरह के पेशेंट अभी आप क्या समझते हैं कि दांतों की कौन सी समस्या है जो कि बहुत ज्यादा जो लोगों को प्रभावित कर रही है?
2: दांतों में अपन आंकड़ों के हिसाब से जाएं तो एक तो डेंटल केरीज और दूसरा जो अपन पायरिया बोलते हैं,
1: जी
2: ये बहुत कॉमन समस्या है। तो डेंटल केरीज और पायरिया दोनों ही अपन जब मुंह को या दांतों को साफ नहीं करते समय से, तो उसके कारण ये होती है।
1: जी,
2: एक हमारे मेडिकल साइंस में टर्म आता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
1: जी,
2: बचाव ही उपचार है।
1: जी,
2: तो मेरा ये मानना है, मैं आपके समाधान भी बता देता हूँ कि हर एक, जैसे बच्चे के दांत उगते हैं
1: जी,
2: और बुढ़ापे में जब दांत गिरते हैं, चाहे मुंह में एक भी दांत रहे, तो मेरा ऐसा मानना है कि दोनों टाइम दांतों को साफ करना चाहिए। वो चाहे ब्रश से करें, चाहे अंगुली से करें, दोनों समय।
1: अच्छा,
2: सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले।
1: तो ये तो मतलब दांतों की देख

0: इस्तेमाल हम करेंगे तब हम बीमारियों से थोड़े बच सकेंगे। जैसे आपने बताया कि
1: जी
0: बचाव उपचार है, तो बचाव तो बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा सा विस्तार से कि किस प्रकार की जीवन शैली हमारी हो। एक तो आपने बताया कि सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश करना जरूरी है,
1: जी
0: तो ये मैं जानना चाहूँगा कि जो लोगों को सफाई भी किस तरह से हो, ब्रशिंग भी प्रॉपर हो, ब्रश करने का तरीका क्या हो, पेस्ट वगैरह जो हो किस तरह की हो, किस तरह के मंजन होना चाहिए और कितनी देर करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, ये सारी बातें हैं। वरना कई बार जो ब्रश को अगर गलत तरीके से करते हैं तो उससे भी लोगों को समस्या होती है।
1: टूथब्रश की अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, टेक्निक्स हैं, उस पे मैं यहाँ अभी नहीं बता पाऊँगा।
0: जी
1: वो तो हर एक मरीज को अपने दंत चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन पेस्ट कोई भी हो, पेस्ट के कोई ब्रांड का कोई वैल्यू नहीं है,
0: जी
1: कोई भी पेस्ट हो उससे ब्रश करना चाहिए दोनों टाइम, बस दोनों टाइम साफ करना चाहिए
0: जी रात को सोने से पहले जरूर ब्रश
1: जी।
0: करना।
1: और खाने के 1 घंटे बाद, कम से कम 1 घंटे का ड्यूरेशन हो, नहीं तो क्या है, मुंह का माध्यम है वो एसिडिक, अम्लीयता बढ़ जाती है। अगर
0: जी
1: उसी समय अगर ब्रश किया जाए तो पेस्ट में भी अम्लीयता होती है, एसिडिक मीडियम होता है पेस्ट का भी,
0: जी
1: तो
0: जी
1: उससे एसिडिटी बढ़ जाती है और दांतों का क्षरण होता है जो
0: जी
1: कि डबल नुकसान दे सकता है। तो
0: जी
1: भोजन के बाद, शाम के, रात के भोजन के बाद
0: जी
1: 1 घंटे बाद कम से कम ब्रश करना चाहिए,
0: जी
1: या सोने से आधे घंटे पहले ब्रश करना
0: जी
1: चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, आजकल जो है दांतों में केविटी ये बड़ी कॉमन है। बहुत जो लोग हैं वो दांतों की केविटी को लेकर आपके पास आते होंगे चिकित्सक उपचार के लिए, तो ये जानना चाहेंगे केविटी के लिए क्या क्या उपचार हैं। एक RCT भी जो है इसमें काफ़ी आजकल प्रचलन में है। RCT में भी कोई नए इनोवेशन हुए हों, कोई नई तकनीकें आई हों, क्योंकि पहले तो एक समय था जब RCT 5-7 सिटिंग में हुआ करती थी, उसमें क्या कुछ बदलाव आए और यहाँ अपने नागौर में क्या सेवाएं लोगों के लिए उपलब्ध है।
1: अभी केविटी के, उसको भरण, रेस्टोरेशन बोलते हैं इंग्लिश
0: जी
1: टर्मिनोलॉजी, ये है कि रेस्टोरेशन,
0: जी
1: और अपन एकदम देसी भाषा में या गांव की भाषा में या अपन
0: जी
1: लोकल लैंग्वेज में कहें तो दांत को भरना, मसाला भरना, ये टेक्निक्स होती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट
0: ट्रीटमेंट
1: तब करवाना चाहिए जब दांत के इनेमल से आगे डेंटिन भी खराब हो जाए और डेंटिन के साथ पल्प इन्वॉल्व हो जाए।
0: जी
1: दांत की स्ट्रक्चर में 3 महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स होती है एक दांत में।
0: जी
1: सबसे ऊपर होता है ये इनेमल,
0: इनामेल। हाँ तो
1: जो
0: तीसरे स्तर पर पहुंच जाए
1: जब
0: वो
1: इनेमल जब
0: इन्फेक्शन।
1: खराब होता है
0: जी
1: तब अपन उसमें भरवा सकते हैं, मसाला भरवा
0: फिलिंग करवा
1: सकते हैं,
0: सकते हैं। जी
1: फिलिंग करवा सकते हैं, रेस्टोरेशन करवा सकते
0: जी
1: हैं। और डेंटिन भी जब खराब होता है उसका भी डेंटिन रिपेयर भी होता है।
0: अच्छा
1: तीसरा जब आता है पल्प, जब पल्प का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उसको पल्पाइटिस बोलते हैं,
0: जी
1: और पल्पाइटिस भी 2 प्रकार के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल।
0: जी
1: तो दोनों ही कंडीशन में रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जा सकता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में पहले 4-5 सीटिंग का प्रोविजन था, अब सिंगल सीटिंग भी होती है, लेकिन वो सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन पर डिपेंड करता है। कई बार पेरिपिकल एब्सेस हो या सीवियरिटी ज़्यादा हो इन्फेक्शन की तो सिंगल सीटिंग उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो बहुत से कारण होते हैं, वो डेंटिस्ट को ही तय करने देना चाहिए,
0: जी
1: अपनी तरफ से आग्रह या दुराग्रह नहीं करना चाहिए।
0: जी
1: और
0: जी
1: मेरा एक निवेदन है सभी श्रोताओं से, सुधी श्रोताओं
0: जी
1: से, कि गूगल करके नहीं जाएं डेंटिस्ट के पास, या सुनी सुनाई बातों पर, सोशल टाबूज पर, इन पर नहीं जाएं कि दांत ऊपर, दांत
0: जी
1: निकालने पर आंख चली जाती है,
0: जी
1: दांत की सफाई करना से दांत हिलने लग जाते हैं, उन
0: जी
1: चीजों पर नहीं जाएं।
0: जी
1: ऑथेंटिक जो डेंटिस्ट हो, जो
0: जी
1: क्वालिफाइड डेंटिस्ट हो, जो डिग्रीधारी डेंटिस्ट हो। एक समस्या है गोयल साहब, अभी समाज में या बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज में
0: जी
1: झोला छाप डॉक्टरों के भी भरमार है। और दूसरा, जो क्वालिटेटिव डेंटिस्ट नहीं है, जो डिग्री
0: डिग्री भी
1: रेगुलर
0: और
1: नहीं करते, कई बार
0: जी
1: अब सिस्टम की खामियां हैं, अब ज्यादा अपन
0: जी
1: बात
0: जी
1: नहीं करेंगे इन पे,
0: जी
1: कई
0: जी
1: लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये भी एक सिस्टम की खामी है।
0: जी
1: तो ये सरकार का काम है जो भी है,
0: जी
1: लेकिन अपने को अपने डेंटिस्ट की प्रामाणिकता, वो
0: जी
1: सब कुछ तय करते हुए,
0: देखकर।
1: बिना
0: हाँ
1: गूगल ज्ञान लिए हुए, बिना सुने कहे
0: जी
1: डेंटिस्ट की बात पर ही भरोसा करना चाहिए अपने को।
0: जी
1: जी
0: जैसा कि आपने भी बताया कि एक और समस्या दांतों की जो बहुत आम होती है वो है पायरिया। तो ये पायरिया के क्या कारण होते हैं, किस वजह से ये पायरिया होता है और किस प्रकार से इससे बचा जा सकता है कि आप इस समस्या से रूबरू ना हो।
1: डेंटिस्ट्री में इसको, पायरिया को टर्मिनोलॉजी में, जो मेडिकल साइंस की भाषा है, उसमें
0: जी
1: जिंजिवाइटिस और पेरिओडोन्टाइटिस बोलते हैं।
0: जी
1: तो जिंजिवाइटिस का मतलब है मसूड़ों का सूजना। तो पायरिया की शुरुआत होती है मसूड़ों के इन्फेक्शन से। मसूड़ों में इन्फेक्शन होने पर दांत और मसूड़े के बीच में मेल जमने लग जाता है,
0: जी
1: वो फिर मसूड़े को तो इन्फेक्ट करता ही है, मसूड़े की सूजन पैदा करता है। इसके साथ साथ दांत

0: और मसूड़े में गैप पैदा करता है। तो कालांतर में वही चीज फिर जिंजिवाइटिस पेरिओडोंटाइटिस में बदल जाता है, उसमें फिर दांत हिलते हुए दांत गिर भी जाते हैं कई बार।
1: जी जी, तो मतलब वो कोई सी भी हो दंत समस्या, उसको हम गंभीरता से लें और उसको उपचार समय से अगर शुरू कर देंगे
0: जी,
1: तो वो जल्दी वो हम उस ठीक हो जाएंगे और उस समस्या से बाहर निकलेंगे। इसके अलावा डॉक्टर साहब कुछ चीज़ें ऐसी अब हम आपसे जानना चाहेंगे जो कि मतलब हम ध्यान रखें, आम लोग ध्यान रखें, तो वो और कुछ मिथ्स भी होते हैं, कुछ भ्रम भी होते हैं, तो वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है वो भी थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो ये है कि कुछ लोग बहुत जो है रगड़ के और दांतों को साफ करते हैं, वो सोचते हैं कि ज़्यादा सफ़ेद हो जाएंगे बढ़िया रगड़ के करेंगे, तो वो कहाँ तक सही है, मतलब वो चाहे उंगली से करें चाहे ब्रश से। ब्रश से भी कई लोग बहुत प्रेशर से करते हैं, उनका ब्रश के जो होते हैं ब्रिस्टल्स वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, वो हम देखते हैं कि तो उनका ये होता है कि ये सब ज़्यादा अच्छे से करेंगे तो हम जो है दांत बढ़िया साफ रहेंगे, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
0: अपने को सॉफ्ट टूथपेस्ट टूथब्रश यूज करना चाहिए
1: जी,
0: और 2-3 महीने बाद में अपने को टूथब्रश को फेंक देना चाहिए
1: जी।
0: कई लोग बहुत दबाव देके ब्रश करते हैं, उससे नहीं तो दांत सफ़ेद होते हैं न दांत साफ होते हैं
1: जी।
0: एक ब्रश की टेक्निक्स होती है, मैंने आपको पहले भी बताया 7-8 प्रकार की टूथब्रश टेक्निक होती है, वो डेंटिस्ट ही ढंग से बता सकते हैं, लेकिन बहुत जेंटली प्रेस करना चाहिए
1: जी,
0: जिसमें जो अपने कण फंसे हुए हों वो निकल जाए।
1: और एक जो ब्रशिंग करते हैं वो हम पर्टिकुलर कुछ एक दो आगे के दांतों के करके रह जाते हैं, पीछे ऊपर के सब दांतों की ब्रशिंग होनी चाहिए?
0: बिल्कुल, हर दांत की पूरा उसका चारों ओर से साफ करना चाहिए
1: जी, मतलब जो भी ऊपर के दांत हैं, दाढ़े हैं, सबको आपको
0: हॉरिजॉन्टल वर्टिकल
1: जी
0: सारे डायमेंशन में अपने को ब्रश को घुमाना चाहिए दांतों पर
1: जी। एक दांतों की बारे में ये भी है कि बिल्कुल ठंडा पीने के बाद गर्म नहीं पीना चाहिए, गर्म के बाद ठंडा तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, उसमें कुछ समय देना चाहिए, जैसे आइसक्रीम खा के आप चाय पी लो तो वो कितने नुकसानदायक होती है इस तरह की चीज़?
0: देखो ये तो मैं आयुर्वेद पे जाऊंगा, इसमें शरीर की जो वात पित्त की प्रकृति होती है ये ठंडा गर्म का संबंध उससे है
1: जी,
0: दांत की समस्या से उसका कोई लेना देना नहीं है
1: जी।
0: अगर दांत अपने सेंसिटिव हैं तो अपन ठंडा खाते ही गर्म खाएंगे तो उसमें थोड़ा पल्पाइटिस सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिविटी में बदल सकती है
1: जी, जी,
0: तो वो दर्द पैदा कर सकती है
1: जी।
0: बाकी ठंडा और गर्म पे वो तो एक जीवन शैली का निश्चित रूप से वो नुकसान होता ही है
1: जी।
0: जैसे आयुर्वेद वाले ज्यादा जानते हैं, आयुर्वेदाचार्य ये वो प्रतिहार हो जाता है उसके ठंडे के ऊपर गर्म खाना ये प्रतिहार है
1: जी।
0: तो मैं मुख्य फोकस मेरा ये रहता है कि अपने को जीवन शैली में अपना सुधार करना चाहिए बस
1: जी।
0: क्योंकि आजकल खान पान की लोगों की स्टाइल समय सब बदल गया है, पहले आदमी 2 या 3 बार से ज्यादा भोजन नहीं करता था, सुबह का कलेवा हो गया या ब्रेकफास्ट कहते हैं अपन, दोपहर का लंच हो गया गांव में दोपहर ही हो गई और शाम का ब्याड़ू हो गया या डिनर हो गया
1: जी।
0: और इसमें मैं जेनिज्म पे जाना चाहूंगा कि 5 बजे से पहले अगर भोजन हो जाए और उसके बाद कुछ नहीं खाएं तो बहुत अच्छा रहता है
1: जी, बिल्कुल सही
0: और
1: है।
0: पानी ज्यादा पीना चाहिए ये भी मैं आपको साथ में एड ऑन करना चाहूंगा
1: जी। तो हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी है उससे हमारे श्रोताओं को बहुत लाभ मिलेगा और वो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि डूज एंड डोंट्स जो हैं हर जगह होते हैं हर चीज़ जीवन में, तो उनका वो ध्यान रखें कि क्या हमें करना है। ये चीज़ दांतों के ऊपर भी लागू होती है, आँखों पर भी लागू होती है, शरीर के दूसरे अंगों पर भी लागू होती है, जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। तो हमें ये ज़रूर ध्यान होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नियमों का पालन करें और दोनों समय ब्रश करें ढंग से और अपने दांतों की देखभाल ठीक तरह से करेंगे तो हम दंत समस्याओं से बच सकेंगे और डॉक्टर साहब को कम परेशानी उठानी पड़ेगी। आपने डॉक्टर साहब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए के अंतर्गत दंत रोग कारण एवं निराकरण विषय पर डॉक्टर हापूराम चौधरी से अशोक कुमार गोयल की बातचीत FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए गैर फिल्मी गजलें।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गजलें FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मेरे सनम से, आवाज मोहम्मद रफी की, संगीत ओपी नैयर का, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी।

आवाज आशा भोसले की, संगीत आर डी बर्मन का, गीतकार गुलशन बावरा, फिल्म अगर तुम ना होते।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत खयाम के संगीत निर्देशन में बोल शाहिर लुधियानवी के, आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की फिल्म त्रिशूल।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का, फिल्म चोर मचाए शोर।

0: यूं ही तुम मुझसे बात करती हो।
1: आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की फिल्म सच्चा झूठा।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत फिल्म अप्रैल फूल से, आवाज लता मंगेशकर की, संगीत शंकर जयकिशन का और गीतकार हसरत जयपुरी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गाने नए, तराने नए, फिल्म संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म बदलापुर से आवाज़ें रेखा भारद्वाज और अरिजीत सिंह की। संगीत सचिन जिगर का।

0: नेहा, तू इतनी रिलैक्स लग रही है आजकल, क्या सीक्रेट है यार?
1: सीक्रेट नहीं, स्मार्ट मूव है। मैंने लिया है LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
0: ओह रियली, क्या स्पेशल है इसमें?
1: देख, छोटी बचत से बड़ी सेविंग होती है और इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसमें गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है, तीन अट्रैक्टिव ऑप्शंस के साथ, और तो और ऑटो

0: है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये प्लान केवल महिलाओं के लिए है, एक्सक्लूसिव।
1: वाह, मुझे भी लेना है यार LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
0: तो अभी विजिट करें LIC.in या अपनी नजदीकी LIC शाखा में संपर्क करें। LIC, हर पल आपके साथ।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत जुबिन नौटियाल और पलक मुछल की आवाज में फिल्म काबिल।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म फैंटम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गाने नए तराने नए फिल्म संगीत FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: पंकज उदास की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। कलाम था राजेश रेड्डी का, मौसिकी पंकज उदास की, एल्बम का नाम था नबील।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: तलत अजीज की आवाज में ये था कतील शिफाई का कलाम। सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मिताली मुखर्जी की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानी।

0: कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।

सिर को क्यों देखते हो और मेरे पांव की जंजीर को क्यों देखते हो। तुम तो कहते थे मेरी शक्ल से नफरत है तुम्हें, मुझसे छुपकर मेरी तस्वीर को क्यों देखते हो। छुरी से

होने वाला है, हमें तो इन हसीनों की नजर ने मार डाला है। नजर जो उठी तो दुआ बन गई, नजर जो झुकी तो हया बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई, नजर फेर

झूठा तुम्हारा प्यार भी झूठा, तुम्हारी जात भी झूठी, तुम्हारे होंठ भी झूठे, तुम्हारी बात भी झूठी, तुम्हारा हर इरादा हर तमन्ना हर गिला झूठा, तुम्हारे फूल झूठे बाग झूठा, आशियां झूठा, वफा झूठी जफा झूठी, सितम झूठा करम झूठा, कसम है सर से लेकर पांव तक तू ऐ सनम झूठा, तुम्हारा नाम झूठा, तुम्हारा

तुमसे बढ़ के कोई बेमुरवत नहीं, प्यार करने की अब हमको फुर्सत नहीं, मैं तुम्हें याद करने की जिद छोड़ दूँ।

ये दाग भी दौलत है, ये जितनी भी दौलत है सब तेरी बदौलत है। बराबर खफा हो बराबर मनाए, न तुम बाज आओ न हम बाज आए, क्योंकि भीगी जुल्फों को शानों पर झटक कर छोड़ देते हैं, बरसने वाले बादल अपना भी रुख मोड़ लेते हैं। अरे ये हुस्न वाले जब भी लेते हैं अंगड़ाई तो खुदा

0: दिलावर बाबू और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे ये कव्वाली। वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
1: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
0: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
1: जो कल्की का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं करना।
2: तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार।
0: कास्टिंग से जुड़े अनुभव और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।
3: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
4: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: रेखा भारद्वाज की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे संजय आनंद झा। आइए अब सुनते हैं सनसेट पॉइंट एल्बम से भूपेंद्र की आवाज में ये रचना। रचना है गुलजार की, संगीतकार विशाल भारद्वाज।
1: रात कच्ची पड़ रही थी, कोई पंछी पास के पेड़ से उड़ा।
0: ये आवाज गुलजार की है।
1: आसमान की तरफ निकल गया। वो पुल के उस किनारे पर आकर खड़ी हो गई जहां से अगला कदम जिंदगी का आखिरी कदम था। एक भोले भाले भेड़ के बच्चे ने उसे रोक लिया। गडरिए भटकी हुई भेड़ों को राह दिखाते हैं, ईसा भी यही करते थे। उसका हाथ पकड़ के वो उसे अपने घर ले गया। अरे ताल से पानी सूखा है, आसमान तो नहीं सूख गया? फिर मेघ आएगा, फिर जल भरेगा। चल

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भाव

0: हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की।

0: जगजीत सिंह की आवाज थी, जावेद अख्तर के बोल थे। इसी के साथ आज का रंग तरंग प्रोग्राम खत्म होता है।
1: रंग तरंग
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल कर ली है। अशोक आनंद को 13,358 वोट मिले, जबकि उनके करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगुम को 4,876 वोट मिले। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे है, जबकि तमिलनाडु में सत्ताधारी मधुरांतकम में टीवीके और धारापुरम में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार आगे है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार तमिलनाडु विधानसभा के मधुरांतकम और धारापुरम उपचुनावों में सत्ताधारी टीवीके पार्टी दोनों सीटों पर आगे चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े चार डिजिटल प्लेटफॉर्म को चार हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी इंश्योरेंस क्लेम पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में ईडीएआर, वाहन सारथी और इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री सिंगापुर के राष्ट्रपति तरमन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। बातचीत मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, डिजिटल फाइनेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कौशल विकास पर केंद्रित होगी। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने का अनुमान है। केरलम में भारतीय डाक विभाग बहादुरी का परिचय देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्चार के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित कर विशेष आवरण जारी करेगा। कैप्टन स्मिथ ने पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने राष्ट्र के प्रति डाक की समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% से अधिक की तेजी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 787 अंक बढ़कर 72,381 पर, जबकि निफ्टी 254 अंक की बढ़त के साथ 22,486 पर था। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में कल रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिक्काल और उत्तराखंड में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का

0: अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
5: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
6: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
7: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। अनजान के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था। मिस्टर नटवर लाल फिल्म का गाना है ये। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल हैं।

0: खूबसूरत फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। शब्दकार थे गुलजार, संगीतकार राहुल देवबर्मन। विविध भारती से ये है कार्यक्रम यादों की महफिल। सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। फिल्म उमराव जान, आशा भोसले की आवाज, शहर यार के बोल, खयाम की तर्ज।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नेम करोली
2: बाबा। अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब

इजाजत फिल्म का गाना आपने सुना, आशा भोसले की आवाज में गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। ये घर फिल्म का गाना है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें। गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन की तर्ज है।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भाव

0: हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
2: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
0: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सौतन की बेटी इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। रचना थी सावन कुमार की, संगीतकार थे वेदपाल। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब जिद

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 1 बजने को है। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे दुर्घटना दावों से जुड़े चार डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़ें, ताकि फर्जी इंश्योरेंस क्लेम पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में EDAR, वाहन सारथी और इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो शामिल हैं। इनके जुड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट, गाड़ी और इंश्योरेंस के रिकॉर्ड और पहले के क्लेम का इतिहास आसानी से शेयर किया जा सकेगा। इसमें हिट एंड रन के मामले और पीएम राहत स्कीम भी शामिल होंगी। कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी किए EDAR पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें, क्योंकि अभी तक कुछ ही राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया है। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने कुछ इंश्योरेंस कंपनियों के प्रमुखों को कोर्ट के पिछले निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए अवमानना का नोटिस भी जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। प्रदेश में कल तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ में 3 और जयपुर पीठ में 4 विशेष लोक अदालतों का गठन किया गया है। पाली में भी न्यायालय परिसर स्थित विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में लोक अदालत आयोजित होगी। इसमें बिजली बिल, चेक बाउंस, बैंक ऋण और अन्य भुगतान से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जाएगा। तैयारियों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज विश्व डाक दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश में 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। डाक दिवस का उद्देश्य डाक विभाग की पारंपरिक सेवाओं के साथ डिजिटल बैंकिंग, बीमा और पार्सल सेवाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अलवर डाक मंडल की ओर से इस दौरान रैली, क्विज, पत्र लेखन और चित्रकला प्रतियोगिता, डाक चौपाल, वित्तीय समावेशन शिविर तथा नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाएंगे। भरतपुर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही नए डाक बचत और बीमा खाते खोलने तथा आधार संबंधी जागरूकता गतिविधियां हुई। वहीं करौली जिले के सपोटरा उपखंड के करनपुर और मंडरायल के दुर्गम डांग क्षेत्र में डाक विभाग ग्रामीणों तक सेवाएं पहुंचा रहा है। पहाड़ी रास्तों और दूरदराज की बस्तियों में डाक पहुंचाने के साथ विभाग बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में भी मदद कर रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज बूंदी के साइबर थाने का निरीक्षण कर वहां की कार्यप्रणाली और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वे एक दिन के दौरे पर बूंदी पहुंचे थे। साइबर थाने में जिला कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी लक्ष्मीकांत मीणा सहित जिले के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर जिला प्रशासन ने शहर के प्रमुख चौराहों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने की कार्य योजना बनाई है। इनमें रामबाग सर्किल, जेडीए चौराहा और ओटीएस चौराहा शामिल हैं। कार्य योजना के तहत जेडीए, नगर निगम, पुलिस, यातायात विभाग और स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। ये अभियान 30 अक्टूबर तक चलेगा। रामबाग सर्किल और जेडीए चौराहे पर अभियान आज से शुरू हुआ, वहीं ओटीएस चौराहे पर कल से इसकी शुरुआत होगी। डीग जिले में रबी फसलों की बुआई से पहले कृषि विभाग खाद बीज विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों और गोदामों का निरीक्षण कर रहा है। अब तक 13 विक्रेताओं के गोदामों की जांच की गई है। इस दौरान मूल्य और स्टॉक सूची प्रदर्शित नहीं करने तथा किसानों को बिल नहीं देने पर संबंधित विक्रेताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कृषि हब्बल सिंह ने विक्रेताओं को उचित दर पर गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री उपलब्ध कराने और कालाबाजारी तथा टैगिंग से बचने के निर्देश दिए। विभाग ने किसानों को सरसों की बुवाई में डीएपी के बजाय सिंगल सुपरफॉस्फेट और यूरिया के उपयोग की सलाह दी गई।
करौली में 70वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। पीएम श्री स्वतंत्रता सेनानी चिरंजी लाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हो रही इस प्रतियोगिता में 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग के लिए 622 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में दौड़ सहित विभिन्न एथलेटिक्स स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
5: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
6: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
7: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: तो नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं?
9: बस जल्दी से अभी कल।

डाकिया डाक लाया भाई, किसके यहाँ अभी भी डाकिया आते हैं और चिट्ठी ले आते हैं। हमारे घर तो आते हैं और हमें तो आज भी इंतजार रहता है चिट्ठियों का, पत्रिकाओं का, किताबों का। आपको इंतजार रहता है क्या? इंतजार कीजिए और आप कुछ ऐसा कीजिए कि डाकिया आपके घर आपके दरवाजे पर दस्तक दे। थोड़ी स्टाइल बदल गई है। इस गाने में डाकिया साइकिल से आ रहे हैं और लोग दौड़ रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं, लेकिन अब ज़माना बदल गया है। पैदल भी आते हैं, बाइक से आते हैं, ऑटो रिक्शा से आते हैं। बहरहाल इंतज़ार कीजिए तो डाकिया आया करेंगे। और अगर आपको लगता है कि हाँ चिट्ठियां आती रहें तो पहले आप तो लिखिए चिट्ठियां। किसको लिखते हैं आप चिट्ठी, और क्या आज भी कभी किसी मौके पर चिट्ठी लिखते हैं? कुछ खास त्यौहार हैं जहां पर बगैर चिट्ठी के काम नहीं चलता है, जैसे कि राखी का त्यौहार है। बहन भाई को चिट्ठी जरूर लिखती है, भाई बहन को चिट्ठी जरूर लिखते हैं। आप कब किन मौकों पर लिखते हैं? एक श्रोता ने लिखा है कि आपने तो अतीत के गलियारे खोल दिए और मैं हॉस्टल की यादों में खो गई। कैसी चिट्ठियां सभी की आती थी और हम सब बेल बजाने का इंतजार करते थे, चिट्ठियां लेने के लिए उत्सुक रहते थे। जिनकी चिट्ठी नहीं आती थी वो निराश हो जाती थी। हॉस्टल वार्डन हमेशा आश्वासन देती थी कि कल जरूर पत्र आएगा। तो अब जरा बताइए कि ये जो इंतजार वाला लम्हा है, बहुत सारी फिल्मों में भी है। किस फिल्म में खत पढ़ने वाला दृश्य है? किस फिल्म में आपने देखी है कोई फिल्म जिसमें कि पत्र का इंतजार हो रहा है? और वो गाने भी सुझाते चलिए, वो फिल्में भी सुझाते चलिए। और बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। राजेश खन्ना और हेमा मालिनी थे इस फिल्म में, बहुत त्वरित जवाब दिया है। एक श्रोता ने शिकायत लिखी है, भाई पत्र में शिकायतें भी लिखी जाती थी, जैसे कि बहुत सारी बातें, अरे आपने तो चिट्ठी का जवाब जल्द नहीं दिया, इतने दिन हो गए और आप तो आए नहीं, और हमने कितना इंतजार किया, और भी बहुत सारी शिकायतें होती है। आप कौन सी शिकायत किया करते थे? हमारी एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि दो बार डाला कमेंट लेकिन किसी को दिख ही नहीं रहा, शायद आपको भी नहीं दिख रहा है ममता जी। मैं क्या करूं, ऐसा दो तीन दिन में एक बार होता ही है। भाई हमें तो दिख गया, लेकिन शिकायत के अलावा कोई बात भी तो लिखिए कि हम श्रोताओं तक आपकी बात पहुंचा दें, चिट्ठी से जुड़ी हुई। एक श्रोता ने लिखा है कि तेरा खत लेके सनम पांव कहीं रखते हैं हम। फिल्म के इस गाने में नायिका चिट्ठी पढ़कर बेहद खुश है। कभी कभी किसी की चिट्ठी आने पर इस तरह की खुशी मिलती है और दरवाजे बंद कर ऐसे ही हाव भाव हुआ करते थे और किसी के सामने नहीं पढ़ना होता था, उसे छुपाकर ही पढ़ा जाता था, क्योंकि चिट्ठियां भावनात्मक लगाव से जुड़ी होती थी और आंखों को पनीली कर देती थी। तो बताइए जरा कि आपने कौन सा पत्र ऐसा पढ़ा है कि आपको छुपाने की जरूरत पड़ी? किसको लिखा था वो पत्र कि आपने छुपाया? हालांकि बहुत सारे पत्र छुपाकर लिखे जाते थे। बहरहाल चिट्ठियों में फूल भी भेजे जाते थे और गुलाब की पंखड़ी चिपकाई जाती थी और एक विद्यापत्ति आती थी वो भी चिपका दिया जाता था जब कुछ पढ़ने लिखने की बात होती थी। आपने कभी गुलाब या कोई फूल चिपकाकर भेजा है? जरा बताइए। ये तो फिल्म का नाम तो आप बूझ गए, सरस्वती चंद्र। इसमें कौन है हीरोइन? हीरोइन का नाम बूझना है आपको, चाहे तो हीरो का नाम भी बता सकते हैं।

फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। बहुत सारे श्रोताओं से हमने पूछा कि भाई आपने भी कभी फूल भेजा था, तो अभी तक तो जवाब नहीं आया, लेकिन अगर हाँ आपने कभी पत्र में फूल रखकर भेजा था तो ज़रूर बताइए। और फूल मुरझा जाते थे लेकिन उसकी खुशबू बाकी रहती थी, जब कभी कई साल बाद वो चिट्ठी निकाली तो उसमें मुरझाया हुआ फूल, लेकिन ऐसे लगता था वो ताजगी वापस लौट आई है, वो खुशबू वापस लौट आई है। हमने पूछा था कौन है हीरोइन, नूतन। सभी श्रोताओं ने इसका जवाब सही दिया, और मनीष और साथ में सुलोचना भी हैं इस फिल्म में। एक श्रोता ने लिखा है कि बस कुछ ही लम्हों के बाद लाजवाब प्रस्तुति में सुरीला सफर शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही शुरू होगा ममता जी द्वारा पूछे जाने वाले एक से बढ़कर एक दिलचस्प सवालों का सिलसिला। तो हम भी कमर कस के आपके पूछे जाने वाले हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार बैठे हैं, तो फिर दीजिए उत्तर फटाफट। और जब ये हम पहली पूछते हैं तो पहली का जवाब तो आप फटाफट दे ही देते हैं, साथ में ये भी बताते चलिए कि चिट्ठी आप अभी भी लिखते हैं या नहीं, किसका पत्र आपके नाम आया और बड़ा लंबा हुआ करता था पत्र, क्योंकि कई लोग पत्र लंबे लिखने के आदि होते हैं, कि जैसे किसी के घर में भाई होते हैं लंबा पत्र लिखते हैं, कुछ कविताएं भी उसमें लिख देते हैं, कुछ थोड़े से किस्से भी बयां कर देते हैं।

बहुत तफसील से और फुर्सत से पत्र लिखते हैं। ऐसा कोई पत्र आपके पास है, संभाल कर रखा है? आपने कोई चिट्ठी संभाल कर रखी है तो जरूर बताइए। अब जो श्रोता है उन्होंने लिखा है कि आपके द्वारा पूछा जाने वाला पहला प्रश्न शायद यही होगा कि बताइए अपनी पहली बार सबसे पहले खत किसको लिखा था। क्या बात है भाई, जरूर बताइए। और अब दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि बताइए आपने विविध भारती में कभी कोई पत्र लिखा है? बिल्कुल, ये भी हम पूछ रहे हैं। और हमारी ओर से जो आप सवाल कर रहे हैं ये हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, तो जरूर बताइए, क्योंकि हमने तो विविध भारती के नाम पत्र लिखे थे, पत्रावली कार्यक्रम में शामिल भी हुआ था, तो आपकी कोई याद है तो जरूर साझा कीजिए। और मन चाहे गीत कार्यक्रम में भी आप पत्र लिखते ही होंगे, तो वो भी आप बता सकते हैं। और आगे इन्होंने लिखा है कि एक से बढ़कर एक गीत सुनाए जा रहे होंगे और हम भी आनंदित होकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका कि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और शुरू से आखिरी तक इस कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि डाकिया जो खाकी वर्दी में होते थे, बरोठे की कुंडी खड़खड़ाकर जोर की आवाज लगाते थे, सारे घर के लोग सब काम छोड़कर घर के दरवाजे पर दौड़ पड़ते थे। किसकी चिट्ठी है, किसके नाम आई है, फिर डाकिया एक एक करके जो पोस्ट आती थी दे देकर चले जाते थे, फिर सब पहले चिट्ठी पढ़ते थे, बाद में बाकी काम। और बहुत अच्छी बुरी खबर देने का काम तार करता था, पति या घर के और आदमी बाहर काम करते तो पहली तारीख को मनी ऑर्डर का इंतजार बड़ी बेसब्री से होता था। वो हड़बड़ाहट, वो बेचैनी, वो सिर्फ एक डाकिया की वजह से ही संभव होता था। पर अब वो जमाना कहाँ, एक सेकेंड भी नहीं लगते खबर पैसा और हालचाल आदान प्रदान करने में। बिल्कुल सही बात है, रक्षाबंधन में राखी हो या भाई दूज में टीका, सब डाकिया ही बाहर पहुंचाते थे। और डाकिया का बड़ी बेसब्री से इंतजार होता था, डाकिया का लोग स्वागत करते थे उन्हें, गाँव में तो बाकायदा गुड़ की डली ले आते थे, गुड़ और पानी पिलाया करते थे, कई लोग दरवाजे पर अपने खाट बिछाकर उनका स्वागत करते थे। अगर कोई अच्छी खबर ले आते थे तो उनके साथ देर तक गुफ्तगू होती थी, फिर पूरे परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर सुनते थे पत्र। पढ़ने वाला कोई एक होता था, सुनने वाले सभी, और सबकी आंखें नम होती थी, कोई अपने आंचल से आंसू पोंछ रहा होता था, कोई रुमाल से। बहरहाल बहुत सारी यादें, आप अपनी यादें साझा कीजिए। और अब अगला गाना ये

अर्धांगिनी फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज़ से मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, वसंत देसाई का संगीत था। और श्रोताओं ने सही जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि हमें फिल्म का नाम नहीं पता, बता दिया हमने। और एक श्रोता ने लिखा है कि लंबा पत्र प्रेमिकाओं और पत्नी को लिखी जाती थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने अपने गर्लफ्रेंड को गुलाब फूल दिया और वो फूल एक दिन अपने पिता के सामने मिल गया, खोलते समय मैंने बुक में दिया था, अब वो मेरे है। और एक श्रोता ने लिखा है कि पत्रों में फूल आदि चिपका कर देने की असफल कोशिश मैंने भी बहुत बार की है, मगर बदले में हर बार मेरे मुंह पर किसी न किसी का हाथ ही चिपका है। और एक श्रोता ने लिखा है कि चिट्ठी न आने का दर्द बॉर्डर फिल्म में देखा था, और जब चिट्ठी आती है तो पढ़कर सुनाने का वाकया भी बड़ा मजेदार है। गाना बजता है, संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, ये पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। सचमुच ये चिट्ठी वाली बातें और चिट्ठी वाले गाने बेहद मार्मिक हो जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वो खुशबू से भरी चिट्ठियां महका देती थी, रोम रोम को संवेदनाओं से भरे शब्द कितने सुकून भरते थे, और हाँ, हर रोज 11 बजे पोस्टमैन का इंतजार सबको रहता था। और एक श्रोता ने बताया है कि उपन्यास गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी के उपन्यास से बनी फिल्म थी सरस्वती चंद्र। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी मम्मी ज्यादातर खत मामा जी को राखी पर भेजती थी और मुझसे लिखवाती थी। उसमें सबसे पहली लाइन होती थी, आदरणीय मामा जी, यहाँ सब कुशल मंगल, आशा करती हूँ वहाँ भी सब कुशल मंगल से होंगे, मुझे बहुत याद आता है वो सब। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं एक बंगालन हूँ, सिर्फ और सिर्फ विविध भारती के पत्रावली कार्यक्रम में चिट्ठी लिखने के लिए मैं अपने आप बगैर हिंदी की कोई औपचारिक तालीम के हिंदी सीखी, वो भी विविध भारती सुन सुनकर। क्या बात है भाई, बड़ा अच्छा लगा ये जानकर। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत ज्यादा उस दौर में आने वाले हल्के पीले रंग का पोस्टकार्ड और उसके साथ जवाबी पोस्टकार्ड भी साथ में आते थे, जब पोस्टकार्ड को अन्य व्यक्ति भी पढ़ सकते हैं। अंतर्द्वीपीय पत्र जो नीले रंग का चारों तरफ से पैक हो जाता था, उसे दूसरा नहीं पढ़ सकता था। इसके अलावा बैरंग चिट्ठी, ये एक सफेद कागज पर लिखे जाने वाला अपनी व्यथा का पत्र होता था, जिसका पेमेंट पेनल्टी के रूप में जिसके पास पहुंचता था वो अदा करते थे। कई बार बहुत आर्थिक तंगी के कारण भी कुछ चिट्ठियां बैरंग आती थी जो आपको अदा करना पड़ता था, जिसकी कीमत अदा करनी पड़ती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाम अभी भी पत्र आते हैं, वे बहुत अच्छे इंसान हैं, अपने कार्य में बहुत ही कुशल हैं वो जो चिट्ठी पहुंचाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सगाई और शादी के बीच 6 माह का गैप होने के कारण हम दोनों का पत्रों का सिलसिला चला, वो चिट्ठियां हमने आज भी सहेज कर रखी, उस लिफाफे को हमने दिया है अमूल्य निधि, और 36 बरस हो गए। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने अमीन साहनी साहब को पत्र लिखा था। और भी बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं अपनी बातें, अपने जज्बात। तो आप भी अगर आपने नहीं लिखा तो लिखिए और ज़रा बताइए फिल्म का नाम और कौन है हीरो हीरोइन।

कन्यादान फिल्म का ये गाना था और हमने पूछा था कौन है हीरो कौन है हीरोइन। शशि कपूर और आशा पारेख हैं और सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया है। इधर हमने सवाल पूछा नहीं कि उधर जवाब आने शुरू हो गए। वही साथ में अपनी बातें और यादें भी साझा करते चलिए कि किनके पत्र आपने संभाल के रखे हैं। बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि हमने तो आज भी कुछ चिट्ठियाँ संभाल के रखी हैं, क्या आपने भी रखी हैं? वैसे जब ये बात आती है संभाल के रखने की बात आती है तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अब जगह नहीं बची है। भाई बाकी चीज़ों के लिए आपके पास जगह है लेकिन किसी की लिखी चिट्ठी के लिए जगह नहीं है। किसके पत्र आपके पास ज़्यादा आते थे ज़रा ये बताइए, सहेलियों के पत्र, पिता के पत्र, पति का या फिर किसी और का? क्या एक ही शहर में रहते हुए एक दूसरे को पत्र लिखा है? कई बार एक ज़माना था जब लड़कियां बहुत जल्द से घर से नहीं निकलने पाती थी तो वो पत्रों से अपनी बात एक दूसरे से अपनी सहेलियों से साझा करती थी। क्या आपने भी ऐसा किया है? एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पास मेरे पापा जी का पत्र है, अब वो नहीं है पर पत्र में उनकी यादें हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज छत्तीसगढ़ के एक डाकिये की याद आ गई जो ठीक 11 बजे आया करता था। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मैंने विविध भारती के नाम पत्र लिखे मनचाहे गीत में, अब तो पोस्ट कार्ड आसानी से नहीं मिलते हैं और पत्र वाला डब्बा भी नहीं मिलता है, मतलब पोस्ट बॉक्स भी आसानी से नहीं मिलते हैं। भाई अगर शौक है तो विविध भारती के नाम तो आप पत्र लिख ही सकते हैं। वैसे भी अभी लंबी तादाद में श्रोताओं के पत्र आज भी आते हैं मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो पहली बार और सिर्फ एक ही खत मेरी दीदी ने मेरे लिए भिजवाया था मेरी छोटी बहन के हाथों। वो खत आज भी मेरे पास है पर अब न ही मेरी दीदी मेरे साथ है न छोटी बहन। मैं जब भी उसे पढ़ती हूँ आंखें नम हो जाती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आपका खत मिला फिल्म शारदा रामेश्वरी पर ये फिल्माया गया हुआ है, मतलब जो मैंने पूछा था कि कोई फिल्म की सिचुएशन जहां पर खत है पत्र पढ़ा जा रहा है, हकीकत फिल्म में भी एक दृश्य आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि ये बात बहुत हंसी की है, मैं आप सबको लेकिन बताऊंगा। उस समय 16 बरस का रहा होगा, मैंने एक लड़की को चुपके से एक पर्ची में कुछ लिखने के बाद उस पर्ची को किसी बच्चे के हाथों उस लड़की को देने के लिए कहा, लेकिन वो पर्ची लेकर उस लड़की की मम्मी को दे आया। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि ऐसे विषय को आज आपने छेड़ दिया है जिससे 90% श्रोताओं का अतीत जुड़ा हुआ है, अतः सभी अपने अतीत को खंगाल अनुभवों को साझा करने में जुटे हुए हैं, तो जरा जल्दी अतीत को साझा कीजिए क्योंकि अब घड़ी की ओर देखिए 1:30 हो रहे हैं, तो अब आधे घंटे और हैं आपके पास। जल्दी जल्दी अपनी अतीत की बातें साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी का

अहम हिस्सा रहा है। पत्र गांव से शहर पढ़ने आया तब घर वालों से खत के द्वारा ही संदेश का आदान प्रदान होता था और तब उन संदेशों का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था। चलिए अब अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। आपको बूझना है एक बार फिर, कौन है हीरो कौन हीरोइन।

तीन देवियां फिल्म का गाना था और सभी श्रोताओं ने सही बूझा है, देव आनंद और नंदा पर फिल्माया गया था ये गाना और सचिन देव बर्मन का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी का गीत था। और बहुत सारे श्रोता अपनी यादें साझा कर रहे हैं, सचमुच हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी यादें और बातें पढ़ते हुए और आपको पढ़कर सुनाते हुए। ऐसे लग रहा है कि हम भी कोई पत्र लिए हैं, पढ़कर सुना रहे हैं और आप सभी हमारी आंखों के सामने, माइक्रोफोन के सामने बैठे हुए विविध भारती के स्टूडियो में, सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो काफ़ी पत्र उनको लिखा है, मतलब हमारे एक श्रोता ने लिखा है, ये लिखी है ये बात बहुत पहले, पर वे उन्हें संभाल कर रखे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि ये एक तरफा डैश डैश डैश रहा है। भाई पता कर लेना चाहिए था ना चिट्ठियों के माध्यम से।

बाबूजी के खत आज भी मेरे पास संभाल कर रखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक मेरे कमेंट ना पढ़ें कोई बात नहीं, पर विविध भारती से शिकायत वाला पत्र तो पढ़िए। दो अन्य बहनों ने भी विविध भारती के अक्षम में लापरवाही बताई है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि ये शिकायती प्रोग्राम नहीं है। अगर आपको विविध भारती के किसी कार्यक्रम से शिकायत है तो कृपया मेल पर आप शिकायत भेज सकते हैं। ये तो सुरीला सफर इसका नाम है, सुरीली बातें सुरीली गाने। अगर हाँ इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई कोई बात है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें हम शामिल करें ना करें ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कंटेंट बहुत जरूरी है। कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई बात हम जरूर शामिल करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमने आज भी अपना अपॉइंटमेंट लेटर संभाल कर रखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि अब कोई पत्र नहीं भेजता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, हमने तो सबसे ज्यादा पत्र लिखे अपने दादाजी को, वो बहुत रोते थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैंने प्यार किया फिल्म देखी थी तो वो कबूतर वाले गाने को देखकर हमने पोस्ट कार्ड को कबूतर के आकार में काट कर चाचा चाची को पत्र लिखते थे। क्या बात है भाई। एक श्रोता की टिप्पणी है, खत के बारे में मेरी एक याद है जो बहुत ही मजाकिया है। एक लड़के ने मुझे खत लिखा था और मैंने पढ़ने के बाद उसको जमीन में दबा दिया था। उसके बाद मैं भूल गई वो जगह कहाँ थी। क्या बात है भाई, लगता है घर वालों से छुपाई होगी बात। बेहतर बात ये होती कि आप घर वालों को बता देती कि ये पत्र आया है फलाने की ओर से, या जो भी नाम था। बहरहाल चलिए, अब बहुत सारी बातें आ रही हैं और हम गानों के बीच बीच में पढ़ते जाएंगे। जरा ये गाना सुनिए और बूझिए कौन है हीरो कौन है हीरोइन। फिल्म का नाम तो बता ही सकते हैं आप।

शक्ति फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत था, अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया था ये गाना। सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया है इसका भी। एक श्रोता ने लिखा है कि जब खत की बात होती है तो बशीर साहब का एक शेर याद आता है, जिस पर हमारी आंख ने मोती बिछाए रात भर, भेजा तुझे कागज वही हमने

का कुछ भी नहीं। क्या बात है भाई, अब जमाना और है, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए ही मोहब्बत का इजहार हो जाता है, लेकिन उसमें वो रूह नहीं। आज भी हम खत पर विश्वास करते हैं, माँ पिता का पत्र, प्रेमी या किसी सहेली का पत्र, क्योंकि उन पत्रों के शब्दों में होती है आत्मीयता, लिखावट से पता चलती है प्रेषक की तन्मयता, और पत्र पढ़ते समय पत्रों में से झांकता है चेहरा लिखने वाले का। क्या बात है भाई, अब तो मोबाइल के जरिए अगर प्रेम का इजहार होता है तो तुरंत इमोजी के जरिए पता चल जाता है, या तुरंत शब्दों के जरिए, वाक्यों के जरिए। तब जब पत्र लिखे जाते थे, प्रेम पत्र, तो इंतजार होता था, इंतजार में रात भर आंखें तकती थीं कि कब वो उस पत्र का जवाब आएगा। कभी ऐसा भी अनुभव आपके साथ हुआ होगा, और ये इंतजार होता था कि लिखने वाला कब लिखेगा, क्या लिखेगा, जाने कौन सी बात होगी, ये भी जिज्ञासा हुआ करती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र केवल कागज का टुकड़ा नहीं होते थे, उनमें लिखने वाले का प्यार, आशीर्वाद, भावनाओं और स्नेह का स्नेह छिपा होता था। उन पत्रों का इंतजार और उन्हें पढ़ना भी कितना खूबसूरत होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि खत में एक ऐसा शब्द है जो बरसों जैसे लगते हुए इंतजार की घड़ियों को खत्म कर देता जरूर है, पर आगे इंतजार को बहुत पीड़ादायक बना देता है। खत को लिखते हुए हर उस शख्स के उंगलियों का स्पर्श, उनके ख्वाब, उनके भाव और प्यार, सभी उस लिफाफे में बंद होकर हम तक पहुंचाया जाता रहा है, जिसके आते ही धड़कनें बढ़ जाती थीं। सचमुच कुछ पत्र पढ़ते हुए दिल की धड़कनें तेज हो जाया करती थीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या आपने इस गाने के बारे में सोचा था। और हाँ, आगे कुछ श्रोता अगर गाने सुझा रहे हैं तो वो गाना हम आपको सुनवाएंगे। सुनिए ये गाना और बताइए कौन है हीरो, कौन है हीरोइन।

फिल्म थी आए दिन बहार की, आशा भोसले की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया। आशा पारिख

हीरोइन होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि डाक प्रणाली का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, बल्कि इसका विकास प्राचीन सभ्यताओं के साथ धीरे धीरे हुआ है। और बहुत सारे श्रोता अपनी बात लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक गजल याद आती है, प्यार का पहला खत लिखने में देर तो लगती है। सच में ऐसा ही होता था, कई पन्ने फाड़कर खत लिखे जाते थे, सचमुच संतुष्टि नहीं होती थी दोबारा तिबारा। अब तो ऐसा धीरज बचा ही नहीं है, जैसे तैसे एक पत्र लिख दिया बस काफी है, फिर ये समझ में नहीं आता दो लाइन लिखने के बाद कि अब क्या लिखें। एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र की शुरुआत हम करते थे अत्र कुशलम तत्रास्तु। बहुत सारे लोग ऐसे लिखा करते थे, हम भी ऐसे ही शुरुआत करते थे, पहले सामने वाले का नाम और संबोधन, प्रणाम नमस्कार, उसके बाद ये। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मेरा जन्म हुआ उस दिन मेरे दादा ने अपने ही घर के एड्रेस पर शुभकामना का पोस्ट कार्ड भेजा था, ताकि पोस्ट कार्ड पर जो तारीख का स्टैंप लगाया जाता है ये प्रूफ अपने पास रहे। क्या बात है भाई। एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने हेलो फरमाइश आपके अनुरोध पर कार्यक्रम में अपनी बातचीत और अपनी पसंद शामिल होने पर हर बार व्यक्तिगत आभार के पत्र लिखे थे, पर हाँ एक बात जरूर की थी कि किसी महिला प्रस्तुतकर्ता को पत्र लिखा था, तब पते में उनका नाम नहीं पर अन्य कोई साथी उद्घोषक का नाम लिखकर उनको पहली लाइन में विनती की थी। एक श्रोता ने लिखा है कि जब खत की बात होती है तो बशीर साहब का एक शेर याद आता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि इस रक्षाबंधन पर हमने 100 से ज्यादा पोस्टकार्ड अपने सैनिक बंधुओं को लिखे और राखी भेजी थी। क्या बात है भाई, सलाम करते हैं आपकी इस बात को। और एक श्रोता ने लिखा है कि पहली बार जब पत्नी का खत मेरे कॉलेज के पते पर आया, दरअसल शादी के कुछ महीने बाद पत्नी की विदाई हो गई, वे मायके चली गई थी, मैं कॉलेज में पढ़ने में व्यस्त हो गया। अचानक एक दोस्त ने एक खत एक दिन दिया, तुम्हारा खत मेल काउंटर पर रखा है, ले आता हूँ। खत को ले जाकर लाइब्रेरी में कोने में बैठ कर पढ़ने लगा, तमाम शायरी दोहे पढ़ते ही मन ही बदल गया, उनकी याद ने माहौल ही बदल दिया। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं इन्होंने। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का विषय बहुत ही बढ़िया लगा, सुरीला सफर का आज, खतों की बात, मुझे तो गाने भी बहुत सारे याद आ रहे हैं और गानों की फेहरिस्त इन्होंने लिखी है। अब चलिए अगला गीत सुनते हैं, बूझिए जरा फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम भी बूझना है आपको।

हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था और संगीतकार का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। फिल्म थी दुल्हन और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं तो सिर्फ नियुक्ति पत्र ही संभाल के मैंने रखा है। एक की टिप्पणी है निदा फाजली का शेर, सीधा सादा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। क्या बात है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज का सुरीला सफर बहुत बढ़िया लग रहा है, खतों की बात है, मुझे बहुत सारे गाने याद आ रहे हैं और गानों की लिस्ट इन्होंने लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का प्रोग्राम खास है क्योंकि बहुत सारी यादें ताज़ा हो रही हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है कि हम मेरे घर आ रहे हैं, चिट्ठी डाकिया डाक लाया, एक डाक और डाकिया एक दूसरे के पर्याय हैं, दोनों को देखकर चेहरे पर चमक आ जाती थी, और मेरे घर आ रही चिट्ठी आए या ना आए लेकिन हमें इंतज़ार रहता था, डाक वाले का पूरा शहर सम्मान करता था। अब वो ज़माना गुजरे ज़माने में सालों में तब्दील हो गया, दिवाली के ग्रीटिंग कार्ड, शादी के निमंत्रण, कुशलता का समाचार, कोई अन्य खबर, नौकरी से संबंधित सूचनाओं के पत्र भी, और भी बातें, बहुत कुछ यादें ताज़ा हो गई जब लोग चिट्ठी लिखने को कहते और आई चिट्ठी को पढ़कर सुनाया करते थे। तो ऐसी तमाम चिट्ठियां होती थी जब, और ये भी आपको याद होगा कि अड़ोस पड़ोस की महिलाएं जब, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, जिन्हें पत्र पढ़ने नहीं आता था, वो पत्र लेकर आती थी घर में और कहती थी कि ज़रा ये पत्र पढ़कर सुना दो। और उसमें कई बार मजाक भी होता था, बच्चे शरारत भी करते थे, चिट्ठी लेकर भागते थे इधर उधर, वो दादी काकी दौड़ती थी पीछे पीछे, वो भी एक अलग आनंद था। एक श्रोता ने लिखा है कि क्या वो खूबसूरत दौर था जब किसी अपने के नाम चिट्ठी लिखना अपने ही मन के आंगन में उतरने जैसा हुआ करता था, कलम की नोक से कागज़ पर उतरते शब्दों में न जाने कितनी भावनाएं घुल जाया करते थे, शब्द केवल पढ़े नहीं जाते थे बल्कि जिए जाते थे। आज तो डिजिटल युग में उंगलियों के एक स्पर्श से संदेश पहुंच जाते हैं, पलक झपकते ही जवाब आ जाते हैं, लेकिन वो चिट्ठी वाली स्पर्श कहाँ मिलती है। चलिए अब सुनिए ये गाना और बताइए हमें फिल्म का नाम, और गीतकार और संगीतकार का नाम भी पूछिए।

0: हिना फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, गीतकार संगीतकार का नाम हमने पूछा था नक्श लालपुरी और संगीतकार रविंद्र जैन, और आज उनकी याद का दिन है रविंद्र जैन साहब का। तो आज का ये प्रोग्राम का आखिरी गाना उन्हीं के नाम था। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब लिखा है और अभी भी टिप्पणियां आ ही रही हैं श्रोताओं की, पढ़े देते हैं, थोड़ा सा वक्त है। चिट्ठी लाने वाले डाकियों को हर बड़े त्यौहार जैसे होली दिवाली पर विशेष उपहार देकर उन्हें सम्मानित किया जाता था। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने आकाशवाणी जलगांव से प्राप्त ग्रीटिंग कार्ड कुछ दोस्तों के पत्र संभाल कर रखे हैं, और एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने कुछ पुराने खत अभी रखे हैं संभाल कर, मेरी जेब में पड़ा मोबाइल बहुत जलता है इस बात से। क्या बात है भाई। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि चिट्ठियों का इंतजार रहता था, अब जमाना बदल गया है, विश्व डाक सेवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक श्रोता ने लिखा है, गाने की लंबी फेहरिस्त लिखी है इन्होंने, और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि अत्र कुशलम तत्रास्तु से होती थी शुरुआत पत्र की, और चिट्ठी महज कागज का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हृदय की धड़कनों और आपसी प्रेम का लिखित जीवंत दस्तावेज हुआ करता था, जो प्रेम प्रतीक्षा धीरज के रंगों से जुगलबंदी करता हुआ एक भावुक और दिल से दिल को जोड़े रखने के एहसास लिए होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रियतम प्रियजनों से प्रतीक्षा डाकिये की होती थी, पोस्टकार्ड अंतरदेशीय लिफाफों में सिमटे, संवादों का आदान प्रदान ने डाकियों को प्रत्येक घर का सदस्य बना दिया था, गांव में मां की सुनी आंखें, पत्नी की पलकों, पिता की आशा को, इंतजार को, खुशी और मायूसी दोनों डाकिये से ही होती थी। क्या बात है भाई, आप सब ने आज अपनी यादें खंगाली और ताज़ा की हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अब प्रोग्राम का ये सुरीला सफ़र यहीं ख़त्म होता है। सुरीला सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवादक जयंत पात्रेकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 49वीं कड़ी।

0: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह राष्ट्र मंत्र अपना सा लगा। क्रांतिकारियों से लेकर सत्याग्रहियों तक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हर किसी में वंदे मातरम शब्द के प्रति एक आकर्षण पैदा हो गया। इससे यहां के कलाकार भी अछूते नहीं रहे। अवनींद्रनाथ ठाकुर, राव बहादुर धुरंधर, दीननाथ दलाल, रघुवीर मुड़गांवकर और अल्लाह बख्श जैसे अनेक चित्रकारों ने भारत माता के चित्र बनाकर वंदे मातरम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। फिर संगीत क्षेत्र का इसमें पीछे रहना संभव ही नहीं था। संगीत क्षेत्र के दिग्गजों को राष्ट्रीय आंदोलन का आकर्षण होने लगा। इस क्षेत्र के अनेक कलाकारों की राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी की शुरुआत वंदे मातरम से ही हुई। वंदे मातरम के निर्माण से लेकर पिछले 150 वर्षों में भारतीय संगीत क्षेत्र के लगभग सभी नामी कलाकारों ने वंदे मातरम का गायन किया है या उसे संगीतबद्ध किया है। इसमें शास्त्रीय संगीत के नामी घरानेदार गायकों से लेकर आज के रॉक, पॉप, आधुनिक संगीत तक के सभी संगीतकर्मी शामिल हैं। वंदे मातरम ने जिस तरह इतिहास रचा है, उसी तरह वंदे मातरम की संगीत यात्रा भी हैरान करने वाली है।
1: इन सभी रिकॉर्डिंग्स को कालक्रम के अनुसार सुना जाए तो इसमें पिछले 150 वर्षों में भारतीय संगीत के बदलते स्वरूप को सुना जा सकता है। एक ही गीत की इतनी संगीत रचनाएं और इतनी बड़ी संख्या में नामी कलाकारों द्वारा गाया गया वो गीत, ऐसा उदाहरण पूरे विश्व के संगीत इतिहास में किसी अन्य गीत के बारे में देखने को नहीं मिलता है। ऐसा संगीत में सौभाग्य और एकमात्र अद्वितीय गौरवपूर्ण स्थान केवल वंदे मातरम गीत को ही प्राप्त हुआ है। वंदे मातरम की ये संगीत यात्रा मनोरंजक और रोमांचक है। ये कलाकारों द्वारा देश प्रेम के लिए दिखाए गए स्वाभिमान का प्रतीक है।
0: इस गीत को लिखने वाले ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अंग्रेजों की सेवा में डेप्यूटी मजिस्ट्रेट जैसे न्याय विभाग के उच्च पद पर काम कर रहे थे। उसी समय साहित्य के क्षेत्र में उनका काम ऊंचाइयों पर पहुंच रहा था। उनके उपन्यास बेहद लोकप्रिय हो रहे थे। बंकिम चंद्र की गिनती बांग्ला के श्रेष्ठ लेखकों में होने लगी थी। उन्हें संगीत में भी अच्छी रुचि थी। वे उत्तम हारमोनियम बजाते थे, ऐसा उनके मित्रों ने लिख कर रखा है। 1875 में यह गीत लिखा गया। उस समय बंकिम चंद्र जी को संगीत सिखाने के लिए आने वाले यदुनाथ भट्टाचार्य ने वंदे मातरम की पहली संगीत रचना की। जिस आनंद मठ उपन्यास में वंदे मातरम पिरोया गया है, उस आनंद मठ के पहले संस्करण में इस रचना का उल्लेख राग मल्हार ताल कव्वाली के रूप में किया गया है। दुर्भाग्य से इसकी स्वर लिपि उपलब्ध नहीं है। यही यदुनाथ भट्टाचार्य आगे चलकर रविंद्रनाथ के भी संगीत में मार्गदर्शक बने।

उसी दौरान बंकिम चंद्र की तरह ही सरकारी अधिकारी रहे उनके संगीतज्ञ मित्र क्षेत्रनाथ मुखोपाध्याय ने भी वंदे मातरम की एक संगीत रचना की थी। 1882 में नेपाल चंद्र धर नामक युवा गायक ने राग देश और राग मल्हार के मिश्रण वाले देश मल्हार राग में वंदे मातरम की संगीत रचना की थी। 1882 में ही आनंद मठ नाटक में तिलक कामोद राग और छपताल में निबद्ध वंदे मातरम भवानंद की भूमिका करने वाले देवचंद्र बागची इस अभिनेता ने गाया था। संगीत रचना भी उन्हीं की थी। रंगमंच पर हुआ ये पहला सार्वजनिक गायन था। बंकिम चंद्र के निधन के 2 ही साल बाद 28 दिसंबर 1896 को कलकत्ता में हुए राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन की शुरुआत रविंद्रनाथ द्वारा गाए गए वंदे मातरम से हुई। वंदे मातरम का ये सार्वजनिक कार्यक्रम में पहला गायन था। सन 1900 से राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन में नियमित रूप से वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ। 1905 में रविंद्रनाथ ठाकुर की आवाज में वंदे मातरम का पहला रिकॉर्डिंग जारी हुआ। 1905 के बनारस अधिवेशन में सरला देवी चौधुरानी द्वारा गाया गया वंदे मातरम बहुत प्रसिद्ध हुआ।

1905 से 1910 के दौरान नरेंद्र चंद्र मुखर्जी, आर एन बोस, नारायण चंद्र मुखर्जी, हेमचंद्र सेन और सत्यभूषण गुप्ता जैसे बंगाली गायकों की आवाज में वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग्स जारी की गई। विशेष आश्चर्य की बात यह है कि इसी काल में राष्ट्रीय सभा के प्रसिद्ध नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की आवाज में भी वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग निकाली गई। दुर्भाग्य से समय के साथ आज ये रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध नहीं है। वंदे मातरम के उपलब्ध ध्वनि मुद्रणों में सबसे पुरानी नारायण चंद्र मुखर्जी की आवाज में 120 साल पहले की दुर्लभ रिकॉर्डिंग ये है।

0: वंदे मातरम की संगीत यात्रा को देखते हुए पिछली सदी के भारतीय संगीत के बदलते प्रवाह उसमें सुनने को मिलते हैं। वंदे मातरम के प्रसार में बंगाल जितना ही महाराष्ट्र का योगदान भी बड़ा रहा है। जैसे शास्त्रीय संगीत के घराने दिखते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र और बंगाली ऐसे दो संगीत प्रवाह इस यात्रा में स्पष्ट दिखते हैं।
1: बंगाल शैली। वंदे मातरम के संदर्भ में बंगाल शैली को हम बंगाली स्कूल कह सकते हैं, क्योंकि वंदे मातरम का निर्माण जैसे बंगाल में हुआ, वैसे ही वंदे मातरम के संगीत प्रचार की शुरुआत भी बंगाल से यदुभट्ट और रविंद्रनाथ के रूप में ही हुई। रविंद्रनाथ ने संगीत क्षेत्र में जो काम किया है वो उनके नाम से यानी रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम के बिल्कुल शुरुआती दिनों में वंदे मातरम गाने वाले सभी बंगाली गायकों पर रविंद्रनाथ की शैली की छाप स्पष्ट दिखती है।
0: '20 के बाद भी अनेक बंगाली संगीतकारों ने वंदे मातरम की संगीत रचनाएं की। हरिपद चटर्जी, भवानी चरण दास, कमल दास गुप्ता, आर एन भट्टाचार्य, सूर सागर, जगमोहन, राजन सरकार, अनादि दस्तीदार जैसे बंगाली संगीत निर्देशकों ने अपने अपने तरीके से वंदे मातरम को संगीतबद्ध किया, फिर भी उसमें रविंद्रनाथ के संगीत की छाप को कोई भी ज्यादा मिटा नहीं पाया। इसमें अपवाद रहे संगीतकार हैं तिमिर बरन भट्टाचार्य, सुबल दास गुप्ता और हेमंत कुमार मुखर्जी। कमल दास गुप्ता के मातृसेवक दल के नाम से प्रकाशित इस रिकॉर्डिंग में बंगाली खोल और पखावज जैसे वाद्यों का उपयोग करते हुए ध्रुपद गायकी का प्रभाव दिखता है।

विख्यात बंगाली संगीत निर्देशक पंकज मल्लिक द्वारा की गई संगीत रचना तो तत्कालीन फिल्मी रचना जैसी है। उसके वाद्य वृंद के कारण फिल्मिस्तान कंपनी के फिल्मी गीतों की याद आती है। अत्यंत बड़े संगीतकार होने के बावजूद वंदे मातरम की उनकी यह रचना राष्ट्रगीत को न्याय देने वाली नहीं बन पाई है।

इसके अलावा 1950 के दशक की विख्यात गायिका गीता दत्त का जीएम दुर्रानी के साथ गाया हुआ रिकॉर्ड भी कुछ अलग है। इसका संगीत ज्ञान दत्त का है।

0: वंदे मातरम को अत्यंत अलग संगीत रचना में प्रस्तुत करने वाले हेमंत कुमार और तिमिर बरन भट्टाचार्य भी बंगाली ही हैं। वंदे मातरम की संगीत यात्रा में बंगाली संगीतकारों के समान ही मराठी गायकों और संगीतकारों का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
1: सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
2: वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 49वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रेकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रेकर और मंदाकिनी जोशी। वंदे मातरम की दुर्लभ रिकॉर्डिंग्स मिलिंद सबनीस जी के संग्रह से साभार। तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता। प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टांचावडी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना

0: जारी। विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका के पीईआरएम आवेदनों पर लगाए गए प्रतिबंध से मौजूदा H-1B वीजा की वैधता प्रभावित नहीं होगी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का प्रस्ताव दिया है। पुलिस ने इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा है। पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में संवेदनशील स्थानों की ओर भीड़ के अनियंत्रित रूप से बढ़ने की आशंका व्यक्त करते हुए मेट्रो ट्रेनों की संख्या और फेरों को कम करने का भी अनुरोध किया है। जिन मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव है उनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये प्रतिबंध आज से लागू करने का प्रस्ताव है और स्थिति सामान्य होने तक कल तक जारी रह सकते हैं। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर यातायात की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इस बीच विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़कें बंद होने से कल करीब 5,000 यात्री स्टेशन तक नहीं पहुंच सके। प्रभावित यात्रियों में IIT जोधपुर के 56 छात्र भी शामिल थे, जो शाम 4 बजे रवाना होने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस नहीं ले सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कनॉट प्लेस के एक रेस्तरां में आयोजित दोपहर के भोज के बाद विपक्षी सांसद और कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए राजघाट पर एकत्र हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। उन्होंने बताया कि 1 GB डेटा की कीमत 268 रुपये से घटकर 8 रुपये से भी कम रह गई है।
4: 550 million users. भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। इसके बाद भारत पूरी तरह 5G तकनीक पर आधारित नेटवर्क की ओर बढ़ेगा। ये तकनीक 6G की शुरुआत का रास्ता तैयार करेगी। 6G के लिए भारत पहली बार वैश्विक स्तर पर तकनीकी मानक तय करने की प्रक्रिया में शामिल होगा।
0: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सूरत में वस्त्र उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्थानीय उद्योगपतियों ने उन्हें विभिन्न मांगों और सुझावों से जुड़े ज्ञापन सौंपे। श्री सिंह ने देश के प्रमुख विस्कोस वितरकों और बाजार विकास से जुड़ी कंपनियों के निदेशकों से भी मुलाकात की। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल की है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु के वदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ टीवीके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। एक रिपोर्ट।
5: इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। इनके जोड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट, गाड़ी और बीमा के रिकॉर्ड और पहले के दावों के बारे में जानकारी को आसानी से साझा किया जा सकेगा। इसमें हिट एंड रन के मामले और प्रधानमंत्री राहत योजना भी शामिल होगी। न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी किए EDAR पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें, क्योंकि अभी तक कुछ ही राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया है। न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कुछ बीमा कंपनियों के प्रमुखों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन न करने के लिए अवमानना का नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: सरकार ने डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के विज्ञापनों पर नियंत्रण करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत अनुसूची HH1 और अनुसूची X में शामिल दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने की मौजूदा अनिवार्यता को दवाओं की बिक्री और वितरण का लाइसेंस रखने वाली संस्थाओं पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें समान अवसर देने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की थी। पिछले एक दशक में यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
6: भारत में लंबे समय तक कन्या भ्रूण हत्या, लिंग आधारित भेदभाव और बेटियों की शिक्षा में असमानता जैसी गंभीर सामाजिक चुनौतियां रही है। इनसे निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। इसका मूल मकसद केवल बेटी को बचाना नहीं बल्कि उसके जीवन, सुरक्षा, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है। इसके तहत लिंग आधारित भ्रूण हत्या की रोकथाम, लिंगानुपात में सुधार, बेटियों के स्कूल में नामांकन और माध्यमिक स्तर और आगे की पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करना, सुरक्षित मातृत्व तथा मासिक धर्म, स्वच्छता के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर काम करना है। योजना में सरकार, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं और समुदाय को साथ लेकर व्यवहार एवं सामाजिक सोच में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। पिछले एक दशक

0: इस योजना से बेटियों के प्रति आम लोगों की सोच और उनके शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार देखने को मिला है। देश में जन्म के समय प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 2014-15 में 918 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 929 हो गई। वहीं माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 75.51% से बढ़कर 80.2% तक पहुंच गया है। संस्थागत प्रसव भी 61 से बढ़कर 98% से अधिक हो गया है। इस योजना से राजस्थान में भी व्यापक बदलाव आया है। प्रदेश में जन्म के समय लिंग अनुपात 929 से बढ़कर बीते एक दशक में 941 हो गया है। राज्य में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाकर समाज में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार और समाज की ताकत है। 10 साल पहले शुरू हुआ यह अभियान आज केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान और समान अवसर का सामाजिक संदेश बन चुका है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जन सेवा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ कंपनियों के स्थायी श्रम प्रमाणन PERM कार्यक्रम पर लगाई गई रोक H-1B वीजा कार्यक्रम से पूरी तरह अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PERM आवेदनों पर रोक लगाने से मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि इससे प्रभावित कंपनियों के पात्र कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ सकता है। इस मामले में अमेरिका के उपराष्ट्रपति की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल के सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने घोषणा की कि कैप्टन मच्छार के स्वस्थ होने के बाद उन्हें नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 878 अंक बढ़कर 72,471 पर, जबकि निफ्टी 282 अंक की उछाल के साथ 22,514 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दक्षिण आंध्रीय कर्नाटका और उत्तराखंड में भी आज ऐसी स्थिति रह सकती है। इस बीच कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया अनार कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टांचावडी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं
3: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
4: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
5: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
6: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
5: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
6: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
5: पर रेरा तो शहरों में।
6: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर

0: सेल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में राजा मेहदी अली खां का लिखा एक गाना। फिल्म थी वो कौन थी और संगीतकार थे मदन मोहन। सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत, मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे थे फागुन फिल्म का गाना, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। कमर जलालाबादी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
4: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
5: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
4: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नागिन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: प्रेम धवन का लिखा गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाजों में। फिल्म थी सावन।
1: वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
2: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
1: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
2: जो कल्की का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं
3: करना। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार।
1: कास्टिंग से जुड़े अनुभव और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
6: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गुमराह फिल्म का गाना था महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था। ये महुआ फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज।

महुआ फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। कमर जलालाबादी के बोल थे सोनिक ओमी का संगीत था। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी दोस्त मंजरी वर्मा का कीजिए नमस्कार स्वीकार। हम सभी के जीवन में बचपन की प्यारी यादें जैसे दादी बाबा माता पिता के साथ बिताया वक्त यादों में जुड़ा होता है, और दादी बाबा से सुनी कहानियां या सीख, वही माँ के हाथ का बना खास व्यंजन जो आज तक आपको याद है, आपकी माँ को क्या पसंद है और पिताजी को क्या पसंद है, उस दौर के गलियारों में चलते हैं जहाँ अपनों की यादें आज भी दिल में बसी हैं, जिसे याद करते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है या नम आंखें हो जाती हैं। अब फोन की घंटी बज उठी है, लेते हैं पहली कॉल और देखते हैं किस सखी से होंगी बातें। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद सातुई से बोल रही है रेखा मुखर्जी।
0: रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में, और बहुत अच्छा लग रहा है आपकी पहली कॉल लगी है। तो बताइए आप कैसी हैं?
1: हम ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: हम भी ठीक हैं। ये बताइए कि बचपन की जो यादें होती हैं प्यारी प्यारी से, दादी बाबा के संग माता पिता के संग वो गुजरा हुआ जो दौर होता है, तो उसकी कुछ यादें आप ताजा कीजिए
1: हाँ,
0: हमारे।
1: याद आती तो है, लेकिन सब तो गुजर गया।
0: जी
1: दादा दादी मामी पापा सास ससुर जी सब गुजर गया।
0: तो ये बताइए कि आपको अपनी मम्मी के हाथों का बना हुआ कुछ खाना याद है? वो क्या अच्छा बनाती थी?
1: हाँ, जैसे पीछा का टाइम पीछा बनाता था,
0: जी
1: सब्जी बनाता था,
0: जी
1: इस सब भी मेरे माँ का याद आता है।
0: आप बनाती भी होंगी फिर उनका सिखाया
1: हाँ
0: हुआ।
1: हाँ माँ माँ का पास, मेरा सासू माँ का पास, हम बहुत तरीका तरीका खाना बनाने सीखे, और
0: अच्छा,
1: हमको नया नया खाना बनाने बहुत अच्छा लगती है। जितना अपने से खा के खुश नहीं मिलता है, हम
0: जी
1: दूसरे को खिला के हमको खुशी मिलता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। जिनको खाना बनाने का शौक होता है तो वो मन से बनाती हैं और सामने वाले को भी बहुत अच्छे से दिल से खिलाती हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई। और कुछ अपने पापा के बारे में बता सकती हैं, कुछ यादें उनकी?
1: पापा हमको बहुत कुछ समझाता था,
0: जी
1: कोई चीज का काम तुम करोगी
0: जी
1: तो 10 बार तुमको सोचना होगा, और 1 बार कोई काम तुम कर लेगी तो वह दोबारा नहीं घूमेगा।
0: सही बात है। और ये बताइए, हमारा विविध भारती जो रेडियो स्टेशन है, वहाँ के प्रोग्राम आप कितने सारे सुनती हैं?
1: हाँ हाँ सुनते हैं जी, क्या बोलेंगे, 2 महीना हो जाता है तो मेरा पूरा मन छटपटाने लगती है।
0: जी
1: आज जो रात को जो विविध भारती का गाना होता है ना,
0: जी
1: वो
0: जी
1: भी हम सुनते हैं। शुक्रवार को जो गीत होता है वो भी सुनते हैं हम।
0: अच्छा, क्या बात है, यानी आप बहुत पुरानी श्रोता हैं विविध भारती की।
1: हाँ हाँ हाँ
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बताइए आज आप फिर क्या सुनना चाहेंगी?
1: फिल्म का नाम तेरी मेहरबानियाँ,
0: जी
1: और गाना वैसे ही भी है, तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ। मेरे एक वो कुत्ता था,
0: जी
1: ये वही कुत्ता जब चल गया ना,
0: जी
1: 1 हफ्ता हम लोग कुछ नहीं खाए,
0: हाँ,
1: और ये गाना मेरा दिल में बैठ गया।
0: ओहो सही बात है।
1: मेरा बच्ची भी अभी तक कुत्ता का बारे में रोती है, हमको बोलती है कि माँ जब आप विविध भारती में आप फोन लगाइएगा
0: जी
1: तो माँ ये गाना कभी भी जरूर दीजिएगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम किसी पशु को पालते हैं तो हमारा उनसे बहुत जुड़ाव हो जाता है,
1: जी
0: उसकी यादें तो
1: जी
0: दिल से
1: मैम,
0: कभी जा नहीं सकती हैं। तो हम आपको आपकी पसंद का ये गाना सुनवाते हैं रेखा जी, और फोन कॉल करने के लिए आपको हेलो सहेली में बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं महाराष्ट्र से कोल्हापुर इचलकरंजी से जयश्री पाटिल बोल रही हूँ।
0: जयश्री जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं अपनी जो बचपन की यादें होती हैं, जो आपने दादी बाबा के संग गुजारी हैं या मम्मी पापा के संग गुजारी हैं, उन यादों को हम चाहते हैं कि आप आज हमसे साझा करें।
1: दादी तो नहीं थे हमारे बचपन में, हमारी दादी गुजर गई, लेकिन
0: जी
1: बाबा के साथ एक याद है कि सुबह हमारे बाबा कभी हमें उठाते नहीं थे। सुबह 5:30 बजे आकाशवाणी सांगली केंद्र लगता था ना, तब
0: जी
1: वो रेडियो ऑन करते तो हम सब जाग जाते थे।
0: अच्छा
1: और तब से लेकर आज तक रेडियो इतना भाता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती।
0: क्या बात है, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं कि आप रेडियो कितने प्यार से सुनती हैं और कितने समय तक सुनती हैं। ये बहुत अच्छी सी बात आपने बताई। और आप अपनी पसंद के बारे में बताइए कुछ, या आप क्या कहना चाहती हैं?
1: मैं तो इतना कहूंगी कि आपका वो गीतों भरी कहानी है ना, वो मुझे बहुत भाती है।
0: जी, बहुत अच्छा लगा आपने
1: इतना अच्छा लगता है वो कि आप बीच बीच में जो बोल लेते हो ना, वो मेरे मन को इतना भाता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और मुझे आज इतना आनंद हुआ है कि पूरे 6 महीने हो गए मैं इतना लगातार कोशिश कर रही हूँ, आज जाके मेरा कॉल लगा है अभी।
0: देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि आपकी कॉल लग गई और आपकी मेरे से बात भी हो रही है।
1: और आपके लिए मुझे एक कहना है कि जब भी ऑन करोगे रेडियो तब कुछ भी नया ही पाओगे, ऐसा विविध भारती का है। और संगीत जो रहता है ना,
0: जी
1: सबके दिलों की धड़कन विविध भारती, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। दिन भर रेडियो के सिवा मेरा कोई सखा नहीं रहता, इसलिए सखी भी वही है और सखा भी मेरा रेडियो ही है। इसलिए
0: क्या बात है
1: मैं
0: जी,
1: दिल से यही कहूंगी, जब तक सूरज चांद रहे ना तब तक विविध भारती रेडियो हमेशा बजता रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी प्यारी सी बात कही है। और बताइए, और क्या आपके शौक हैं या क्या आप करना पसंद करती हैं?
1: मैं तो गेहूं और नाचनी का बिस्किट बना के देती हूँ, घर में छोटा सा उद्योग खोल रखा है मैंने। बिजनेस
0: क्या बात है, मतलब घर के लिए बनाती हैं या आप बिजनेस भी करती हैं इसका कुछ?
1: भी करती हूँ मैं, दूसरों को बना के देती हूँ।
0: हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं दिल से आपके लिए कि आपका जो व्यवसाय है ये बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े।
1: दिल
0: जी,
1: खोल के आपके लिए धन्यवाद।
0: लेकिन ये बताइए कि आज आप हेलो सैली में कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: 16 बरस की बाली उम्र को सलाम।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गाना आपने चुना है और हमें ऐसा लग रहा है कि हम 16 साल में पहुंच गए हैं ना।
1: ओके
0: जी, तो चलिए जयश्री जी, आपको आपकी पसंद का गाना सुनाते हैं।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
1: मैं सोनिका बात कर रही हूँ मैडम, हिसार हरियाणा से।
0: सोनिका जी, हेलो सहेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, आपका शहर कैसा है, वहाँ की क्या खास बात है?
1: जी, शहर मेरा बहुत अच्छा है मैडम, साफ सफाई बिल्कुल रहती है वहाँ पे।
0: जी
1: वैसे मैं गांव से हूँ।
0: अच्छा,
1: वैसे जिला तो मतलब मेरा हिसार है, गांव में रहते हैं मैडम। वैसे हम
0: गांव तो बहुत खूबसूरत होते हैं, बड़े हरे भरे खेत होते हैं, है ना?
1: जी मैडम,
0: तो आपके यहाँ क्या होता है काम?
1: हमारे यहाँ पे मैडम फसल में धान वगैरह होते हैं और मैडम नरमा की कपास होती है,
0: अच्छा,
1: गेहूँ भी होती है मैडम।
0: जी दाल गेहूं वगैरह होता है।
1: जी मैडम,
0: और सोनिका जी, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके दादी बाबा या मम्मी पापा की यादों को ताजा करने वाले हैं। आपने जो वक्त गुजारा है उन लोगों के साथ में, तो कुछ उनकी यादें, किस्से, कहानियां, कुछ सीख, वो अगर आपको याद है तो आप हमें बताइए।
1: जी दादा दादी तो मैडम मैंने देखे नहीं,
0: जी
1: ये पहले ही एक्सपायर हो चुके थे।
0: जी
1: पापा भी एक्सपायर हो चुके और मम्मी है भी फिलहाल।
0: तो मम्मी से आपने क्या क्या चीजें सीखी?
1: खाना बनाने में जो डिश होती है मैडम वो
0: जी
1: सीखी मैडम, जैसे आलू के परांठे है, मेरी मम्मी बहुत अच्छे बनाते हैं मैडम, उसी से मैंने सीखा मैडम। मतलब मैं यहाँ पे बनाती हूँ तो बहुत अच्छे बनाते हैं मैडम आलू के परांठे।
0: क्या बात है। और सोनिका जी, ये बताइए कि आपको भी कुछ कढ़ाई कशीदाकारी का शौक वगैरह रखती है क्या आप?
1: नहीं मैडम, मैं ये नहीं करती। जैसे मैं ग्रुप में काम करती हूँ मैडम, हरियाणा में जैसे एक स्कीम है NRLM की तरफ से, तो उसमें जैसे 10 लेडीज होती है, 10 लेडीज इकट्ठा करके उनका समूह बनाते हैं हम।
0: जी
1: और उस समूह में जैसे लेडीज को बचत करना सिखाते हैं, जैसे हर महीने वो 100 रुपए जमा करे या 200 रुपए जमा करे, उनका एक अकाउंट खुलवा देते हैं मैडम किसी नाम से, तो उसका अकाउंट बैंक खुलवा देते हैं। और बैंक से अगर लेडीजों को जरूरत होती है पैसों की तो उनका मतलब लोन वगैरह भी करवा देते हैं मैडम। मैं
0: क्या
1: ये
0: बात
1: काम करती मैडम,
0: जी।
1: कढ़ाई बुनाई का नहीं करती।
0: जी बस सोनिका जी, जो आप काम करती हैं वो तो बहुत अच्छा है कि आप महिलाओं की मदद करती हैं, इस तरह से बचत भी करवाती हैं, खाते भी खुलवाती हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है कि आप लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करती हैं।
1: मैडम हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी यूपी में अमेठी जिले में।
0: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप हमारे विविध भारती के कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
1: मैं मैडम सुबह से सुनती हूँ सखी सहेली और हेलो सहेली, तो मैडम फोन कार्यक्रम तो सुनती हूँ। और जैसे 1 बजे वो कमेंट वाला फेसबुक वाला आता है ना,
0: जी जी जी
1: वो भी कार्यक्रम मैडम सुनती हूँ
0: क्या
1: और उसमें
0: बात,
1: कमेंट भी करती हूँ मैडम।
0: अच्छा, बहुत अच्छा लगा, आप कमेंट भी करती है। और सोनिका
1: जी
0: जी,
1: मैडम,
0: आपको कुछ गाने वाने का भी शौक है क्या?
1: जी गीत मैं सुनती रहती हूँ मैडम, ज्यादातर ओल्ड गीत ही पसंद है मैडम।
0: तो आज जो आप मुझे गाना बताएंगी कि हेलो सहेली में आप ये गाना सुनना चाहती हैं, तो थोड़ा सा गुनगुना के बताइए तो मजा आ जाएगा।
1: एक पत्थर दिल को मैं दिल दे बैठी, यही गीत सुना दीजिए।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना सोनिका जी।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हाँ मैम, मैं मरका खंडा से जिला गोंदिया महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
0: जी, आपका क्या नाम है?
1: वो मिंद्रा नोनार है।
0: तो इंदिरा जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत।

0: है, तो बताइए अपने बारे में कुछ मन की बातें।
1: हाँ मैम, हम ग्राम सालेकसा तहसील में रहते हैं।
0: जी
1: सालेकसा से लगभग 10 किलोमीटर दूर हमारा गांव है
0: जी
1: और
0: और
1: हम खेती किसानी का काम करते हैं मैम।
0: अच्छा, खेती किसानी में आपने खेत में क्या बोया है इस समय?
1: हमने खेत में धान बोया है मैम।
0: अच्छा, बहुत अच्छा है। तो यानी कि फिर आप उसको अपने लिए रख लेती होंगी कुछ, और कुछ भाग आप उसको बाजार में निकाल देती होंगी, बेच देती होंगी, है ना?
1: हाँ मैम, कुछ यानी आधी फसल बेचने के लिए रहती है और आधी फसल खाने के लिए घर में।
0: अच्छा, और बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: परिवार में सास है, दो बेटे हैं और हम पति पत्नी दो जन हैं।
0: क्या बात है, यानी कि भरा पूरा परिवार है। और आज हम बात करने वाले थे कि अपने माता पिता की और दादी बाबा की, या आपकी सास ससुर हैं जो परिवार में, उनकी कुछ यादें जो आप बताना चाहेंगी, क्या आपने उनसे सीखा?
1: हाँ मैम, सीखा तो बहुत कुछ है, काम वाम सीखा है, कुछ खेती किसान का काम सीखे है।
0: जी, बहुत अच्छा लगता है जब कोई बड़ा सिखाता है और हम उस काम को अच्छे से सीख जाते हैं और करने लग जाते हैं, है ना?
1: हाँ मैम,
0: तो आप अपने बच्चों को किस तरह से काम सिखाती हैं?
1: हाँ मैम, बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं,
0: अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे?
1: एक फाइनल ईयर में है, एक फर्स्ट ईयर में है।
0: अच्छा, तो बताइए आप विविध भारती के कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
1: मैम मेरे को हेलो फरमाइश सबसे अच्छा लगता है, और हेलो सहेली, सखी सहेली,
0: जी, क्या बात है।
1: मनचाहे गीत,
0: अच्छा,
1: और सबसे फेवरेट प्रोग्राम हेलो सहेली और हेलो फरमाइश।
0: क्या बात है, यानी कि आज आपके फेवरेट प्रोग्राम में आपकी कॉल लग गई है ना?
1: हाँ मैम,
0: तो बताइए आज आप क्या गाना सुनना चाहती हैं?
1: मुकद्दर का सिकद्दर का, वो साथी रे तेरे बिना बिछे जीना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? प्रिया
1: मैं प्रिया बोल रही हूँ, दिल्ली से।
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। तो बताइए अपने बारे में कुछ हमें।
1: अपनी ऐसे ही प्राइवेट जॉब है, कपड़ों
0: अच्छा, तो किस तरह की आप जॉब करती हैं?
1: की दुकान है, जैसे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं ना,
0: जी जी
1: तो
0: जी यानी कि आप शॉप पे काम करती हैं, तो बहुत अच्छी
1: हाँ जी
0: बात
1: हाँ जी हाँ जी। वीर भारती के
0: जी।
1: सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं
0: एक
1: मुझे,
0: मिनट।
1: इतना पसंद है तो मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं रेडियो भी लेके आई एक नया।
0: अच्छा, कौन कौन से प्रोग्राम आप सुनना पसंद करती हैं?
1: मैं सखी सहेली और जो प्रोग्राम सुनने को मिल जाते हैं तो सारे ही, लगभग रेडियो चलता ही रहता है।
0: क्या बात है। तो अपने बारे में और बताइए कि आपकी पढ़ाई आपने कितनी करी?
1: पढ़ाई तो मैंने बीए बीएड सब कुछ किया हुआ है
0: बीए और बीएड भी कर रखा है।
1: जी।
0: तो बीएड करने के बाद आपने ये नहीं सोचा कि आप टीचर बनने के लिए आगे जाएं?
1: बहुत कोशिश की लेकिन जिस क्षेत्र में जाना चाहते थे जा नहीं पाए
0: कोई बात नहीं, आप जो काम कर रही हैं आप उससे खुश हैं, ये बहुत बड़ी बात
1: जी। बिल्कुल,
0: है ना? बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: गाना अलका याग्निक का है, शायराना सी है जिंदगी की फजा।

0: अंतराल के बाद हम हाजिर हैं, आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैम, मैं जयपुर से रहमाना बानो बोल रही हूँ।
0: रहमाना जी, आप जयपुर से बोल रही हैं, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए अपने बारे
1: थैंक यू
0: में,
1: मैम।
0: अपने शहर के बारे में बताइए, कैसा है आपका जयपुर शहर?
1: जयपुर बहुत अच्छा है मैडम, सब घूमने आते हैं यहाँ पे।
0: पिंक सिटी कहलाता है जयपुर।
1: हाँ, तस्वीर बढ़िया है, आप भी आइए।
0: बिल्कुल, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा बस जयपुर घूमने आएंगे।
1: हाँ मैडम,
0: और बताइए अपने बारे में, क्या करती हैं आप?
1: बस बच्चों को संभालना, घर का काम करना। हम 5 बहनें 1 भाई हैं।
0: जी, तो और आप क्या क्या करती हैं इसके अलावा? कुछ आप कढ़ाई वगैरह करती हों, कुछ
1: हाँ,
0: ऐसा?
1: कढ़ाई भी करती हूँ, साड़ी भी करती हूँ।

0: साड़ी पे सितारे लगाना
1: जी
0: और कड़े जो होते हैं कड़ों पे सितारे लगाना, कड़े पहनते हैं ना
1: जी जी जी
0: चूड़ियों के साथ,
1: लाख
0: वो
1: के कड़े होते
0: लगाते
1: हैं
0: हैं।
1: जो,
0: लाख के कड़े होते हैं जो, वो वाला काम करते हैं हम।
1: मुझे सुनकर के अच्छा लग रहा है कि रंग बिरंगे कड़े होते हैं और उनमें आप नग
0: हाँ
1: वगैरह लगाती हैं।
0: और मैडम फराकों में ना बटन भी लगाते हैं हम,
1: जी जी
0: कमीज होती है ना जो पहनने
1: जी जी
0: की, और क्या कहते हैं कुर्ते होते हैं उस पर बटन लगाती हूँ मैं निशान लगा के। तो
1: क्या बात है। तो एक दिन में कितनी कमीजों में आप बटन लगा सकती हैं?
0: जैसे मैंने 1,000 फराकों में निशान लगाए तो मेरे
1: जी
0: 800 रुपए हो गए।
1: क्या बात है। और खाना क्या बनाती हैं आप? अच्छा,
0: खाना ग्रीन स्टू बनाती हूँ,
1: मीठे में क्या बनाती हैं?
0: मीठे में खीर,
1: अच्छा, खीर यानी किस चीज की खीर बनाती हैं आप?
0: कान की दूध की, और उसमें चावल डालते हैं मैडम।
1: अच्छा, चावल वाली खीर बनाती हैं यानी कि,
0: हाँ
1: तो उसमें मेवा वगैरह डाल के बड़ा स्वाद हो जाता होगा
0: हाँ
1: उसमें तो।
0: हाँ चाहे आप उसमें सवैया डाल लो।
1: हाँ जी, बड़ा अच्छा लगा, मैं तो स्वाद आ गया यहाँ पर बैठे बैठे।
0: आप
1: बिल्कुल
0: आइए खिलाएंगे आपको पका के।
1: बिल्कुल। तो बताइए रहमाना जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? अपनी पसंद बताइए।
0: मैं क्रांति फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ, जिंदगी की ना टूटे लड़ी।
1: क्या बात है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: रही हैं, अपना नाम बताइए।
1: हाँ, मैं सिकंदरा से सुनीता उइके।
0: जी सुनीता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। क्या करती हैं आप?
1: मैं ग्रहणी हूँ दीदी।
0: सुनीता जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपकी यादों को ताज़ा करना चाहते हैं, माता पिता के संग बिताई हुई, दादी बाबा के संग बिताई हुई, तो कुछ यादें हैं जो आप बता सकती हैं?
1: हाँ दीदी, बचपन में तो हम बहुत खेल कूदना ये सब करते थे। मतलब वो खेलते थे, लगा जैसे डिब्बे वाला खेलते थे ना, खो
0: जी,
1: कबड्डी ये सब खेला करते थे।
0: जो सारे खेल होते हैं, लंगड़ी है या सिकड़ी है या रस्सी कूद है ना, इस टाइप के
1: हाँ,
0: खेल।
1: रस्सी कूद है, हाँ, छिपन छिपाई ये सब खेला करते थे। अभी भी मैं अपने बच्चों के साथ कभी कभी खेला खेलती हूँ।
0: जी
1: छोटे हैं तो उनको कभी ज्यादा टीवी नहीं देखना, आप सीख जाओ, मैं आपको ढूंढती हूँ, ऐसा।
0: बिल्कुल,
1: हाँ
0: अपने बच्चों के साथ आप उनको अपने समय में जो आप खेल खेला करती थी, वो बच्चों को बताइए कि टीवी बंद करो, मोबाइल हटाओ, और अब मेरे साथ आके तुम लोग ये खेलो खेल। तो उससे क्या होगा,
1: दीदी,
0: एक आपस में जो संबंध बनता है प्यार का बच्चों के बीच में, वो बहुत अच्छा बनेगा। और दोस्त जैसा अगर आप बन के रहेंगी, उनके साथ खेलेंगी, इंजॉय करेंगी, तो वो बच्चे भी बहुत खुश होंगे, है ना?
1: हाँ, दीदी दीदी दीदी, मैं हम मेरे घर मोबाइल बहुत कम देखते हैं बच्चे, बहुत
0: जी
1: ज्यादा खेलते कूदते हैं।
0: सुनीता जी, ये तो बहुत अच्छा लगा कि आप अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारती हैं, और उससे क्या होता है, बच्चों को एक अच्छी शिक्षा भी मिलती है।
1: हाँ जी, उनके साथ तो आराम तो की थी, मतलब कभी कभी बैट बॉल खेल लेती हूँ ऐसे। हाँ
0: बिल्कुल, आप थोड़ी देर क्या, आप तो एक नियम बना दो कि 1 घंटे हमारे साथ तुम लोग को खेलना है ना? तो आप भी एक्टिव रहेंगी और बच्चे तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना? तो सुनीता जी, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करती हैं?
1: मुझे वो वाला गीत सुना था दीदी, चलो बुलाया आया है, माता ने बुलाया है।
0: जी सुनीता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं अहमदाबाद से जरीना बात कर रही हूँ
0: जरीना जी, और बताइए आप कैसी हैं?
1: जी। मैं अच्छी हूँ। अहमदाबाद
0: अहमदाबाद का मौसम कैसा है इस समय?
1: का मौसम तो अभी गर्मी ज्यादा पड़ रही है जी।
0: अच्छा, और अपने बारे में और कुछ बताइए।
1: मैं स्टोर चलाती हूँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस है मेरा।
0: अच्छा जरीना जी, तो इसमें क्या क्या चीजें आप बनवाती हैं?
1: बनवाती नहीं हूँ, होलसेल में लाती हूँ मुंबई से और यहाँ पे मार्केटिंग करती हूँ। हमारा जो नवरात्र आने वाला है ना, तो
0: जी
1: उसका सीजन चल रहा है। उसमें मैं बैंगल्स है, फिर
0: जी
1: नेकलेस है, वो सब लोग हम लाते हैं
0: जी
1: और उसको बिक्री करते हैं, स्टोर में रखते हैं।
0: क्या बात है, यानी कि सीजन आते ही बिजनेस बहुत तरक्की करता है ना?
1: जी। आप
0: हाँ,
1: मंजरी जी बात कर रही हो ना
0: मैं मंजरी वर्मा बोल रही हूँ
1: जी,
0: जी।
1: बहुत खुशी हुई आपसे बात करके।
0: चलिए, धन्यवाद, अच्छा लगा। जरीना जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: वो गीत नहीं है बल्कि वो भजन है, मैं अम्बे जगदम्बे, क्योंकि अभी नवरात्र आने वाला है ना,
0: जी जी जी जी
1: तो मैं वो गीत सुनना चाहूंगी।
0: जरीना जी, बिल्कुल, आपको हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना, और आपने कॉल किया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं बबीता कुर्मी, जिला सागर।
0: बबीता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, सागर के क्या हाल हैं?
1: बस मैम जी बढ़िया है। आप सुनाओ, आपकी मुंबई की क्या हाल है मैम?
0: मुंबई बहुत अच्छी है, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो बबीता जी, अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: पढ़ाई करते हैं दीदी, और घर में रहते हैं तो माता पिता का हाथ बटाते हैं। जैसे खेती किसानी होती है हम लोगों को यहाँ
0: जी
1: पे, तो
0: जी
1: दीदी उसमें अभी हम लोगों के यहाँ पे वो करता है सोयाबीन और उड़दा बज जाते हैं यहाँ पे उड़द। कभी आओ तो दीदी, यहाँ की मूंगफली है बहुत फेमस अर्जुनी की।
0: क्या बात है। फिर देखिए, जब कभी मौका मिलेगा, ऐसा सौभाग्य होगा, तो जरूर आएंगे और जरूर खाएंगे वहाँ की मूंगफली। मूंगफली के साथ में जो नमक मिलता है, उसका स्वाद भी अलग होता है ना?
1: हाँ दीदी, और दीदी देसी मूंगफली की तो बात ही अलग है दीदी। हम लोगों को यहाँ पे वैसे तो दीदी बुंदेली भाषा जानती हो आप?
0: हाँ जी, बोलिए बोलिए, बुंदेली में क्या कहना चाहती हैं आप?
1: तो बुंदेली में मतलब बोलती तो मूंगफली है जो हम लोगों को वो रहती है यहाँ पे, हर खेतों में लगती है दीदी।
0: जी,
1: यहाँ के दीदी जो बेर होते हैं अभी तो मतलब नहीं फले हैं, यहाँ पे फलने वाले हैं बस।
0: बेर जो उबाल के खाते हैं, छोटे वाले बेर होते ना, लाल लाल।
1: हाँ वो उबाल के वो दीदी जब वो फलते हैं, जब वो पक जाते हैं उनको तुरंत खाते दीदी, इतना अच्छे लगते हैं वो बेर।
0: जी। और बबीता जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो आप बुंदेली में कोई गीत गुनगुना सकती हैं?
1: जी दीदी, बुंदेली में एक छोटा सा गाना है दीदी बेटी के ऊपर से।
0: सुनाइए।
1: बिटिया को अगर बच्चे होने तो बहू का सेना हो, नारी नर की खान कहावे, बिटिया घर को नाम चलावे। आज की बिटिया बहू काल की, परसों माँ बन गए हो। यहाँ पे दीदी ऐसे गाना गाए जाते हैं लोगों की।
0: नहीं, बहुत प्यारा सा गाना है बिटिया के बारे में, कि बिटिया की क्या अहमियत होती है परिवार में।
1: जी दीदी, दीदी सबसे पहले तो आपके लिए और विविध भारती की पूरी टीम के लिए आने वाली नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल, आपको भी हमारी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो
1: जी
0: बबीता जी, आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आज?
1: दीदी, सुहाग फिल्म का गाना सुनवा देना, नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरो वाली।
0: बबीता जी, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

आपके कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। मुंबई का एसटीडी कोड है 022, वो नंबर है 4002466 2, यानी 4002462। दूसरा नंबर है 2867 0288, यानी 2

0: आठ छः सात शून्य दो आठ आठ। तो बस हेलो सहेली में लगाइए ये नंबर्स और कीजिए अपनी दोस्त से बातें। प्रोग्राम हर शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है। आप सुनना ना भूलिएगा हेलो सहेली। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, कभी ना कभी आपकी कॉल लग जाएगी। जिन सखियों की कॉल आज लग गई है उनसे निवेदन है कि 2 महीने तक कॉल नहीं लगाएं। आज हेलो सहेली कार्यक्रम में सहयोग संपादन रहा झरना सोलंकी का और तकनीकी इंजीनियर समृद्धि नायक, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो हेलो सहेली कार्यक्रम से दीजिए अब मंजरी वर्मा को अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
1: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
0: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
1: जो कल्कि का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं
2: करना। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार।
0: कास्टिंग से जुड़े अनुभव और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
4: हाँ जी।
3: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
4: हाँ जी हाँ।
3: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
4: नहीं नहीं अभी नहीं।
3: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: कुछ लिखा
3: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आज हम आपको सुनवा रहे हैं ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर है ममता सिंह का।
2: अब तक आपने सुना आज अचानक ठंड बढ़ गई है, गुनगुनी नरम धूप बदन को सहला रही है। दिव्या अपनी नोटबुक और किताब लेकर हॉस्टल का बरामदा पार करती हुई लॉन में आ गई है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी बनाई डॉक्यूमेंट्री एंटरटेनमेंट चैनल पर अप्रूव हो गई है। चुनौतियां बढ़ गई हैं। कल जब मंच पर प्रणव सर ने सबके सामने हाथ मिलाकर उसे कॉन्ग्रेट्स किया तो कितना रोमांच हुआ था, मारे खुशी के जैसे पंख लगाकर वो उड़ चली हो आकाश में। हर इंसान अपनी बेहद खुशनुमा बात किसी आत्मीय अपने घर वालों से शेयर करना चाहता है, लेकिन दिव्या अपनी खुशी का इजहार किससे करे। जब साइबर क्राइम जैसे विषय पर उसे डॉक्यूमेंट्री बनाने की सलाह दी गई थी तो वो कितना घबराई थी, लेकिन जब प्रणव सर ने उसे छोटी सी बाइट बनाने को कहा तो दोस्तों ने भी फोर्स किया तो उसने ये प्रोजेक्ट ले लिया। प्रोजेक्ट बनाने के दौरान दिव्या को कितनी दिक्कतें पेश आई थीं, कितने पापड़ बेलने पड़े थे। आखिरकार दिव्या के अथक परिश्रम ने रंग लाया और पायलट प्रोजेक्ट तैयार हुआ। उसके सपनों की किताब का पहला अध्याय लिखा गया और उसके नाम डॉक्यूमेंट्री अलॉट हुई। सब्जेक्ट खौफनाक था, चुनौती बड़ी थी। सही मायनों में तो प्रणव सर, जो उसके मेन गाइड हैं, उन्होंने ही काफी सहायता की। रात रात भर जाग जाकर इस

डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग मिक्सिंग की। टीचर्स का ये पैनल और अच्छे दोस्तों का सहयोग और साथ न मिलता तो दिव्या डॉक्यूमेंट्री तो क्या छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी नहीं बना पाती। बचपन से लेकर अब तक के उसके जीवन की ये पहली घटना है जिस पर उसे अपने आप पर गर्व हो रहा है। उसे याद आ गए वो दिन जब क्लास में हर कॉम्पिटिशन उसके लिए सजा थी। वो परफॉर्म ही नहीं कर पाती थी, नजरें नीचे झुकी हुई होती और मम्मी का चेहरा आंखों के सामने होता था। चाचा की बंदिशें आवाज को जब्त कर लेती थीं। काश आज वो अपने घर में होती तो कितना अच्छा होता। घर वालों की याद आते ही दिव्या मायूस हो गई। एक ऐसी तलहटी में पहुंच गई जहां जाने का रास्ता तो है लेकिन वहां से लौटना नामुमकिन। वो दिन जहन में ताजा हो गया। सूर्यास्त हो रहा था। दिव्या उदास होकर रूठ कर कमरे में बंद हो गई थी। दिव्या के लिए इस तरह का संघर्ष रोजमर्रा में शुमार हो गया था। अपनी एक भी बात मनमाने के लिए उसे ऐसे ही रोजाना जूझना पड़ता था। कॉलेज के फंक्शन में डांस और गाने में पार्टिसिपेट करने का सोचना भी पाप था। दिव्या के घर में कॉलेज का मतलब सिर्फ पढ़ाई, किताबें, इम्तिहान पास करना। एक्स्ट्रा करिकुलर की कोई जगह नहीं थी इस घर में। गुड गर्ल बनकर सिर झुकाकर कॉलेज जाना और घर लौटकर रोजाना आने वाले मेहमानों का स्वागत करना और बड़ी निपुणता से घर के कामकाज करना, यही उसकी बेहतरीन जिंदगी थी। अपनी राय दी नहीं कि 10 मिनट का भाषण सुनने को मिल जाता था। दिव्या के घर वाले इतने पारंपरिक और रूढ़िवादी हैं, अरे समय के साथ विचारों की रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी है। विचार, उसूल, ये सब दिव्या के घर वालों के लिए महज किताबी अल्फाज हैं। अक्सर ही दिव्या सपनों की एक चमकीली दुनिया में खो जाती थी जहां युवा मन के रोशन चिराग होते हैं और हर ख्वाब मुकम्मल होता है। हर रास्ते की तयशुदा मंजिल होती है। रास्ते में आई हर अड़चन और रुकावट को युवा मन चुटकियों में दूर भगाना चाहता है। भीड़ के महासागर में मन माफिक मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावटों के पत्थर को दूर भी भगाना पड़ता है। सपने पूरे करने के पीछे के संघर्ष को युवा मन उस वक्त कहां समझ पाता है। उमंग और उत्साह में डूबी दिव्या ने भी संजोया मखमली ख्वाब। ख्वाब की मास कम्युनिकेशन में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करेगी। इसके लिए उसे चाहे जो करना पड़े, घर वालों का विरोध भी वो अफोर्ड कर लेगी। कामयाबी मिल जाना भी कई बार बेहद एकाकी बना देता है। अब सुनिए आगे की कहानी।

इरफान ने घड़ी देखी, उसके लेक्चर का टाइम हो रहा था। वो वहां से चला गया। इरफान के जाते ही दिव्या फिर स्मृतियों की कटीली सघन झाड़ियों में उलझ गई। गोया कोई ऐसी मखमली याद नहीं है जिसके दामन में वो सिर रखकर सुकून पाए, वो नरम स्पर्श से सहलाए। उसकी हर याद कसैली है। 12वीं की पढ़ाई के दौरान दिव्या ने कभी इंडिपेंडेंट होकर कुछ नहीं किया। बड़ा मन होता था डांस में नाटक में हिस्सा लेने का, पर सब कुछ प्रतिबंधित था। तीन भाई बहनों में सौम्या दी सबसे बड़ी, उसके बाद दिव्या और सोनू छोटा। दिव्या के सामने सौम्या दी एक प्रतिमान की तरह थी। हर बात में सौम्या दी का उदाहरण दिया जाता था, सौम्या की तरह बनो, उसे देखो, उसने भी तो पढ़ाई की है, वगैरह वगैरह। दिव्या के घर वालों के मुताबिक सौम्या की अच्छाई के कुछ पैमाने निर्धारित थे, जो दिव्या को कतई गवारा नहीं थे। दिव्या ने जब भी पढ़ाई के अलावा अपने देखे सपनों का जिक्र किया तो सौम्या का उदाहरण सामने पेश कर दिया जाता था। एक बार जब दिव्या ने ऊंची आवाज में कह दिया, सौम्या दी को आखिर क्या मिला, हाँ आधी अधूरी पढ़ाई कर ली, क्या मिला, अब वो अपने घर में ही नौकर से भी बदतर हालत में जी रही हैं। क्या फायदा हुआ इस जिंदगी का, मुझे नहीं बनना है सौम्या, सौम्या सौम्या सौम्या, मुझे टीवी चैनल और फिल्म में काम करना है, मुझे सौम्या दी नहीं बनना है। वाक्य पूरा होता इससे पहले ही मम्मी का जोरदार चांटा गाल पर लगा था। उस दिन दिव्या कमरा बंद करके खूब रोई थी। सौम्या दी को फोन लगाकर बोला था, दी ये क्या किया तूने, तूने कभी घर में किसी बात का विरोध ही नहीं किया, गऊ की तरह तू सहती रही, अभी भी सह रही है। सब चाहते हैं मैं भी सौम्या बनूं, पर मैं नहीं बन सकती दी। तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, फिर भी दिखाती है कि सब कुछ ठीक है, तू बहुत खुश है, तुझे क्या मिलता है सौम्या दी ये नाटक करने में। दी सब ठीक और अच्छे जीवन में फर्क है, जो दीवार तू नहीं तोड़ सकी ना, मैं उसे तोड़कर बाहर निकलकर दिखाऊंगी, मैं उस दीवार से बाहर जाना चाहती हूं।

बारिश का मौसम था। वनडे पिकनिक पर कॉलेज की टीम माल्शेज घाट जा रही थी। कई दिनों की सिफारिश के बाद दिव्या को परमिशन तो मिल गई, पर उससे पहले उसे घर की अदालत के मुकदमे में तमाम जिरह पर खरा उतरना पड़ा था। कितने लोग, कौन कौन जा रहे हैं वहां? वो लड़के संस्कारी और कुलीन तो है ना? लड़कों से जरा डिस्टेंस मेंटेन रखना। हा, वे हाथ मिलाने के बहाने लड़कियों के करीब आते हैं और फिर दोस्ती की कड़ी जोड़ लेते हैं। समझ में आ रही बात ना? पर हमारे यहाँ लड़कों से लड़कियों की दोस्ती नहीं चलती। हम खानदानी लोग हैं। वैसे भी तुम्हें मजबूरी में को एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। समझाइश की ये पुड़िया चाचा ने थमाई थी। चाची ने कपड़ों पर सवाल उठाया था। झरने में भीग जाओगी, पारदर्शी कपड़ों पर लड़कों की नजर फिसलती है। मोटे कपड़े का कॉटन सूट पहनना। समझ गई बच्ची? अब बाइक पर तुम्हारे चाचा के साथ बैठकर हम भी इतना घूमे हैं, लेकिन मजाल क्या कि सिर का पल्लू कभी उतर गया हो। चाची ने ज्ञान की घुट्टी कुछ यूं पिलाई थी। दिव्या ये कहने से नहीं चूकी। चाची, जब विनोद भैया घर से इतनी दूर मनाली 4 दिन के ट्रिप पर गए थे तो ग्रुप में लड़कियां ज्यादा थीं, पता है आपको? लेकिन विनोद भैया से इतनी जिरह किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वो इस घर के सुपुत्र हैं, है ना चाची? जिस घर में सवाल पूछने की मनाही हो, वहां इस जुर्रत की सजा के तौर पर दिव्या को सबके सामने थप्पड़ खाना पड़ा था। जन्म देने वाली मम्मी का तो सबसे बड़ा हक बनता था। वो हाथ पकड़कर बेडरूम में खींचती हुई ले गई थी, लेकिन अंदर जाकर उन्हें जाने क्या हुआ कि वो पुचकारने लगी। बेटी, कुदरत ने लड़के में फासला बनाया है ना, उसे कोई नहीं पाट सकता है। हम संस्कारी लोग इतना आगे नहीं बढ़े हैं बेटा। हम कितनी भी सभ्यता सीख लें, हमारी सोच तुम्हारी पीढ़ी की तरह मॉडर्न और खुली नहीं हो सकती है ना। हमें पता है तू दोहरी जिंदगी जीती है, घर में अलग और कॉलेज में अलग। घर की दहलीज पार करते ही पूरी संस्कृति तेरी बदल जाती है। पर बेटी हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं ना। हम भी तो हिंदी में एमए किए हैं, फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किए थे, लेकिन क्या मिला? वही खाना बनाना खिलाना, घर वालों के काम करना। हम लड़कियों को अपनी राय या सिद्धांत बनाने की आजादी हमारे समाज ने अभी भी हमको नहीं दी है। तेरे पापा और तेरे चाचा की सोच हम नहीं बदल पाएंगे ना बेटी। बस मैं सोच बदलती रहूं, आप लोगों की दकियानूसी रास्तों पर चलती रहूं मम्मी, है ना? यही चाहती हैं आप? क्यों पढ़ाया मुझे इंटरनेशनल स्कूल में? सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया होता तो बेहतर होता। दिव्या आंसू और गुस्से को जज्ब करते हुए बोली, आपको पता है मम्मी, पूरी क्लास में मेरा पहनावा, टिफिन, बोलचाल का तरीका सब कुछ एकदम अलग है, एकदम अलग। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की टांग खींचते हैं। वे कहते हैं मैं हिंदी में इंग्लिश बोलती हूं, पर अब नहीं। मुझे अपने दकियानूसी थोपे गए पिछड़े घिसे पिटे संस्कारों से बाहर आना होगा। आप लोगों की थोपी गई परंपराओं से मुझे अब चिढ़ होने लगी है, उबने लगी हूं मैं। एक तो इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग भरे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है यहां। मैं सारे दोस्तों के घर जाती हूं, पर मैं अपने फ्रेंड्स को घर नहीं बुला सकती, क्योंकि उनमें लड़के भी हैं, है ना? इस घर में मेरे स्वस्थ और आधुनिक विचारों का आखिर गला क्यों घोटा जाता है? इसमें बुराई क्या है? लड़की लड़के सब बराबर है आजकल। ऐसा लगता है कि हम किसी गांव या टापू में रह रहे हैं। आखिर जब आप इतना आगे बढ़ गए हैं तो अपने विचारों में भी तब्दीलियां ले आइए ना। बहरहाल तमाम पूछताछ के बाद आखिर में दिव्या को माल्शेज घाट पर वनडे पिकनिक जाने की अनुमति मिल ही गई। कैसा सुखद था वो सफर। पहाड़ों से उतरती पगडंडी सरीखी पानी की दूधिया पतली धारा, कुदरत के तराशे पत्थरों को स्पर्श करती हुई नीचे आकर एक सुरीला संगीत पैदा कर रही थी। नीचे तक आते आते झरने का वेग इतना तेज हो जाता कि उसके नीचे नहाते हुए बदन चोटिल हो जाए। झरने के सफेद फेनिल पानी को जब दिव्या ने छुआ तो रोमांच से भर गई। झरने में दिव्या ने पूरे ग्रुप के साथ जी खोलकर मौज मस्ती की।
मालशेज घाट की गगनछूती ऊंची पहाड़ियों के खूबसूरत दृश्यों को दिव्या अपने मन में खूब गहराई तक बसा लेना चाहती थी। पहाड़ियों और घाटियों की अनगिनत तस्वीरें उसने अपने मोबाइल में कैद की। बाकी दोस्त जब पहाड़ों के और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उस समय पेड़ों की झुरमुट की ढलान पर बैठकर दिव्या फटाफट कुछ वीडियोस ले रही थी और अपने मोबाइल में वर्ड फाइल खोलकर इस खूबसूरत नजारे का ब्यौरा टाइप कर रही थी। पत्तियों की सरसराहट, जुगलबंदी करती कूकती कोयल की तान रिकॉर्ड कर रही थी। दूर दिखते कचनार गुलमोहर के पेड़ों को जूम मोड पर अपने कैमरे में जीवंत कर रही थी। फूलों की वादियों से आती चंपा चमेली की खुशबू को अपने भीतर वो समो लेना चाहती थी। उस वक्त दिव्या की आंखें गुलाब सी खिली थीं। टी टी करती टिटहरी का गान भी रिकॉर्ड कर रही थी। दिव्या इन वादियों में एक पंछी की तरह उड़ना

0: मन से बहुत बिंदास अल्हड़ दिव्या के चेहरे के पीछे एक संवेदनशील रचनाशील सृजनकर्मी भी छिपा है। शायद उसकी संवेदनशीलता, उसकी रचनात्मकता ही उसे बार बार टेलीविजन की दुनिया में जाने को उकसा रही थी। पहले मास मीडिया की पढ़ाई पूरी करनी है और कम से कम इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट हो ताकि बाद में पीएचडी की जाए और फिर तैयारी से टेलीविजन की दुनिया में काम किया जाए। उसकी तमन्ना है कि वो खुद लिखे और खुद ही प्रोड्यूस करे, सिर्फ धारावाहिक ही नहीं बल्कि एनिमेशन फिल्म भी बनाने के सपने का अंकुर उसके मन में फूट गया था। दिव्या की आंखों में अनगिनत चमकीले सपने परवाज लेते हैं। उसका हर सपना घर वालों के विचारों की वेदी पर झोंक दिया जाता है। उसके घर वालों के लिए ये सब कोरी बकवास के सिवा कुछ नहीं। उनका मानना है कि पढ़ाई कोई भी कर लो, पढ़ाई के बाद ब्याह करके घर गृहस्थी तो संभालनी है, जबकि दिव्या ने गृहस्थी को कहीं तीसरे या चौथे पायदान पर रखा था। पहाड़ों के सर्पीले रास्तों से गुजरते हुए जब दिव्या अपने दोस्तों के साथ लौटने लगी तो सामने से विनोद भैया आते दिखाई दिए। मन तो किया कि झटके से वो गाड़ी में बैठ जाए, लेकिन उन्हें अनदेखा नहीं कर सकी। विनोद भैया आकर दिव्या के कान में फुसफुसाकर बोले,
1: उस लंबू से सट सट कर ताली दे देकर इतना खींचे क्यों निपोर रही थी तू, हैं?
0: विनोद भैया, दिव्या को जलती आंखों से लिलोड़ते हुए विनोद भैया बाइक स्टार्ट करके पल भर में आंखों से ओझल हो गए। दिव्या तिलमिलाकर रह गई।

दिव्या, ओ दिव्या, हाय हाय स्वीट हार्ट, तुझे क्या हुआ? किन ख्यालों में कहाँ खोई है तू? दिव्या, तुझे कब से आवाज दे रही हूं मैं? एवी रूम में सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। ड्रामा की रिहर्सल है और इस बार प्रणव सर और तानिया मैम भी ड्रामा में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना? अच्छी बात, चल चल। ओ अरे हाँ, अरे तेरा लिखा अधूरा ड्रामा इरफान ने पूरा कर दिया। जानती है कितना अच्छा लिखा है उसने? तानिया मैम अपने रोल से इतनी खुश हैं कि उन्होंने इरफान को आज खूब कस के गले लगा लिया। दिव्या की आंखों के सामने वो दृश्य कौन गया जब उसे तुषार से हाई फाई करते हुए विनोद भैया ने देख लिया था। घर जाकर कैसी चुगली की थी उसने, और इस बात को लेकर भी घर में हंगामा हुआ था। चाचा का लंबा चौड़ा भाषण सुनना पड़ा था।

चाचा की डांट एक अनपढ़ की तरह थी जिसे सुनना बुखार सी पीड़ा देता था। उस घर में विनोद भैया की भूमिका महज एक जासूस की थी। अगर घर वाले कॉलेज का ऐसा ओपन माहौल देख लें तो जाने क्या हो जाएगा, दिव्या सोचती है। घर और बाहर की दुनिया कितनी अलग है, कितनी अलग। घर में जो गलत है वही बाहर कॉलेज में नॉर्मल है, रूटीन है। इन सब बातों पर तो आजकल किसी का ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन दिव्या के घर में ये एक तरह का अपराध है, बुराई है ये। चल चल दिव्या, चल, तू ड्रामा की हीरोइन है और जानती है हीरो का रोल कौन अदा कर रहा है, पता है? दिव्या ने कोई उत्साह नहीं दिखाया ये सुनने के बाद भी। अरे बाबा, पूछ तो सही, कौन है, पूछेगी नहीं? दिव्या अपनी पलकें प्रश्नवाचक मुद्रा में ऊपर उठा देती है। प्रणव सर, पता है, प्रणव सर। अनमनी सी दिव्या उठकर अपने रूम की ओर चल देती है। जाते जाते कहती है, राइमा सुनना, सर और मैम को मैसेज दे देना प्लीज, आज मैं रिहर्सल पर नहीं आ पाऊंगी, प्लीज। क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ तुझे, चल ना चल। नहीं, मैं नहीं चलूंगी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, कहते हुए दिव्या बरामदे की ओर मुड़ जाती है। रायमा उसका मन टटोलने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब रहती है। हॉस्टल के कमरे में जाकर दिव्या ड्रामा की स्क्रिप्ट निकालती है। कल तो रिहर्सल में जाना ही होगा। रिहर्सल में नहीं जाऊंगी तो रीडिंग कैसे होगी, और एक रीडिंग बहुत जरूरी है, अपने आप से ही वो गुफ्तगू करती है। आखिर ये चमकीला सपना मैंने ही तो देखा है, मेरे ही सपने का हिस्सा है ये, फिर मेरा मन क्यों घबरा रहा है, क्यों क्यों घबरा रही हूं मैं? अगर अपनों से दूर होने की कसक आज इतनी ज्यादा क्यों सता रही है, आखिर समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? भारी मन से स्क्रिप्ट के पन्ने पलटने लगती है दिव्या, साथ में अपनी डायरी लेकर बैठ जाती है। जब भी मन के भीतर तूफान मचा हो, हवाओं का रुख बार बार एक ही दिशा में भागा जा रहा हो, तो मन को संभालना, समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आज दिव्या का मन खुद से ही जद्दोजहद कर रहा है कि कहीं उसने गलत फैसला तो नहीं कर लिया। अगर डॉक्यूमेंट्री टेलीकास्ट नहीं हुई तो अगले सेमेस्टर के लिए फीस के पैसे कहां से आएंगे? पिछले सेमेस्टर में भी स्कॉलरशिप के पैसे से फीस पूरी नहीं हुई थी। इरफान और रायमा ने मिलकर बाकी फीस ऑनलाइन भर दी थी। उनका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी मैं? अगले दोनों सेमेस्टर में ज्यादा फीस की जरूरत होगी, प्रोजेक्ट वर्क भी ज्यादा होगा। प्रोजेक्ट वर्क में लगने वाली सामग्री बहुत महंगी होती है, कहां से आएगी ये रकम? दिव्या का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। वो जब मन से परेशान होती है तो अपने आप को अकेलेपन के महासागर में डुबो देती है। अपने एकाकीपन से खुद को बाहर नहीं निकालना चाहती। अपनी पीड़ा को वो तार तार महसूस करती है, अपनी बेचैनी को सहलाती है और उससे जूझती भी है। उसे अपने आप पर गुस्सा आता है, अपने हालात पर भी, घर वालों पर भी। लेकिन एकाकीपन के उसके ये लम्हे उसके प्रिय होते हैं। ऐसे में वो या तो अपनी डायरी उठाती है या फिर खिड़की से बाहर खाली खाली नजरों से दूर तक देखती है।

शून्य में देखती हुई वो अपनी डायरी उठाती है। पन्नों के बीच एक मुड़ा तुड़ा कागज मिलता है। मुंबई से वर्धा तक का टिकट होता है, वो भी जनरल टिकट। अजीब थी वो रात, ऊंची अट्टालिकाओं के ऊपर अंधा आसमान, जैसे कुछ नीचे सरक आया हो। आसमान में टंगे चांद और जगमग करते सितारे यूं लग रहे थे जैसे कि दिव्या हाथ बढ़ाकर उन्हें अपने बैग में रख लेगी। खाली आंखों के सामने वो दृश्य तिर जाता है जब घर से अकेली निकल आई थी दिव्या। दिव्या ने बैग में थोड़ा सा सामान रखा था। इरफान और राइमा को भी उसने अपनी योजना के बारे में नहीं बताया था। एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गई थी, लेटर आया, उसे मास कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन मिल गया था। टेलीविजन प्रोडक्शन मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए उसे 5 साल के लिए वर्धा में रहना पड़ेगा। सुनते ही जैसे घर में तूफान आ गया। 5 साल पढ़ते पढ़ते बूढ़ी हो जाओगी, पराए शहर में जाकर कैसे गुजारा होगा तुम्हारा, और किसके साथ रहोगी हैं? वहां न कोई नातेदार न रिश्तेदार। हॉस्टल में रहने के नाम से पापा और चाचा ने ऐसे 10 हादसों का जिक्र किया था जिनकी खबर अखबार में छपी थी। हॉस्टल में रहना लड़कियों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, हम लोग तुम्हें दूसरे शहर जाकर पढ़ाई करने की इजाजत कतई नहीं देंगे। अगले दिन राइमा घर आई थी समझाने। इरफान और तुषार ने भी फोन पर मम्मी से बहुत इसरार किया था। आंटी, दिव्या को जाने दीजिए ना, हम सब साथ रहेंगे, उसकी देखभाल कर लेंगे। दिव्या ने घर वालों को बहुत समझाया, मम्मी मेरे साथ राइमा रहेगी, कोई भी परेशानी होगी तो हम दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेंगे। फिर मम्मी, आजकल तो फोन का जमाना है, मान जाओ ना बात, टेक्नोलॉजी के इस जमाने में हम दिन में कई कई बार बात कर सकते हैं। अरे वीडियो कॉल करेंगे, वेबकैम के जरिए हम एक दूसरे से चैट करेंगे। मम्मी अभी आप भी वीडियो कॉल कर लेती हो ना। मम्मी प्लीज एक बार इजाजत दे दो। बोझिल कदमों से चलती हुई दिव्या का मन अपने करियर के लिए उत्साहित था, लेकिन घर वालों को छोड़कर यूं चुपके से आना उसके कलेजे पर जैसे आरी चल रही थी और वो पीड़ा से कराह रही थी। रास्तों का पता नहीं, नदी के उस पार टिमटिमाते हुए दिए की मध्यम रोशनी, कैसे जाएगी वो उस पार? कोई साथ नहीं, कोई सहयोगी नहीं, सिर्फ एक स्कॉलरशिप के बूते पर पूरी पढ़ाई कैसी होगी, क्या होगा मेरा, कैसे रहूंगी मैं अपने घर वालों के बिना। वो विचारों की गहरी खाई में उतरती गई। चलते चलते दिव्या स्टेशन पहुंच गई थी। सीढ़ियां उतरकर उसने सामने खाली पड़ी एक बेंच पर अपनी काया को जैसे धकेलते हुए बिठा दिया था। प्लेटफॉर्म पर दूर टिकी आंखों के सामने रात का अंधेरा था, गुलाबी ठंड थी, मौसम पर धुंध छाई थी और दिव्या की आंखों पर भी गहरी धुंध थी। दिव्या खाली निचाट आंखों से दूर देख रही थी। डीजल इंजन वाली ट्रेनें आ रही थीं, जा रही थीं। सारी गाड़ियों का वक्त और गंतव्य बिल्कुल निर्धारित था, पर दिव्या की ट्रेन का ना तो नियत समय था और ना ही नियत मंजिल। किस शहर में जाना है ये तो पता है, लेकिन किस ट्रेन से जाना है ये तो दिव्या ने भी नहीं सोचा था। न तो उसके पास यात्रा का टिकट था और न ही पराए शहर में पहुंचने के बाद का कोई ठिकाना। मंजिल इतनी दूर थी कि वो उहापोह में थी। पता नहीं मंजिल मिलेगी भी या नहीं, क्या यूं ही मैं टूटकर घर लौटूंगी? नहीं, यूं टूटकर घर नहीं लौटना है। उस रात कई गाड़ियां आती और जाती रहीं। अंत में अपने भीतर हौसला पैदा करती हुई खुद ही हौसले से डग भरती हुई वो एक ट्रेन में बैठ गई। यही वो टिकट था जिसने उसे वर्धा पहुंचाया था। हाथ में पकड़ा हुआ टिकट कड़कड़ाती सर्दी में भी पसीने से गीला हो गया था। उसे घबराहट सी हो रही थी। वर्तमान की धूप और अतीत का कोहरा, उसने आंखें मिचमिचाकर कसकर अपनी हथेलियां रख ली थीं।
हथेलियों पर कुछ सर्द बूंदें चिपक गई थीं। हॉस्टल की कैंटीन में बजने वाली बेल से दिव्या की तंद्रा टूटी। रोज शाम को चाय के वक्त यही बेल बजती है। कोहरे से डूबी शाम अब अंधेरे की काली चादर ओढ़ रही है। लॉन के लैंप पोस्ट की मध्यम रोशनी किलहटी के उस जोड़े पर झिलमिल कर रही है जिसने अभी अभी बसेरा लिया है। पक्षियों के झुंड पेड़ों की पत्तियों में छिप गए हैं। सोने से पहले का उनका संवेद गान बज रहा है और दिव्या के कान में नाटक के गीत का वो हिस्सा गूंज रहा है जो उसे मंच पर गाना है। इस नाटक की वीडियो रिकॉर्डिंग कॉलेज की लाइब्रेरी में संग्रहित की जाएगी और उसके करियर में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ जाएगा।

गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे थे ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर था ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के ठीक 5 बजे हैं। युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युगवाणी।

0: इरादे हों मजबूत तो रास्ते बन जाते हैं, छोटे छोटे कदम ही बड़े ख्वाब सजाते हैं। जो आज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, वही कल अपनी अलग पहचान बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नेहा नारायण सोनी, और आप सुन रहे हैं युवाओं का अपना कार्यक्रम युववाणी। तो दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं है, उन सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन कुछ नया सीखना और खुद को बेहतर बनाना भी जरूरी है। इसी सोच के साथ आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ऐसी बातें जो आपकी जिंदगी, आपके करियर और आपकी सोच से जुड़ी है। तो दोस्तों, अपने काम को थोड़ा ब्रेक लीजिए और आवाज की वॉल्यूम बढ़ाइए और जुड़े रहिए हमारे साथ साथ साथ ही और साथ ही सुनेंगे कुछ खूबसूरत गीत जो आपके दिन को और भी खुशनुमा बना देंगे। तो बना रहिए हमारे साथ, क्योंकि युववाणी है आपकी बात, आपकी सोच और आपके सपनों की आवाज़। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे विश्व डाक दिवस पर, तो जो कि हर वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज जब एक संदेश भेजने में सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं, तब जरा उस दौर को याद कीजिए जब किसी अपने की चिट्ठी का इंतजार कई दिनों तक किया जाता था। सोचिए दोस्तों, गांव या शहर से दूर रहने वाला बेटा जब अपनी मम्मी पापा को पत्र लिखता था, तो उस कागज के हर शब्द में उसकी भावनाएं होती थी। मम्मी शायद उस चिट्ठी को बार बार पढ़ती थी और पापा उसे संभाल कर रख देते थे। कई बार तो डाकिया घर के दरवाजे पर आते ही परिवार के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, क्योंकि पता होता था कि किसी अपने का संदेश आया है। तो दोस्तों, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दोस्तों, इस संदेश से पहले हमने बात की कि कैसे गांव या शहर से दूर रहने वाला बेटा जब अपने मम्मी पापा को पत्र लिखता था तो उस कागज के हर शब्द में उसकी भावनाएं होती थी। जब कई बार डाकिया घर के दरवाजे पर आते ही परिवार के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, क्योंकि उनको पता होता था कि किसी अपने का खास संदेश आया है। पत्र सिर्फ जानकारी देने का माध्यम नहीं था, बल्कि भावनाओं को महसूस करने का जरिया भी था। उसमें लिखी हुई लिखावट, कागज की खुशबू और इंतजार की बेचैनी, इन सब की अपनी ही कहानी थी। लेकिन दोस्तों, समय बदला और आज हम ईमेल, मैसेजिंग ऐप और वीडियो कॉल के दौर में हैं। अब मम्मी पापा से बात करने के लिए चिट्ठी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, एक क्लिक से संदेश पहुंच जाता है और वीडियो कॉल पर हम उन्हें सामने देखकर बात कर सकते हैं। तकनीक ने दूरी तो कम कर दी है, लेकिन पत्रों से भावनात्मक जुड़ाव जो था वो आज भी बेहद खास है। दोस्तों, तो आज विश्व डाक दिवस पर एक काम ज़रूर कीजिए, अपने मम्मी पापा को एक छोटा सा संदेश भेजिए और बताइए कि आप उन्हें कितना याद करते हैं। कभी कभी कुछ शब्द रिश्तों में बहुत बड़ी मुस्कान ले आते हैं। दोस्तों, यहाँ लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और सुनेंगे ये गीत।

0: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
1: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
2: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
3: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: अरे मीहा, तू इतनी रिलैक्स लग रही है आजकल, क्या सीक्रेट है यार?
5: सीक्रेट नहीं, स्मार्ट मूव है। मैंने लिया है LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
4: ओह रियली, क्या स्पेशल है इसमें?
5: देख, छोटी बचत से बड़ी सेविंग होती है और इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसमें गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है 3 अट्रैक्टिव ऑप्शंस के साथ, और तो और ऑटो कवर भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये प्लान केवल महिलाओं के लिए है, एक्सक्लूसिव।
4: वाह, मुझे भी लेना है यार LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
5: तो अभी विजिट करें LIC.in या अपनी नजदीकी LIC शाखा में संपर्क करें। LIC, हर पल आपके साथ।
6: दोस्तों, आज के आधुनिक युग में युवाओं में अकेलापन तेजी से बढ़ रहा है। करियर का दबाव, सोशल मीडिया पर बढ़ती निर्भरता और अपनों से संवाद की कमी इसके प्रमुख कारण हैं। अकेलापन युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। परिवार का साथ, मित्रों से बातचीत और सकारात्मक गतिविधियां भी इस समस्या को कम कर सकती है। तो दोस्तों, इससे जुड़ी वार्ता भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कि युवाओं में बढ़ता अकेलापन और संवादहीनता की समस्या, जिसके वार्ताकार है फतेह सिंह। तो आइए सुनते हैं इन्होंने अपनी वार्ता में हमें क्या संदेश दिया है।
7: नमस्कार श्रोताओं, किताबों की अलमारी में, मोबाइल की स्क्रीन में, ढूंढता है वजूद अपना इस खोई हुई जमीन में। दोस्त तो बहुत हैं उसके सोशल मीडिया की महफिल में, पर एक शख्स नहीं मिलता जो झांक सके उसके दिल में। जी हाँ, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे घरों के बंद कमरों में चुपचाप दस्तक दे रहा है। एक ऐसी समस्या जिसे हम अक्सर देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करते। आज का विषय है युवाओं में बढ़ता अकेलापन, संवादहीनता। आज हमारे पास पहले से कहीं ज़्यादा संवाद के साधन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, वीडियो कॉल है, हजारों फॉलोअर्स दोस्त हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से कुछ ही सेकंड में जुड़ सकते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? हमारी कॉन्टेक्स्ट लिस्ट लंबी होती जा रही है, लेकिन दिल की बात कहने वालों की संख्या छोटी तो नहीं होती जा रही। आज कई युवा भीड़ के बीच रहते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं। कॉलेज में दोस्तों का समूह है, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स हैं, लेकिन फिर भी मन में एक खालीपन है और यही खालीपन धीरे धीरे संवादहीनता में बदल जाता है। एक छोटी सी कहानी, आइए इसे एक वास्तविक जीवन शैली घटना से समझते हैं। मान लीजिए एक छोटे शहर का 21 साल का युवक है, वह कॉलेज में पढ़ता है, सुबह कॉलेज जाता है, दोस्तों के साथ हंसता है, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालता है और हर किसी को लगता है कि वह बहुत खुश है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके अंदर कुछ बदल रहा है। पढ़ाई का दबाव है, भविष्य की चिंता है, घर वालों की उम्मीदें हैं, दोस्तों में अपनी जगह बनाए रखने का दबाव है। वह परेशान है लेकिन किसी से कह नहीं पा रहा। एक शाम उसकी माँ पूछती है, बेटा खाना खा लिया? वह कहता है, हाँ माँ मैं ठीक हूँ। पिता पूछते हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है? जवाब आता है, ठीक चल रही है। दोस्त पूछते हैं, क्या हुआ, आज चुप क्यों है? वह मुस्कुरा कर कह देता है, कुछ नहीं यार, बस थका हुआ हूँ। और फिर रात में वही युवक अपने कमरे में मोबाइल की स्क्रीन के सामने अकेला बैठा रहता है। ध्यान दीजिए, उसके आस पास लोग बैठे हैं लेकिन उसके मन की बात सुनने वाला कोई नहीं था। यह अकेलापन हमेशा लोगों की कमी से पैदा नहीं होता, कई बार यह समझे ना जाने की भावना से पैदा होता है। सोशल मीडिया, जुड़ाव या दूरी, तकनीक हमारी दुश्मन नहीं है। मोबाइल और सोशल मीडिया ने हमें बहुत कुछ दिया है, शिक्षा, रोजगार, जानकारी और संपर्क के नए अवसर दिए हैं। समस्या तकनीक में नहीं बल्कि उसके असंतुलित उपयोग में है। हम दूसरों की जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। किसी की नई नौकरी, किसी की विदेश यात्रा, किसी की सफलता, किसी की शानदार तस्वीर, किसी का नया घर, किसी की उपलब्धि, और फिर चुपचाप अपने जीवन से उसकी तुलना करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग अक्सर अपनी जिंदगी का पूरा सच नहीं, चुना हुआ हिस्सा दिखाते हैं। दूसरों की उपलब्धियों की तस्वीर देखकर हम अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब लगाने लगते हैं। यही से शुरू होता है कंपेरिजन ट्रैप, यानी तुलना का जाल। युवा सोचने लगता है सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं पीछे क्यों हूँ, मेरे दोस्त सफल हो गए हैं, मैं क्यों नहीं, मेरी जिंदगी इतनी अच्छी क्यों नहीं दिखती, और धीरे धीरे वह अपनी परेशानियों को दूसरे से छुपाने लगता है। एक ही घर में लेकिन अलग अलग दुनिया। आज की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, एक परिवार में चार लोग रहते हैं, पिता मोबाइल पर व्यस्त है, माँ सोशल मीडिया देख रही है, बेटा वीडियो देख रहा है, बेटी चैट कर रही है। सभी एक ही कमरे में बैठे हैं, लेकिन चारों अपनी अपनी अलग दुनिया में हैं। कभी इसी घर में शाम का मतलब होता था साथ बैठना, दिन भर की बातें करना, पड़ोस की खबर सुनना, कहानी सुनना। आज कई बार घर में बातचीत की जगह सिर्फ सवाल जवाब रह गए हैं। खाना खाया, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, पढ़ाई की या नहीं, लेकिन एक सवाल गायब है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। यही सवाल शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। पीढ़ियों के बीच बढ़ती दूरी संवादहीनता की एक बड़ी वजह है। जनरेशन गैप, यानी पीढ़ियों के बीच सोच का अंतर। कई माता पिता कहते हैं, हमारे समय में इतनी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी हम खुश थे। और युवा सोचता है, आप हमारी परेशानियों को समझते ही नहीं, दोनों अपनी जगह सही हो सकते हैं। माता पिता अपने अनुभव से सोचते हैं और युवा अपने समय की चुनौतियों से। समस्या तब पैदा होती है जब दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करने के बजाय केवल समझाने की कोशिश करते हैं। कॉलेज और हॉस्टल का अकेलापन, यह समस्या कॉलेज और हॉस्टल में रहने वाले युवाओं में भी दिखाई देती है। घर से दूर रहने वाले विद्यार्थी बाहर से बहुत स्वतंत्र दिखाई देता है, लेकिन रात को जब वह अपने कमरे में अकेला होता है, तब घर की याद, पढ़ाई का दबाव और भविष्य की चिंता उसे परेशान कर सकती है। कई बार उसे सिर्फ इतना चाहिए होता है कि कोई दोस्त उसके पास बैठकर कह दे, चल आज पढ़ाई छोड़, थोड़ी देर बात करते हैं। हर समस्या का समाधान सलाह नहीं होता, कई बार इंसान को समाधान से पहले साथ चाहिए। गांव में भी बदल रहा है संवाद, यह समस्या केवल महानगरों की नहीं है, हमारे गांव में भी इससे अछूते नहीं है। पहले शाम होते ही चौपाल, खेत की मेड़ या फिर घर का आंगन बातचीत का केंद्र हुआ करता था। बड़े बुजुर्ग अपने अनुभव बताते थे, बच्चे सवाल पूछते थे, युवा अपने भविष्य की बातें करते थे। आज गाँव में भी मोबाइल और इंटरनेट ने जीवन को बदल दिया है, तो हमें रुककर सोचना होगा, क्यों ना गाँव में युवाओं के लिए ऐसे स्थान हो जहां वे मिलकर पढ़े, खेले, चर्चा करें और अपने विचार साझा करें। एक छोटी सी लाइब्रेरी, खेल का मैदान, युवा क्लब या सामुदायिक बैठक भी युवाओं को एक दूसरे से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। श्रोताओं, समस्या बड़ी जरूर है, लेकिन समाधान हमारे बहुत करीब है। पहला समाधान, बातचीत। घर में रोज कम से कम कुछ समय ऐसा हो जब मोबाइल किनारे रखकर परिवार साथ बैठे। यह जरूरी नहीं कि हर दिन कोई बड़ी चर्चा हो। दूसरा समाधान, एक अच्छा श्रोता बनिए।

0: अगर आपका दोस्त अचानक चुप रहने लगा है, पहले जैसा मिलना जुलना कम कर दिया है या हमेशा परेशान दिखाई देता है, तो उससे बात कीजिए, लेकिन पूछताछ के अंदाज में नहीं। बस इतना कहिए, अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तीसरा समाधान, डिजिटल संतुलन। मोबाइल छोड़ देना जरूरी नहीं है, लेकिन यह है जरूर तय करना जरूरी है कि मोबाइल हमारा साधन है या हम मोबाइल के साधन बन चुके हैं। दिन में कुछ समय ऐसा जरूर रखें जब फोन दूर हो और सामने बैठे इंसान से बात हो। चौथा समाधान, अपनी भावनाओं के स्वीकार करना। युवा दोस्तों, परेशान होना कमजोरी नहीं है, असफलता जीवन का हिस्सा है, भ्रमित होना सामान्य है, कभी कभी अकेला महसूस करना भी इंसानी अनुभव है, लेकिन मन में सब कुछ दबा कर रखना समाधान नहीं है। अगर आप लगातार परेशान महसूस कर रहे हैं और खुद से संभलना मुश्किल लग रहा है, तो किसी भरोसेमंद माता पिता, शिक्षक, काउंसलर या फिर अन्य विश्वसनीय बड़े व्यक्ति से बात करना बिल्कुल उचित कदम है। मेरे युवा दोस्तों, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर कितने फॉलोअर्स हैं, यह आपकी असली कीमत तय नहीं करता। आपकी जिंदगी किसी और की इंस्टाग्राम स्टोरी से नहीं है। आपको हर समय खुश दिखाई देने की जरूरत नहीं है। कभी फोन रखिए, अपने माता पिता के पास बैठिए, किसी पुराने दोस्त को फोन कीजिए, परिवार के किसी बुजुर्ग से उनकी जिंदगी की कहानी पूछिए, अपने किसी दोस्त से सिर्फ इतना पूछिए, सच सच बता तू कैसा है, और अगर वह बोलना शुरू कर दे तो उसकी बात पूरी होने तक सुनिए। शायद आपको पता चले कि मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे भी कई कहानियां छुपी होती हैं। आज हमें यह समझना होगा कि तकनीक हमें जोड़ सकती है, लेकिन रिश्ते हमें संवालते हैं। हजारों ऑनलाइन संपर्क हमारे पास हो सकते हैं, लेकिन जीवन में कुछ ऐसे लोग जरूर होने चाहिए जिनके सामने हम बिना किसी डर के अपने मन की बात कह सके। इसलिए रील से बाहर आइए, रिश्तों के करीब जाइए, स्क्रीन से थोड़ा नजर हटाइए, सामने बैठे इंसान की आंखों में देखिए। सिर्फ ऑनलाइन मत जुड़िए, दिल से भी जुड़िए, क्योंकि जिस घर में बातचीत होती है वहां समस्याएं छोटी होने लगती है। जिस दोस्ती में संवाद होता है वहां दूरियां कम होने लगती हैं, और जिस समाज में लोग एक दूसरे को सुनते हैं वहां अकेलापन टिक नहीं सकता। चलते चलते बस एक बात, मोबाइल की स्क्रीन रोशन करने से पहले किसी अपने के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिंदगी की सबसे खूबसूरत कनेक्टिविटी इंटरनेट से नहीं, इंसान से होती है। धन्यवाद, नमस्कार।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: दोस्तों, अभी आपने सुनी युवाओं में बढ़ता अकेलापन और संवादहीनता की समस्या, और वार्ताकार थे फतेह सिंह। दोस्तों, यहाँ लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और सुनेंगे ये गीत।

दोस्तों, अब थोड़ा मूड बदलते हुए बात करते हैं इस हफ्ते की फिल्मों की और ओटीटी की। तो आखिर वीकेंड पर अच्छी फिल्में देखने का मज़ा ही कुछ और है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्टिंग लाइव की, जो 9 अक्टूबर को आने वाली है। फिल्म में एक युवा पत्रकार उसके कैमरामैन अवैध रेत खनन के पीछे छिपे नेटवर्क की पड़ताल करते नजर आते हैं। अगर आपको सामाजिक मुद्दों के साथ थ्रिलर पसंद है तो आपकी वॉच लिस्ट में ये जगह बना सकती है। अब ओटीटी पर बात करते हैं तो पिछले कुछ दिनों में पूजा मेरी जान और दुपहिया सीजन 2 जैसी रिलीज दर्शकों के बीच चर्चा में है। पूजा मेरी जान एक गंभीर कहानी के जरिए सामाजिक दबाव और एक महिला के संघर्ष के को सामने लाती है, और जबकि दुपहिया अपने छोटे शहर के माहौल और हल्के फुल्के अंदाज के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों, इस हफ्ते आपकी पसंद क्या रहेगी, थ्रिलर, ड्रामा या कॉमेडी? मेरी सलाह है कि फिल्म चुनते समय सिर्फ ट्रेंड नहीं बल्कि अपनी पसंद और कहानी को भी जरूर देखें। यहां लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक और सुनेंगे ये गीत।

अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हुआ चाहते हैं। महिलाओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम महिला जगत में। आज एक बार फिर से आपके साथ है आपकी रेडियो सखी और आज के इस कार्यक्रम की होस्ट मैं संगीता सिखवाल। आप सभी श्रोताओं का, सभी सखियों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सखियों, जिंदगी में कुछ भी होता है तो अच्छे के लिए ही होता है। हमेशा पॉजिटिव रहे, क्योंकि बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें। लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें, वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। हर अनुभव एक शिक्षा है, हर बदलाव एक संकेत है और हर क्षण ईश्वर की योजना का हिस्सा है। इसलिए जीवन में जो भी करें, हमेशा ये ही सोचें कि ईश्वर की एक फिक्स योजना है और हम सभी इंसान, हम सभी जो प्राणी हैं, उस ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही चल रहे हैं। सखियों, आज के हमारे कार्यक्रम की शुरुआती आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं विश्व डाक दिवस पर। दौर कागजी था, जी हाँ, दौर कागजी था, पर देर तक खतों में जज्बात महफूज रहते थे, पर अब मशीनी दौर है। उम्र भर की यादें सिर्फ एक अंगुली से डिलीट हो जाती है। सही है ना, वो एक अलग ही जमाना था, वो चिट्ठियों का दौर जो दिलों को जोड़ता था। एक चिट्ठी चिट्ठी न होकर भावनाएं थी, एक जुड़ाव था, एक संबंध हुआ करता था और ये

दौर हमने बहुत अच्छे से जिया है। श्रोताओं, हर साल 9 अक्टूबर के दिन विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। आज से ठीक 152 साल पहले 1874 में इस दिन स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी कि सार्वभौमिक डाक संघ की स्थापना हुई थी। डाक दिवस के इतिहास पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सिक्योर जापान के टोक्यो शहर में सन 1969 में आयोजित यूपीयू कांग्रेस के दौरान 9 अक्टूबर के दिन को वर्ल्ड पोस्टल डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इस कार्यक्रम को मनाने का क्या उद्देश्य और क्या महत्व हो सकता है, आइए इसको भी जानें। सबसे पहला जो इसका उद्देश्य है वो है जागरूकता। जी हाँ, लोगों और व्यवसायों के दैनिक जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। इसके अलावा आर्थिक विकास, जी हाँ, किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में डाक सेवाओं के योगदान को रेखांकित करना। साथ ही संचार, आधुनिक दौर में भी समुदायों और नागरिकों को आपस में जोड़ने में डाक नेटवर्क के महत्व को सम्मान देना। श्रोताओं, हर साल जो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है आज ही के दिन, उसकी कोई ना कोई विशेष थीम या कि यूं कह सकते हैं कि कोई मेन सब्जेक्ट होता है। तो इस साल यानी साल 2026 की थीम है विश्व डाक दिवस, एक डाक नेटवर्क, अनंत संभावनाएं। राष्ट्रीय डाक सप्ताह, जी हाँ, भारत में 9 अक्टूबर से लेकर आगामी 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन किया जाता है। सिक्योर डाक घर मात्र डाक पत्र ही नहीं अपितु अनेकों सेविंग स्कीम्स जो कि राष्ट्रीय इकोनॉमी में एक मजबूत व भरोसेमंद विभाग के तौर पर अपना अतुल्य योगदान भी दे रहा है। तो ये थी हमारे कार्यक्रम की शुरुआती चर्चा। अब आपके लिए चलते हैं फिल्म संगीत की सुरीली दुनिया में और सुनवाते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत जिसे हमने चुना है फिल्म पलकों की छांव में और जिसे गाया है किशोर कुमार और वंदना शास्त्री ने।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आप सुन रहे हैं चिरमी चैनल का एक बेहद खूबसूरत और महिलाओं का खास कार्यक्रम महिला जगत। सखियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, जो कल के दिन यानी कि 10 अक्टूबर 2026 को मनाया जाएगा। सखियों, खुद को समय जरूर दें। जी हाँ, इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं मेरी सखियों से, सभी श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी कि आप जितने भी काम जीवन भर में, दिन भर में जितना भी करते हैं, करते रहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो आप खुद को समय जरूर दें, क्योंकि आपकी पहली जरूरत, हमेशा याद रखें, आप खुद हैं। इस दुनिया में आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इस पूरी कायनात में सिर्फ आप ही हैं जो खुद के साथ पूरे 24 घंटे रहते हैं। सिर्फ आप ही खुद हैं जो खुद को सफल या असफल बना सकते हैं। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, अगर आप हर चीज़ को अच्छे से लेते हैं, तो आप जीवन में वो सब कुछ कर पाएंगे जो आपने सोच रखा है। लेकिन अगर आपने हार मान ली, या फिर दूसरों से कंपेरिजन, या किसी भी वजह से आपने खुद को कमतर आंक लिया, तो मान के चलिए कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश ये करें कि आप खुद का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, और हमेशा अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। सखियों, हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत 10 अक्टूबर 1992 से हुई थी, जब विश्व मानसिक स्वास्थ्य महासंघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे पहली बार आयोजित किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इसके समर्थन के लिए एकजुट करना। बहनों, इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत साल 1992 में WFMH द्वारा की गई थी। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। घर वाले भी इस चीज़ को टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि ये व्यक्ति ज़्यादा सोचता है, इसके ज़्यादा सोचने का नतीजा है, या फिर सीरियसली नहीं लेते। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे आसपास में है, हमारे परिवार में है, हमसे जुड़ा है, तो हम उसके ये लक्षण पहचाने कि वो वास्तव में मानसिक परेशानी से परेशान है, तो उसकी जितनी हम मदद कर सकते हैं संवेदनशीलता के साथ, उतनी हमें करनी चाहिए। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भी यही है कि मानसिक बीमारियों से जुड़े सामाजिक कलंक को दूर करना है, और लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति शिक्षित करना है, उन्हें बताना है कि ये कोई अभिशाप नहीं है, ये कोई कलंक नहीं है, ये कोई आरोप नहीं है, ये किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी जीवन के किसी भी फेज में हो सकता है। तो हमें इसे पहचानना है और कोशिश करना है कि इसे अच्छे से समझकर इसको हम जैसे खत्म कर सके, कम कर सके, अपना पूरा एफर्ट्स लगाने हैं। इसका मुख्य लक्ष्य है कि मानसिक बीमारियों से जुड़े सामाजिक कलंक को दूर करना और लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से शिक्षित करना। शिक्षित करने से तात्पर्य यहाँ पर किताबी ज्ञान से बिल्कुल नहीं है, उस संवेदना को, उस पीड़ा को समझना है कि वो व्यक्ति किस वजह से परेशान है, और अगर परेशान है तो हम किस हद तक उसकी मदद कर सकते हैं। एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक संतुलन होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हर साल इस कार्य की कोई ना कोई थीम होती है, और इस बार विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम है। आधिकारिक तौर से इसकी थीम घोषित हो चुकी है, जो कि है स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहे, यानी कि टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। श्रोताओं, ये अभियान मानव स्वास्थ्य के साथ साथ पशुओं, पौधों और पर्यावरण के स्वास्थ्य को आपस में जोड़कर देखने और सुरक्षित रखने का आह्वान करता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, तो आपको यहाँ कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम कल यानी 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाएंगे, और 7 अप्रैल को, जैसा कि मैंने बताया, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष हम मनाते हैं। तो ये थी हमारे कार्यक्रम में आज की बात में एक बहुत ही खास और सेंसिटिव विषय पर चर्चा। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहां रुकना होगा इस कमर्शियल ब्रेक के लिए।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महिला जगत। सखियों, आज हमारी चर्चा का विषय है राष्ट्रीय डाक सप्ताह। जी हाँ, राष्ट्रीय डाक, अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस तो हम मना ही रहे हैं, उसके साथ आज से शुरू होता है और 15 अक्टूबर तक चलेगा राष्ट्रीय डाक सप्ताह। सखियों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि आज संपूर्ण विश्व भर में डाक दिवस मनाया जा रहा है, तो साथ ही अब ये भी बता दें कि आज से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस साल 2026 में राष्ट्रीय डाक सप्ताह की थीम रहेगी विश्व डाक दिवस, एक डाक नेटवर्क, अनंत संभावनाएं। इसका उद्देश्य है आधुनिक, समावेशी और नागरिक केंद्रित डाक सेवाओं को बढ़ावा देना। आइए जानते हैं डाक सप्ताह का दैनिक कार्यक्रम क्या रहेगा। दैनिक कार्यक्रम से मेरा मतलब है डेली शेड्यूल क्या रहेगा, यानी प्रतिदिन सप्ताह भर 7 दिन ये कार्यक्रम चलेंगे, हर दिन एक विशेष कार्यक्रम चलेगा। तो शुरुआत होती है आज से, आज यानी कि 9 अक्टूबर को ये शुरू होता है और आज का जो इसका विषय है, दैनिक जो कार्यक्रम है वो विश्व डाक दिवस, विस्तार से चर्चा होगी विश्व भर में इस बारे में। फिर आगामी 10 और 11 अक्टूबर 2026 को समस्याएं समाधान और ग्रुप डिस्कशन, न्यू स्कीम्स आदि पर चर्चा होती रहेगी। फिर आता है 13 अक्टूबर यानी सप्ताह का चौथा दिन, जो डाक सप्ताह मनाया जाएगा उसका, इसमें वित्तीय समावेशन और CCS दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद 14 अक्टूबर को डाक एवं पार्सल दिवस मनाया जाएगा और जो सप्ताह का अंतिम दिन होगा राष्ट्रीय डाक सप्ताह का, 15 अक्टूबर 2026 को प्रौद्योगिकी और नवाचार दिवस मनाया जाएगा। संक्षिप्त में कहें तो भारत में डाक विभाग के योगदान और महत्व पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए। तो ये औचित्य है हमारे इस डाक सप्ताह को मनाने का। कार्यक्रम में एक बेहद सुंदर गीत की ओर बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे इस कमर्शियल ब्रेक के लिए।
3: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
4: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
5: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
6: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल और चिरमी चैनल पर अभी एक बेहद खूबसूरत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं जिसका नाम है महिला जगत। सखियो, महिला जगत कार्यक्रम में आज के हमारे अंतिम सेगमेंट की बारी आ चुकी है और ये है जो हम लेकर आते हैं महिलाओं के लिए खास ब्यूटी टिप्स। जी हाँ, अपने लुक के लिए ज़रूरी सेल्फ ग्रूमिंग। सखियो, सुंदर और आकर्षक दिखने के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए सेल्फ ग्रूमिंग बेहद ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ सामान्य अर्थ में तो ग्रूमिंग मीन्स व्यक्तिगत देखभाल या साफ सफाई, स्किन केयर, हेयर केयर और सही कपड़ों के चुनाव का विशेष ध्यान रखना हो सकता है। वैसे एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी सखियो यहाँ पर। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएँ बहुत खूबसूरत होती है, खूबसूरत इस सेंस में कि उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, उनकी नाक नक्श बहुत सुंदर होती है, उनके बाल, उनकी कद काठी, उनका फिजिक स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन ना तो उन्हें उस चीज़ को मैनेज करना आता है, ना उनको ये चीज़ पता है कि मैं एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के साथ हूँ, और ना ही वो उसको सजाकर या सही अच्छे से रख पा रही है। लेकिन उसी के अपोजिट अगर मैं बात करूँ, कभी कभी कुछ महिलाओं को हम देखते हैं जो बड़ी सामान्य से दिखने वाली होती है, यानी कि सामान्य उनका रंग रूप है, उनका कद काठी सामान्य है, और या उनके जो नैन नक्श है वो भी सामान्य है, उनके

ग्रूम करके रखती है, यानी वो अपनी हर चीज़ की बहुत अच्छे से केयर करती है। और अगर आप किसी चीज़ की केयर करके रखेंगे, चाहे वो कोई भी हो, आपकी स्किन हो, आपके हेयर हो, आपकी बॉडी हो, या फिर आपके कपड़े हो, कुछ भी हो, अगर आप अच्छे से उनको रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, ग्रूम करके रखते हैं, तो आप डेफिनेटली एक बहुत ही अट्रैक्टिव महिला लगेंगी। तो कोशिश करें कि अपने आप को ग्रूम करके रखें। वैसे तो भगवान ने जिनको जैसा बनाया है बहुत ही खूबसूरत बनाया है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता भगवान को, लेकिन फिर भी जैसा हमें बनाया है क्यों ना हम उसको और अच्छे से बना के रखें। और वैसे सेल्फ हाइजीन, अगर मैं ग्रूमिंग की बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं हाइजीन की बात है, तो खुद को हाइजीनिक रखना तो एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, उससे हम हेल्दी भी रहते हैं और दिखने में सामने वाले को भी अट्रैक्टिव लगते हैं, कॉन्फिडेंट लगते हैं। तो हम सेल्फ ग्रूमिंग पे आते हैं कि हम कैसे कैसे खुद की सेल्फ ग्रूमिंग कर सकती हैं। सबसे पहली बात आती है व्यक्तिगत स्वच्छता, जी हाँ, पर्सनल हाइजीन, रोजाना नहाना, ब्रश करना और पसीने की जो बदबू होती है उससे बचना, ये सबसे पहली ज़रूरत है हमारे पर्सनल हाइजीन में। उसके बाद आती है हमारी स्किन केयर, स्किन को ड्राई होने से बचाना है, प्रॉपर मॉइस्चराइजर का यूज़ करना है, स्किन को हाइड्रेट रखना है, और धूप से सुरक्षा तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं की स्किन, कई महिलाओं सखियों की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि उस पर डार्क स्पॉट हो जाते हैं, या फिर यूँ कहूँ कि टेन हो जाती है, डार्क हो जाती है, बर्न हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो सनस्क्रीन यूज़ करें और अपने स्किन की प्रॉपरली देखभाल करें। इसके अलावा बालों का रखरखाव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सखियों, बालों को साफ रखें, करीने से उनको कंघी करें, और बॉडी के जो अनवांटेड और भी हेयर ग्रोथ हमारी बॉडी पे होती है उसको टाइम टू टाइम क्लीन या फिर ट्रिम करें, और शैम्पू और कंडीशनर अच्छे से यूज़ करें ताकि आपके बाल भी बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लगे। उसके अलावा हमारे जो नेल केयर हैं, हाथों के और पैरों के, हमारे नेल्स, हाथों और पैरों के नाखूनों को छोटा और साफ रखें ताकि बैक्टीरिया ना पनप सके, और नेल पॉलिश या फिर नेल आर्ट भी आप सुविधाजनक अगर आपको है तो आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप अट्रैक्टिव तभी लगेंगी जब आप अच्छे से इनकी केयर करेंगी और टाइम टू टाइम मैनीक्योर और पेडिक्योर करवाती रहें। उसके अलावा कपड़ों का चुनाव, जी हाँ, कपड़े हमेशा साफ़ सुथरे, धुले हुए और अच्छे से प्रेस किए हुए होने चाहिए, साथ ही इनका चुनाव भी मौके और प्रोफेशन के अनुसार ही होने चाहिए। आप पे कौन से रंग अच्छे लगते हैं, आपकी कद काठी, आपकी फिजिक स्ट्रक्चर के हिसाब से भी रंगों का, कपड़ों का बहुत महत्व है, तो इस चीज़ को पहचाने कि आप पे क्या सूट करता है। आसपास में पूछें, अपनी सखियों से पूछें और परिवार में पूछें, अपने बच्चों से पूछें, और डेफिनेटली आपको खुद से पता चल जाएगा कि आप कहाँ अट्रैक्टिव लगती हैं। तो कोशिश करें कि खुद को अच्छा ग्रूम करके रखें। और इसके अलावा आप मिनिमल मेकअप करें। कैसे मिनिमल, यानी कि बिल्कुल हल्का फुल्का मेकअप हमेशा करके रखें। उसमें क्या होगा, आप रूटीन में जैसे हेवी मेकअप से तो बच जाएंगी, साथ ही आप काजल, कॉम्पैक्ट और लाइट लिपस्टिक या फिर लिप बाम का यूज़ करें ताकि आप ज़्यादा सुंदर और कॉन्फिडेंट लगेगी। तो ये था हमारे कार्यक्रम का लास्ट सेगमेंट, ब्यूटी टिप्स। अब आपके लिए चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से कुमार सानू की आवाज़ में ये गीत।

0: अभी महिलाएं सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत, यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। थोड़ी देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा है कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये पाबंदी अगले आदेश तक लागू रहेगी। वहीं रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों

0: पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि स्टारलिंक, जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और यूटेलसैट वन वेब सहित तीन कंपनियों को सैटेलाइट संचार लाइसेंस दिए गए हैं। नई दिल्ली में श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार राजस्व साझाकरण के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्रों में समुद्र की सतह का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और इथियोपिया की रणनीतिक साझेदारी साझा मूल्यों, समान आकांक्षाओं और विकासशील देशों के बीच ऐतिहासिक एकजुटता पर आधारित हैं। डॉ. जयशंकर ने इथियोपिया के विदेश मंत्री गिदियोन तिमोथियोस हेसेबॉन के साथ आज राजधानी अदिस अबाबा में बैठक की। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान व्यापार, निवेश, विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में जीत हासिल कर ली है। उधर तमिलनाडु की दारापुरम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में टीवीके ने जीत हासिल की है, जबकि मधुरंतकम सीट पर टीवीके आगे चल रही है। पुदुचेरी की तटान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने जीत हासिल की। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 889 अंक बढ़कर 72,472 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 289 अंक की वृद्धि के साथ 22,520 पर पहुंच गया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिन्मी चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं चंद फिल्मी नगमे।

श्रोताओं, फिल्मी नगमे आप आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आरजू फिल्म का ये नगमा।

और अब प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी की, फ़िल्म का नाम बेजुबावरा।

0: अभी हम फिल्म संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। प्रस्तुत है लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए हरिनारायण शास्त्री का गाया ये लोक भजन।

कालूराम प्रजापति के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर का समय अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM बैंड 103.7 MHz पर। शाम के 6:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल दोपहर तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द। राजस्थान की भी कई रेल सेवाएं निरस्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जोधपुर आएंगे। तरंग शक्ति 2026 युद्धाभ्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत कल लगेगी। प्रदेश में 8,38,000 से ज्यादा प्रकरण सूचीबद्ध। और राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के लिए चलाए जा रहे जागरूकता माह का समापन कल डिजिटल शपथ अभियान के साथ होगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी CJP के कल प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इंकार कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या अन्य किसी प्रकार के आयोजन के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना अनिवार्य है। इस बीच रेल मंत्रालय ने बताया कि नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती गंतव्यों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच इन स्टेशनों पर पहुंचने वाली ट्रेनों को निरस्त किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि ये निर्णय दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए लिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। ये पाबंदी अगले आदेश तक लागू रहेगी। इधर उत्तर पश्चिम रेलवे की भी कई गाड़ियां आज और कल इसके कारण रद्द हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए इस सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला एवं बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना है। साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण और महिलाओं की सुरक्षा तथा सशक्तिकरण शामिल है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारत के युवा प्रतिभागियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन युवाओं ने 6 रजत पदक और उत्कृष्टता के 20 मेडल हासिल किए हैं। भारत इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 10वें स्थान पर रहा है। ये प्रतियोगिता पिछले महीने चीन के शंघाई में आयोजित की गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कल जोधपुर दौरे का कार्यक्रम है। वे सुबह जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री जोधपुर एयरबेस में चल रहे बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 के एयर शो और अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह भारतीय वायुसेना के जवानों और विभिन्न देशों से आए वायुसेना के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। आज विश्व डाक दिवस है। ये दिन डाक सेवाओं के योगदान को रेखांकित करता है। विश्व डाक दिवस की इस वर्ष की थीम एक डाक नेटवर्क अनंत संभावनाएं रखी गई हैं। आज से राष्ट्रीय डाक सप्ताह का भी आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान परिमंडल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल सुशील कुमार ने बताया कि इस सप्ताह के दौरान हर दिन विशेष थीम के साथ कई गतिविधियां होंगी। इसका उद्देश्य डाक सेवाओं को अधिक सुविधाजनक, सुलभ और लोगों की बदलती जरूरत के अनुरूप बनाना है। साथ ही डाक विभाग भी लोगों की आवश्यकता के अनुसार स्वयं को अपडेट कर रहा है।
1: डाक विभाग फाइनेंशियल सर्विसेज भी देता है और डाक जो मेल्स है हमारा पार्सल लॉजिस्टिक्स और अन्य जो पत्र पत्रिकाएं हैं जो चिट्ठियां हैं इन सारे दो प्रमुख कैटेगरीज में हम काम करते हैं। ऐसा हुआ है कि जो पर्सनल मेल है जो लोग अपने आपसी चिट्ठियां लिखते थे वो थोड़ा कम हुआ है लेकिन जो पार्सल्स है जो बिजनेस पोस्ट है उसमें बढ़ोतरी हुई है। उसको हम केंद्र बिंदु में रखे हुए हैं और उनकी जरूरतों के अनुसार बदलाव ला रहे हैं और जो हमारा ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज है उस विभिन्न प्रकार के खाते हैं और जो हमारा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है और रूरल लाइफ इंश्योरेंस है इन सारी चीजों के साथ हम लोगों के बीच में है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कल होगा। प्रदेश में उच्च न्यायालय सहित सभी अधीनस्थ अदालतों, राजस्व न्यायालयों और उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में इसका आयोजन किया जाएगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हरिओम अत्री ने बताया कि लोक अदालत में पक्षकार आपसी सहमति और राजीनामे के माध्यम से मामलों का त्वरित निस्तारण करवा सकेंगे। लोक अदालत के लिए 8,38,000 से ज्यादा प्रकरण सूचीबद्ध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जोधपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय के अग्रवाल समारोह का उद्घाटन करेंगे। वहीं जयपुर तथा विभिन्न न्यायालयों में कार्यक्रम का आयोजन न्यायाधीशों की अध्यक्षता में होगा। राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 10 सितंबर से शुरू हुए मानसिक स्वास्थ्य माह का कल समापन होगा। इस दौरान स्कूलों कॉलेजों में रैलियां और जागरूकता सत्र सहित विभिन्न कार्यक्रम रखे गए। इनके माध्यम से लोगों को तनाव प्रबंधन के बारे में भी बताया गया। साथ ही ये भी बताया गया कि अत्यधिक तनाव और अवसाद की स्थिति में डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत जरूरी है। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य माह का समापन कल डिजिटल शपथ अभियान के साथ होगा।
2: मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को शपथ दिलाई है। लगभग 95,000 से अधिक लोगों ने शपथ ली है कि हम मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। मेंटल वेलबींग है उसमें युवा मन कार्यक्रम हमने आयोजित किए थे और 33,000 से ज्यादा लोगों को हमने इसमें लाभान्वित किया गया कि जो युवा व्यक्ति है उनमें किस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य को जो है स्वस्थ रख सके उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस किया गया है। तो लगभग 63,000 से अधिक युवाओं को हमने तैयार किया है जो अपने आसपास जो अपने सहपाठी हैं या जो दूसरे लोग हैं उनके समाज में या उनके परिचित हैं उनको अगर किसी प्रकार का मानसिक तनाव होता है तो उनकी मदद करने में कारगर रहेंगे। सभी लोगों को जो है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो है चाहे वो वर्क प्लेस मैनेजमेंट हो चाहे वो युवा हो या अन्य जो दूसरे हैं उन सबको जो है मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने का इसमें काम किया गया है।
0: 1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

0: डिजिटल साक्ष्य, वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन शिकायत के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। नए कानूनों में इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराना संभव किया गया है। जीरो FIR की शुरुआत के साथ ही कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन पर FIR दर्ज करवा सकता है। पीड़ित को FIR की प्रति निःशुल्क मिलेगी। वहीं गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्ति को सूचना देने का अधिकार होगा। गंभीर मामलों में घटनास्थल की फोरेंसिक वीडियोग्राफी अनिवार्य की गई है। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है, जिसे सूचना दर्ज करवाने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी हो सके। वहीं कई छोटे अपराधों में जेल की बजाय सामुदायिक सेवा का दंड पेश किया गया है। नए आपराधिक कानून नागरिक केंद्रित, सुलभ और कुशल न्याय प्रणाली की दिशा में अहम है। न्यूज रूम से सलेहा गाजी।
1: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज बूंदी पहुंचे। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और सिंचाई तथा PHED विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को हिंडौली, नैनवा, गरड़दा और नवनैरा परियोजनाओं सहित ARCP के तहत चलाए जा रहे कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जल संचय जल संवर्धन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने जल जीवन मिशन के कामों को गति देने की बात कही।
2: लगभग 5,500 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, सभी विभागों में गति है। PHED के स्कीम्स का भी मैंने रिव्यू किया था और इरिगेशन डिपार्टमेंट के स्कीम्स का भी रिव्यू किया था। कई मेजर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं। राम जल सेतु का प्रोजेक्ट में काफी कार्य चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विजिट हुआ था एक्वेडक्ट पे और उसका प्रोग्रेस भी मुझे अवगत कराया। गरड़ा डैम प्रोजेक्ट के बारे में, PHED प्रोजेक्ट के बारे में भी मुझे अवगत कराया। कुछ टीम वहाँ साइट पे जा रहे हैं, उसका भी कुछ पेमेंट इश्यूज के बारे में अवगत कराया है। ओवरऑल संतुष्ट हूँ, काम अच्छा चल रहा है।
1: डीग महोत्सव का आयोजन कल किया जाएगा। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से होने वाले इस महोत्सव में लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिलेगी। कार्यक्रम की शुरुआत डीग महल से शोभा यात्रा के साथ होगी। इसके बाद मेला मैदान में दिन भर रोचक प्रतियोगिताएं होंगी। वहीं शाम के समय डीग महल में सांस्कृतिक संध्या रखी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल दोपहर तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द। राजस्थान की भी कई रेल सेवाएं निरस्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जोधपुर आएंगे। तरंग शक्ति 2026 युद्धाभ्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत कल लगेगी। प्रदेश में 8,38,000 से ज्यादा प्रकरण सूचीबद्ध। और राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के लिए चलाए जा रहे जागरूकता माह का समापन कल डिजिटल शपथ अभियान के साथ होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से अलवर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख अविनाश मल्होत्रा ने तैयार किया है। जिले में इन दिनों पंचायती राज चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। पहले चरण में जिला परिषद और 6 पंचायत समितियों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र जमा नहीं करवाया। नामांकन पत्रों की जांच 14 अक्टूबर को होगी और 15 अक्टूबर को नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। पहले चरण में 22 अक्टूबर को मतदान होना है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन व्यवस्था का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। पंचायत चुनाव के अलग अलग चरणों के लिए मतदान और निर्वाचित प्रतिनिधियों के चयन का कार्यक्रम भी तय किया गया है। 23 और 24 अक्टूबर को पंच तथा सरपंच के चुनाव होंगे और 25 अक्टूबर को उप सरपंच का चुनाव होगा। दूसरे चरण का मतदान 28 अक्टूबर को कराया जाएगा। त्रिस्तरीय चुनाव प्रक्रिया के तहत जिला प्रमुख का चुनाव 25 नवंबर, उप जिला प्रमुख का 26 नवंबर, प्रधान का 27 नवंबर और उप प्रधान का चुनाव 28 नवंबर को होगा। अलवर में 2 चरणों में चुनाव होंगे। जिले में पंच और सरपंच के चुनाव के लिए वोटिंग 25 और 31 अक्टूबर को होगी। पहले चरण में रामगढ़, कठुमर, खेडली, सौखर, गोविंदगढ़, मुबारकपुर और रैणी शामिल हैं, जबकि दूसरे चरण में उमरैण।

0: मालाखेड़ा, लक्ष्मणगढ़, राजगढ़, थानागाजी पंचायत समिति शामिल हैं। इससे पहले जिले में नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुए। अलवर नगर निगम को अपनी पहली महिला महापौर मिली। भाजपा की सुमन लता अग्रवाल ने कांग्रेस की कमलेश शर्मा को 19 मतों से हराकर ये पद हासिल किया। उप महापौर पद पर भी भाजपा के अजय पूनिया निर्वाचित हुए, उन्हें 40 मत मिले, जबकि कांग्रेस की ममता सैनी को 24 मत प्राप्त हुए। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलवर में रोड शो किया। इस दौरान केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री संजय शर्मा मौजूद रहे। वहीं दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। अलवर में नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। अलवर के ठेकड़ा गाँव स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में रिक्रूट कांस्टेबल बेसिक प्रशिक्षण बैच में प्रशिक्षणरत 279 रिक्रूट कांस्टेबल का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। समारोह में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन ने कहा कि पुलिस समाज सेवा का सबसे अच्छा माध्यम है। उन्होंने कहा कि पुलिस एक टीम के रूप में काम करती है। कांस्टेबल से लेकर अधिकारी तक हर स्तर के पुलिसकर्मी की मेहनत से पुलिस व्यवस्था मजबूत होती है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कुशालगढ़ तिराहे से सरिस्का होते हुए थाना गाजी तक 20 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। साथ ही अलवर शहर के प्रताप बांध से माच का तिराया तक 1,20,00,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित 4 किलोमीटर डामर सड़क का लोकार्पण किया। वहीं मालाखेड़ा रेलवे स्टेशन पर जैसलमेर काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर नगर निगम अलवर की ओर से सिलिसेड परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में 250 से अधिक कलाकारों, आमंत्रित अतिथियों, पर्यटकों और प्रतिभागियों ने प्ले कार्ड और सेल्फी स्टैंड के माध्यम से स्वच्छ पर्यटन और स्वच्छ पर्यटक स्थलों का संदेश दिया। सरिस्का टाइगर रिजर्व में 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए जंगल सफारी शुरू हुई। मॉनसून सत्र के दौरान 3 महीने तक सफारी बंद रहने के बाद पर्यटक एक बार फिर सरिस्का के जंगलों का भ्रमण कर रहे हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर जिले की प्रमुख पर्यटन पहचान है। अरावली की पहाड़ियों के बीच फैला ये वन क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और बाघों की मौजूदगी के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का में वर्तमान में कालीन पांडुपोल हनुमान मंदिर में लक्खी मेले का आयोजन हुआ। मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मेले के दौरान सरिस्का क्षेत्र में जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए भंडारे लगाए गए, जहां भक्तों को भोजन और प्रसाद वितरित किया गया। कई स्थानों पर ठंडे पानी, शरबत और अन्य पेयजल पदार्थों की व्यवस्था की गई। अलवर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। नई दिल्ली अर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन माथे काल दोपहर ताई पुगण वाली रेलगाड़ियां रद्द करी जी। राजस्थान में कई रेला नहीं जावेला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रो काल जोधपुर दौरा रो कार्यक्रम। तरंग शक्ति 2026 युद्ध अभ्यास कार्यक्रम में शामिल भेला। साल 2026 री तीजी राष्ट्रीय लोक अदालत काल लगाई जावेला। 8,38,000 बत्ता मामला री सुनवाई भेला। और राज्य में मानसिक स्वास्थ्य रे बारे में जाग जगह बनसारू चलाई जो जागरूकता महीनो काल डिजिटल शपथ अभियान सागे पूरो फैला। समाचारों सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। दिल्ली पुलिस कॉकरोच जनता पार्टी CJP कान्यू काल जंतर मंतर सामी प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन री मंजूरी देवण नटगी है। दिल्ली पुलिस रा संयुक्त आयुक्त आज नई दिल्ली में खबर नवीसा ने बतायो कि जंतर मंतर सामी विरोध प्रदर्शन या किणी भांत रा दूजा आयोजन सारू कमो कम 10 दिन पहली अर्जी देवनो जरूरी है। इ बीच रेलवे नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन माथे आज दोपहर 2:30 या ई 4:30 अर काल तड़के 4 दोपहर 2:30 बीच पुगण वाली सगली गाड़ियां रद्द कर दीनी है। रेल मंत्रालय रे मुजब आ दुनिया टेसना रा आरएसआर रहल

0: काम आए। काल भारी भीड़ री शंका न ध्यान रखता थका वो फैसलो करी चियो है। उत्तर पश्चिम रेलवे री कई गाड़ियां ही आज अरकाल सारू रद्द करती री जी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग रा दो दिन रा शिखर सम्मेलन रा समापन सत्र में शामिल फेवन रो कार्यक्रम है। काल नू चाल रिया इन सम्मेलन में सगला राज्यां रा राजनीतिक अगुआ और महिला और बाल विकास हलकाओं जुड़िया अहलकार शामिल फे रिया है। इनरो मकसद सहकारी संघवाद न मजबूत कर और भेड़ी जिम्मेदारी री भावना न बढ़ावो देवनो है। सम्मेलन में पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण और महिलाओं री हिफाजत रा मुद्दा माथे खास ध्यान दियो जा रियो है। इनु पहली श्री मोदी नई दिल्ली में वारा रहवास माथे वर्ल्ड स्किल्स होड़ 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाला भारत रा नौजवान प्रतिभागियां सागे मुलाकात कीनी। वे सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए कहो के ए नौजवान चांदी रा छ और उत्कृष्टता रा 20 तमगा हासिल कीना। लारला महीना चीन रा शंघाई माए भी इं होड़ माए भारत 10वीं ठौड़ माथे रहो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रो काल जोधपुर दौरा रो कार्यक्रम है। वे समारे जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पधारेला। रक्षा मंत्री जोधपुर एयरबेस माए चाल रहा के देशा रा भेड़ा युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति 2026 रा एयर शो और दूजा कार्यक्रम माए भाग लेवेला। इन दौरान रक्षा मंत्री भारतीय वायुसेना रा जवाना और दूजा देशा री वायुसेना रा नुमाइंदा सा गई मुलाकात करेला। आज विश्व डाक दिवस है। ओ दिन डाक सेवाओं रा योगदान री याद दिरावे है। विश्व डाक दिवस रो इन साल रो मुद्दो एक डाक नेटवर्क अनंत संभावनाएं राखी चियो है। आज राष्ट्रीय डाक सप्ताह ही सरूफियो। राजस्थान परिमंडल रा मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल सुशील कुमार बतायो के सप्ताह रे दौरान रोजिना खास थीम सागे भांत भांत रा कार्यक्रम रख्या जावेला। इनरो मकसद डाक सेवावां ने 32 सुविधाजनक, आसान और जनता री बदलती जरूरतां रे मुजब बनावणो है।
1: डाक विभाग फाइनेंशियल सर्विसेज भी देता है और डाक जो मेल्स है हमारा पार्सल लॉजिस्टिक्स और अन्य जो पत्र पत्रिकाएं हैं जो चिट्ठियां हैं इन सारे दो प्रमुख कैटेगरीज में हम काम करते हैं। ऐसा हुआ है कि जो पर्सनल मेल है जो लोग अपने आपसी चिट्ठियां लिखते थे वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जो पार्सल्स है जो बिजनेस पोस्ट है उसमें बढ़ोतरी हुई है। उसको हम केंद्र बिंदु में रखे हुए हैं और उनकी जरूरतों के अनुसार बदलाव ला रहे हैं। और जो हमारा ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज है उस विभिन्न प्रकार के खाते हैं और जो हमारा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है और रूरल लाइफ इंश्योरेंस है इन सारी चीजों के साथ हम लोगों के बीच में है।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक मत है AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। ई साल री तीजी राष्ट्रीय लोक अदालत काल लगाई चावेला। प्रदेश में हाई कोर्ट समेत सगली निचली अदालतां, राजस्व अदालतां और उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में लोक अदालत लगाई चावेला। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रा सचिव हरिओम अत्री बतायो के लोक अदालत में पक्षकार आपसी रजामंदी और राजीनामा रे जरिए मामला निपटा सकेला। आ लोक अदालतां में 8,38,000 बत्ता मामला माथे विचार करियो चावेला। वे बतायो के राजस्थान हाई कोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश संजय के अग्रवाल इनरो उद्घाटन करेला, जदके जयपुर और दूजी अदालतां माए लोक अदालत न्यायाधीशां री सदारत माए लगाई जावेला। राज्य माए मानसिक स्वास्थ्य रे बारे माए जाग जगावण सारू 10 सितंबर उ चलाई चियो मानसिक स्वास्थ्य महीनो काल पूरो फैला। इन दौरान स्कूल कॉलेजां माए रैलियां और जागरूकता सत्र समेत भांत भांत रा कार्यक्रम रखी जिया और तनाव प्रबंधन रा बारा माए जानकारी दीरी जी। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश बतायो के मानसिक स्वास्थ्य महीनो काल डिजिटल शपथ अभियान सागे पूरो फैला।
2: मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को शपथ दिलाई है। लगभग 95,000 से अधिक लोगों ने शपथ ली है कि हम मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करें।

0: मेंटल वेलबींग है, उसमें युवा मन कार्यक्रम हमने आयोजित किए थे और 33,000 से ज्यादा लोगों को हमने इसमें लाभान्वित किया गया है कि जो युवा व्यक्ति है उनमें किस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य को जो है स्वस्थ रख सके उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस किया गया है। तो लगभग 63,000 से अधिक युवाओं को हमने तैयार किया है जो अपने आसपास जो अपने सहपाठी हैं या जो दूसरे लोग हैं उनके समाज में या उनके परिचित हैं उनको अगर किसी प्रकार का मानसिक तनाव होता है तो उनकी मदद करने में कारगर रहेंगे। सभी लोगों को जो है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो है चाहे वो वर्क प्लेस मैनेजमेंट हो चाहे वो युवा हो या अन्य जो दूसरे हैं उन सबको जो है मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने का इसमें काम किया गया है।
1: देश माए खेतीबाड़ी रा हलका माए महिलावां रा खास काम और दूजा हलका माए वारा योगदान रो मान करन रा मकसद 15 अक्टूबर ने राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनायो चावेला। इन रो खास जलसो नई दिल्ली माए राख्यो चावेला जिनमाए हर राज्यों खेतीबाड़ी रा हलका माए बेहतरीन काम करन वाली एक एक प्रगतिशील महिला किसान शामिल भेला। राजस्थान सीकर जिला रा बेरी गांव री महिला किसान संतोष देवी खेदड़ चुनीची है। वे तपती गर्मी माए सेब रा पौधा उगावन माए कामयाबी हासिल कीनी। इरे अलावा वे जैविक खाद काम लेर हर साल अनार पपीता नींबू और मौसमी समेत कई फलानी पौध तैयार करे है। कोटा जिला रा कैथून हलका माए बालापुरा और गोपालपुरा टोल बीच है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे माथे एक ट्रक रे सड़क री कोर माथे उबी दूजी ट्रक उन टकरा चावन रे कारण दो जना री मौत वेगी और 10 जना जख्मी हो गया। पुलिस आ जानकारी टीनी। अरब मौसम राज्य में काल सक्रिय भेवन वाला एक नुआ पश्चिमी विक्षोभ रा असर बीकानेर संभाग सीकर और झुंझुनू जिला में आवता दो दिन आंधी बारिश भेवन रा आसार है। ए बीचे प्रदेश रा कई हलका माए रात्रि बगत पारो उतरियो है। शेखावाटी हलका माए कम ते कम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस नीचे उतर कियो। टोंक नागौर और सिरोही समेत कई हलका माए समारे और मोड़ी सिंजा हल्की ठंड महसूस वेमन लगी है। हालांकि झुंझुनू चूरू और जैसलमेर जिला माए दिन री बगत तेज तावड़ा और गर्मी रो असर बनियोड़ो है। बट दिन और रात्रि बगत तापमान माए मोटो आंतरो रिकॉर्ड करियो चाहियो है। इबीचे चौमासारी बिरखा बंद हुआ पाछे तापमान माए उतार चढ़ाव रो दौर चाल रियो है। इसा गई मौसमी बीमारियां रो कोप भी बदभा लग्यो है। एड़ा हालात माए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग री ओर स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान रो तीजो दौर शुरू करीजियो है। इरे तेज चिकित्सा विभाग रा कर्मचारी घर घर जार मलेरिया और डेंगू समेत मौसमी बीमारियां बचाव बाबत जाग चका रहा है। 1 जुलाई 2024 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 देश भर में लागू करी चिया है। तीन नुआ आपराधिक कानून जनता ने और मजबूत बनावन सारू घना खास है। पेश है एक रपट।
2: नए आपराधिक कानूनों में एफआईआर, चार्जशीट, सुनवाई और फैसलों के लिए समय सीमा तय की गई है जिससे त्वरित न्याय मिल सके। पुरानी व्यवस्था में डिजिटल साक्ष्य, वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन शिकायत के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। नए कानूनों में इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराना संभव किया गया है। जीरो एफआईआर की शुरुआत के साथ ही कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज करवा सकता है। पीड़ित को एफआईआर की प्रति निशुल्क मिलेगी। वहीं गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्ति को सूचना देने का अधिकार होगा। गंभीर मामलों में घटनास्थल की फोरेंसिक वीडियोग्राफी अनिवार्य की गई है। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है जिसे सूचना दर्ज करवाने के 2 महीने के भीतर जाँच पूरी हो सके। वहीं कई छोटे अपराधों में जेल की बजाय सामुदायिक सेवा का दंड पेश किया गया है। नए आपराधिक कानून नागरिक केंद्रित सुलभ और कुशल न्याय प्रणाली की दिशा में अहम है। न्यूज रूम से सलेहा गाजी।
1: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज बूंदी माए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और सिंचाई और पीएचईडी महकमा री न्यारी न्यारी परियोजनाओं का काम रो जायजो लीनो। वे अहलकारा ने हिंडौली नैनवा गरड़दा और नवनेरा परियोजनावां समेत ईआरसीपी रातेत चलाया जा रहा काम माए तेजी लावन रा हुकम दीना। जल संचय जल संवर्धन कार्यक्रम रातेत कामा रो जायजो लेता था का मुख्य सचिव इन माए बत्यूं बत्यूं

0: परी कर रही है, लेकिन थोड़ा कान करा खोटी और करा बंतड़। राम राम सा,
1: राम राम सा, राम राम।
0: शुभ नाम आप रो?
1: रिचपाल।
0: रिचपाल जी, क्यों गांव रिचपाल जी?
1: गांव राम शाह सा।
0: तो राम शाह की कांकड़?
1: राम शाह की कांकड़ सा।
0: तो रिचपाल जी पचे डेरी आलो काम करो है?
1: डेरी को काम है सा।
0: कत्ता साल होगा?
1: 5 साल है।
0: 5 साल नु कर रही हो, किया कहीं ठीक है काम?
1: जोर को।
0: तो भैंसिया कितनी कहीं है?
1: भैंसिया है 20-22।
0: भैंसिया खासा है?
1: और 20-22 इलारे पाड़ी, एक पाड़ो और
0: दो
1: चार गाय।
0: और बाकी क्या है जगी बकरिया?
1: टोटल 40 जिनावर है, पशु तो है।
0: अच्छा, पूरा 40 है?
1: बकरी माए नहीं 40 है।
0: अच्छा, 40 बकरियां है। तो बकरियां लो ओ कद गाय करियो?
1: बकरियां 7 महीने है ऐसा।
0: अच्छा, 7 महीने ही हुआ खाली है? तो पहली तो खाली भैया भैया राग था?
1: पहली शुरुआत तो एक दो भैंस ही करी, धीरे धीरे जो व्यापार आगे बढ़िया गई और बंदियां आगे हुई गई है, लोग घरों में 1 किलो 2 किलो।
0: अच्छा।
1: 3 किलो 4 किलो बोलो, धीरे धीरे बढ़िया।
0: तो
1: 20-22 हुई
0: तो थे तो अटे कांकड़ में बैठा हो, जंगल में मंगल कर रही हो, तो पचे कहीं गांव में ले जाओ हो, पाकती नागौर पड़े ले जाओ?
1: अटे स्टॉल फिटिंग है इनकी, कन ले जा। दूध तो नागौर सप्लाई हुए।
0: अच्छा,
1: घर घर ही सप्लाई हुए कॉलोनिया में।
0: घर घर करो तो पचे मोटरसाइकिल रखो, गाड़ी रखो?
1: बाइक में सप्लाई हुए सर,
0: मोटरसाइकिल हूं। तो हमें जिया टाइम है तो अबे ले जाओ नागौर।
1: नागौर सुबह 5 बजे दूध निकले, दूने को टाइम 3 बजे शुरुआत करा
0: तड़के
1: तड़के, शाम का 3 बजे 5 बजे 2 घंटा में दूध बांटा सारे पशु दे दुआई, दूध निकाल पर रवाना हो जाओ।
0: तो अबार अब थे 3 जना है जगह दुआरी में लागी उड़ा।
1: हाँ,
0: कितो टाइम लागे?
1: लाग जी को तन बताया दियो कि भाई बांटा अंटार दे 2 घंटा लाग जे,
0: 2 घंटा पूरा काम।
1: हाँ, बीचे रुक जावा कर जावा 2 घंटा में दूला।
0: अब बात आवे रिचपाल जी भैंसिया रे लावण री या जी आकी नस्ल की, तो की नस्ल की भैंसिया था?
1: भैंसिया तो खुरा नस्ल की है, मुंडी के बोल चाल की भाषा में कहे खुंडी। मुरा नस्ल की हरियाणा की नस्ल है, लंबो दूध देवे, लंबा टाइम 7-8 महीने दे।
0: तो एक जी बात करा चौकी भैंस की, तो कीमत कती का?
1: चौकी भैंस की 2.25 लाख ले पर 2.5 लाख के ऊपर ते निकल जा।
0: अच्छा अच्छा, तो पहलियान दुजान की कीमत?
1: पहलियान दुजान की 2 दांत की जोटी की रेट, अगर दूध ताजो देवे तो पैसा ताजा ही हुआ।
0: तो थे पच पहली बार में ले रहे जन कटू ले बारू ले?
1: नहीं, अटू लोकल भी ले, आस पास के गाँव मानो चौकी भैंस देकर दुआरी गुआरी कराए दे कर लिए।
0: तो जी थे कासा सालू काम काज कर रही हो, कोई भाईसेन मान लो भैंस लेवे जो को जानकार थोड़ा कम वे, तो कहीं देखे कहीं देखनो पड़े जकाऊ भैंस है जगी? एक बार चौकी नहीं उड़े,
1: एक तो रंग रूप को देखो कटी चपका नहीं होना, उड़ा माते धोड़ो छपको नहीं होना, एक साइड वे जन दोनों साइड वे जन बढ़िया।
0: अच्छा।
1: एक पूंछ लंबी होनी, पूंछ के धोड़ा बाल होना, ऑर्डर है जो दूध को वो ठाम है जो थोड़ो बड्डो होना, और सिंगड़ा है सिंग है जगह मुड़े हुए होना चाहिए
0: एकदम जी आप
1: मुक्की टाइप।
0: तो बिना जगह थे जगह मुर्रा नस्ल के?
1: मुर्रा नस्ल,
0: चौकी नस्ल,
1: चौकी नस्ल।
0: तो अब की जगह भैंसिया बेवड़ी का सदी के कत्ती बेवड़ी में?
1: अबार बेवड़ी 11-12
0: है जन। टेम को दूध कत्तो काई हो जाए?
1: टेम को दूध हो जाए 70 के,
0: 70 के ले उजे। तो ओ दोनों टाइम है जो 70-70 की लाइन
1: है,
0: 1.5 क्विंटल नेड़ो उजे जार दियो। काई भाव चले दूध का?
1: दूध का भाव बाजार का भाव है 80 रुपया।
0: अच्छा,
1: कोई कम दे 2 रुपया।
0: तो लीटर के हिसाब हुंदे हो किल्ला के हिसाब?
1: लीटर के हिसाब
0: 80 रुपया। तो जे खर्चे की बात करा तो खर्चो कतो काई बैठ जे एक भैंस माते?
1: इस बार तो खर्चो ज्यादा ही बैठियो इस साल में, पिछले दिसंबर हुई गाय है, कपास की खड़ी जगी की रेट
0: बदगी
1: बढ़ोतरी होते होते 2700 के आसपास पहुंच गई।
0: ओ घनी गई है फिर?
1: घनी गई थी, आए तो 5 साल पहले व्यापार शुरू करियो जना कपास से कल 1300 ही
0: सिर्फ दोनों में बत्ती गई फिर?
1: दोनों में बत्ती गई फिर जना, फिर भी अब सूखो चारों भी इस बार फसल बढ़िया हुई कोनी, इंद्रदेव मेहरबान कोनी या तो आप आगे चारों जगह 7 में आंदो जगह 12 में आ रही है,
0: मतलब ओ भी दूनो नेड़ो को।
1: हाँ, दूनो नेड़ो को।
0: तो जन तो महंगी वाड़ा बढ़ना हुआ जो कि कम पोसा
1: खर्चा ही मार है तो गिराएगा मात्र दूध का है, अगर पैसे या बड़ा वहाँ प्रति लीटर है।
0: अच्छा,
1: तो बे भी आना कानी करे तो व्यापार है जो डगमगा रही है
0: बाहर, मतलब काल बरस के माए दोरो है।
1: दोरो है।
0: तो पहली तो जी दूध का भाव है जो 60-65 ही हाँ।
1: तो सूखो चारो अवेलेबल हो बहुत सारो। अबे तो चारो हरियाणा साइड आवे जाना थोड़ा बहुत काम चले तो मारवाड़ में तो यो को नहीं
0: वियोगन। तो आप रे खेती बाड़ी उली बता
1: खेती बाड़ी थे साबन इती खेती बाड़ी में इती चारों इतने पशुओं के
0: घना घना मुंडा घना
1: घना।
0: तो खास जिया बात करा बेशर चारे री आमे पौष्टिकता बनियोडी रेवे और निरोगता रेवे शरीर में तो किसो चारो देवान
1: इन मैं तो देखो सा जवार की
0: कुतर
1: कुतर है जकी बढ़िया रहे क्योंकि मैं थोड़ा बहुत मीठो रस हुए जो रस बने जन पशु को थोड़ा सो दूध बढ़िया हुए पौष्टिक हुए। और ये सूखो चारा में बाजरी की कुतरी दिया मूंगाली दिया और मूंगफली का चारो
0: वो भी लाओगे
1: वो भी लाओ वो थोड़ा मीठो हुए जन खागा और भी मंगाई है खराब थोड़ो कम निकला।
0: तो भावड़े आपकी कुतरा का कितना कहीं
1: कुतर का भाव पिछली बार अबार लाया महीना भर पहले 21 रुपया किलो चल रहा है
0: घना होते 14-21
1: की 21 की फिर डबल की फिर खर्चो ज्यादा ऊंड होगा बचत कम ऊंड होगी।
0: बस वो कारण हो ये काल बरस है
1: काल बरस है। बस पेट्रोल की कीमत बढ़े दिनों दिन जो पेट्रोल की कीमत की बढ़ने की वजह जगह माल ढोन के आप आगे आ रही है मूंग की चूरिया वगैरह वगैरह बारू आवे गुजरात साइड कोई तो हाँ। में भी पैसा की बढ़ोतरी होगी।
0: बस चार आका नहीं है जी महंगे वाड़ो बढ़ रही हो जगह है जगह की कम पोसा है
1: हरियाणा साइड में तो आंदोलन भी चल रही है कि भाई मांग रेट मत दूध लेव नहीं दूध देवा को नहीं
0: किसान एक टूर आप
1: किसान एक तो कर रही है जबकि मारवाड़ में एक तो है को नहीं जगो अबे दूध की तो बैंक तो कमी आवे को नहीं क्यों बे तो अबे बैन फसवा को मतलब को नहीं बे तो बना रही है फर्जी दूध कंपनी में बन जाए फर्जी दूध पैकिंग हुई है बड़े शहर मायने पतो कौन सा ले भाई दूध फर्जी है असली है। असली दूध की तो वैलिडिटी इतनी है 7-8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा बाद खराब हो
0: थैलियाला ने तो कतो राखो भले
1: थैलियाला ने 6 महीने जीव तो राखो उनके पर।
0: तो रिजपाल जी जी यहाँ बात हुए देखो मिनका में भी हरी बीमारी हुए तो धावदन में भी हुए तो भैंसियांग मायने हम किसी बीमारी आवे
1: भैंसियांग में अब देखो ये खुरपका मुंह पका मुंडा में छाला उजियर लाला पड़न रोग जियर पका दिन हो रहे सर्दियां मान टीका लगाना पड़े पहली
0: अच्छा पहली टीका लगा
1: पहली लगाना पड़े
0: कणा लगाए करो
1: ये लगाए ले महीना भर बाद में आप आपांगे
0: जी अबार अब सर्दियां आने वाली
1: हां सर्दी थोड़ी चले हां नवंबर ज्यादा सर्दी मायने और रोग है जो बढ़ोतरी करे ओ कहीं पता सारा में बाद में पशु दूध सूख जाए
0: तो अब थे जो टीका अगले महीने या इस महीना लास्ट में लगा ले।
1: लगा ले
0: तो मत ही लगाओ हो कोई कंप्यूटर
1: धीरे धीरे अभ्यास करता ही का तो खुद ही लगा ला।
0: अच्छा खुद ही का भाई धीरे धीरे काम करता करता
1: डॉक्टर आए तो बता दियो कि सर्कल एरिया में तो सुई लगा सके
0: अच्छा
1: मेडिकल लिया मार खुद लगाए ला
0: सलाह ले
1: आपकी इच्छा नहीं लगावा डॉक्टर की सलाह लिया पर्टिकुलर मांगे डॉक्टर संपर्क है बढ़िया
0: संपर्क राखो
1: हाँ जगह मांगे रात दिन को छोटो मोटो जगह मांगे समझ के परे हुए जगह ने आज ये भी जगह के भाई हम कौन है दिमाग बारे के खुद आए इलाज कर जा
0: देख ले हाँ। तो रिजपाल जी पचे घर का पैसों में पेंशन ली भी ही या कोई सरकारी अनुदान वगैरह
1: कोई सरकारी अनुदान को नहीं हो एक लिवी धीरे धीरे बैंक पाइडियम पाली कोई पाइडियम पेंशन बन गिर जो जरूरत हुई व्यापार बढ़ी जो एक और ले आ रही है एक और ले ऐलान करता करता भेड़ी कर ली
0: खासा कर ली तो गायें भी दिखे मायने एक
1: गाय तो एक ला यार रोल रोल एक भी की बच्ची हुई की एक फेरू लिए या जो दो तीन ऐलान करते
0: हैं एक ही नस्ल की है
1: एचएफ है
0: होलिस्टिन होलिस्टिन है आंखों भी दूध खासो है
1: दूध थोड़ा सा ज्यादा हुए 8-9 लीटर और लंबा टाइम तक दूध देवे
0: ए भी है जो कि दूध भाव आव बचे कहीं नहीं रहेगा 40-45 रहे
1: बस एंगे इतना ही रहे 50 रुपये जा रही है मार्केट में दूध ज्यादा।
0: अच्छा ए हारे बकरियां दिखे है ए धोले रंग की हगली एक हिरकी है की नस्ल की है
1: ए सोजत गुलाबी नस्ल है के कान लंबा है गुलाब के फूल के जड़े का,
0: कान रहा दिखे दिखे तो एक थे 7-8 महीने ही हुआ
1: 7 महीने ही हुआ बैठे बैठा के यार दोस्त बीच विचार चलियो कि भाई नस्ल व्यापार में ठीक है बढ़ोतरी थोड़ी सी जल्दी हुए के साल में 2 बार बकरी बच्चो देवे तो बढ़ोतरी जल्दी हुई जाए। अगर पशु 20 में शुरू करा तो 100 तक फूक ता टाइम कौन लागे, 2 साल में फूक जाए।
0: तो अबार किता जीव ले रहे थे?
1: मैं जीव ले रहे 20 22 ले रहे।
0: कटू ले
1: सोजत ले
0: सोजत जार ले रहे

0: एक बकरी की कीमत कती काई भी?
1: एक बकरी कीमत औसत 20-22 हजार के बीच पड़ी।
0: अच्छा, ब्याड़ी या बिना ब्याड़ी?
1: ब्याड़ी पड़ी, साथ पशु आया छोटा बच्चा।
0: हाँ हाँ,
1: देखा 10-12 तो मेल का आप जगह ने बेच दिया। बकरा और फीमेल का भी जगह है
0: तो
1: 10-11 बिलगी।
0: हाँ हाँ,
1: बिलगी 31 बकरियां होगी, 5-7 वापिस मार पे 6 महीना हो जाए। अगर
0: मतलब
1: बकरी बकरी 45 दिन के बाद में हीट में आई परी। हाँ। और 45 दिन हो गया बनो जे
0: तो 12 महीना में दुनी हो जी।
1: हाँ तो
0: के दुनी हो ज्यादा।
1: अब 12 महीना देख लो नहीं था मैं, 20 लायो बकरी बच्चे आया तो आज 31 तो भूख आ रही नस्ल फसल में आपके जगह देख लो ना, जगह मान 6 बकरी तो पैदा होगी।
0: अच्छा,
1: 7 दिन और दिए बकरियां आया जगह, यही जगह मान 6 तो बकरियां लाई और 6 बकरा लाई है। अब 31-37 तो हुई गी।
0: हाल
1: 7-8 मार बकरी और भी आई जन आप समझ लो नहीं
0: वेजा
1: दूनी तो हो चुकी 12 महीना नहीं हुई जे, पर ए बकरियां पाची 12 महीना हुई जन बातचीत भी आई।
0: अच्छा, 12 महीना
1: एक बकरी जगह जन्म ले 12 महीना की वेजन पचे
0: जन भी आ जाए
1: बकरी बन जे।
0: तो आरे पचे खान पीन की बात करा तो
1: गंवार को नीरो है।
0: अच्छा,
1: मूंग है, जो है दाना मायने
0: दानो ने कौन पड़े,
1: हरी पत्ती है अपंग लूंग की।
0: अच्छा, लूंग अब गिरिजपाल जी खासा महंगो है,
1: लूंग 38 रुपया किलो भी क्यों हो पिछले। अब आज का ताजा भाव है सितंबर का अपंग नहीं अक्टूबर का, ये भाई 24 रुपया किलो बिक्री है। बार 24 ले 28-30 तक बिक्री है,
0: भाई 30-20 के बीच बीच
1: 28 ले 24 ले मां 28-30 के बीच साफ सुथरो कांटा कम है, जन रुपए 2 रुपए बतो दे दे लोग
0: तो जन तो थाने खेल दिया है बजे छंगार आने ना आगनी पड़ी थे तो बजे बेचोत के
1: बेची जगो नहीं रे इती क्यों पतो कौन चले ज्यादा लेनी पड़ी
0: लेनो पड़ी
1: लेनो पड़ी।
0: तो आकी कमाई तो थे के वो खाली बकरा बेचना या कोई बकरी बेचो तो भाई है
1: भाई कमाई और की कोनी और तो मांस उत्पादन है।
0: अच्छा, तो अभी जी मान लो ईद रो त्योहार आवे बी टाइम बकरा करार बिके पचे 12 महीना के बकरे की बात करा तो कता कायम बिक जे?
1: देखो सर, धंधो तो शुरुआत करी है फिर भी लोगों सलाह लेउडी पूछताछ करी उड़ी है कि बढ़िया खान पान और बढ़िया नस्ल को बकरो 60-70 किलो को हुए।
0: हाँ
1: हाँ, तो ऊंचे साहब देखो कोई बकरा 40 हजार कोई 60 हजार कोई 50 हजार। अब की पिछली बार ईद माते 550 रुपया किलो जिंदा बकरो बिको तुल पर और।
0: अच्छा,
1: कटी कटी तोल मात बिके तो 550 रुपया किलो बिको जिंदो।
0: आंख मायने भी रोग वोग आवे की?
1: एमे रोग थोड़ो ज्यादा आवे, पशु ग्रोथ भी ज्यादा करे, एकदम फार्म खत्म भी जल्दी हो जाए अगर कोई रोग पतो नहीं चाले तो। एक संक्रमण बहुत सारा रोग है जगह में अपन खुद ने भी पतो को नहीं के
0: भाई, एक तो फिड़की उड़ जाए
1: फिड़की और एक पीपीआर नाम को फेरो एक ईटी है बिन फिड़की के था कोई जी, और एक पशु है क्या गैबन पशु है बस छन जावे कम टाइम। अच्छा। जितना आपको टाइम पीरियड लेवे ना 150 दिन को गर्भकाल क्यों पहली बच्चों दे देर वो बच्चों नष्ट हो जाए
0: जन यूं है जो को बैठे को फार्म में जो नर दी दी एक उन दूजा में फैल जाए रे पीपीआर वगैरह।
1: हाँ, पीपीआर
0: तो एक बस इलाज काई करो
1: गोल चक्कर खाए गिरनो।
0: हाँ,
1: अचानक चलते चलते पशु खराब हो जाने एम ही खुरपगा मुंह पगा एम ए भी रोग आवे सर्दिया मायने
0: एके भी टीका लगो
1: टीका छोटा बच्चों ले सारा अंग लागे
0: ए भी मत ही लगाते हैं
1: मत ही लगाएला 1 ग्राम 2 ml मायने वो डॉक्टर की सलाह ले रहा है भाई इतना उम्र को बच्चों है वो वेट के अनुसार बता देगी इतना किला वेट है तो इतना ml दवाई दे सको आप बीती दे दा।
0: तो हमें जी मौसम बदल रही है आने वाला दिन है जगह सर्दी रहा है तो आरे ताम जाम तो थार पूरा करियो है।
1: अब देखो है रागना भी हिंसा भी पड़ी अपन घर में रहवा भी हिंसा भी
0: भाई अबार देख रही है देखो थोड़ी गर्मी लागे तो पंखा चाल रहा है कहीं तो भैंसा के कहीं बकरियां सब के पंखा लगे।
1: हाँ भाई उस्ताद भी फार्म बनाए दिए फार्म के हिंसा भी रहा कि अगर कांकड़ में चरन था भी हिंसा होती
0: भाई
1: नस्ल को चैन अपना भी अनुसार ही तो
0: हूँ तो सर आप जे आने सुविधा दे तो ए भी आपने आमदनी की सुविधा दे आई बात है।
1: हाँ तो एक तो बैठा बैठा कौन को मतलब बैठ बैठ बकरी आराम पावे चूर में घर निकल जावा 10 किलोमीटर पैदल चला तो वो अंग कौन लागे लेकिन बात है थोड़ो बहुत खावे तो ही ठीक है।
0: तो देखो

0: भी गोबर घणो ही यार, बकरियां री मींगणियां भी है, तो अन नर नर रखोगे एक दड़ा मात्र रखो।
1: अब थोड़ी है दणा भेळो ही चाले नहीं, तो बकरी की मींगनी थोड़ी महंगी बिके।
0: महंगी बिके
1: हां।
0: आ काई फट्टा री बात करन तो कितना को बिके फट्टो
1: फट्टो? तो आल तो बेचो को नहीं, पण आपा के यार दोस्त
0: 7000 बेचा को वे
1: 7000 भैंसिया को फू को महंगाई के दौर में 10000 रुपये बकरी की मेंगनी को फट्टो बैठे
0: तो अलग राह को जन ठीक रहे।
1: आप घर का खेत में नागनी तो बेली चल है।
0: अच्छा तो हेजी ना को खाद के सड़ा गड़ा रखी तैयार करो अधी के नाली आली बनाई।
1: देखो तो पानी तो सूखो नाली गंदो पानी है, जो को पैसा वगैरह हो तो साइड में बाहर जा रही हो खेतों, और बहुत जगह एकदम फ्रेश ही है।
0: तो बिंग मायने ओ जो को जिया भैंसा कचरो खावे माल चारो ओ बचोड़ो रहे जो अवशेष माते नाको कोनी पानी आणी होरी अंग सड़ाव गळाव कोनी
1: सड़ाव गळाव कोनी सा सड़ी गली तो अपने आप ही क्यों ही मत सुबह डालियो शाम का पाछो डाल दे दोपहर तीन टाइम फोटा मात फोटो जावे वो दबजिए गिल्लो ही रहे जन ऑटोमेटिकली
0: और थाना से आप कर ओ चारो कचरो नाको जो ओ भी माते
1: ना ओ माते ना
0: पछे पानी आणी देव जन सड़ गळ तो जे
1: ओ सड़ गळ जे बरसात होवे ऊपर गळ जे हो तो थोड़ो ही वही की तो
0: तो साल को कतो खाद हुजे कता फटा हुजे
1: साल को पिछली साल इस साल तो औसत देख लो नहीं 20-21 फटा खाद हुए
0: जन जमी इती है।
1: हाँ जमी है अपन
0: कता बीघा
1: 35-40 बीघा।
0: हाँ जन तो जमी जमी में ही है जाओ भी एक जमीन फोर नाको जनवा दो तीन साल एकर नाक लियो
1: एक नाक छोड़ो दो साल 20-22 फटा तो दो खेता में 20 बीघा में आज एक बीघा में एक देख लंदा।
0: तो एक तो निजपाल जी अंग्रेजी खाद ना के एक उद्देशी ना के इम उपज में की फर्क रहे?
1: दवाई को और छिड़काव कम करना पड़े, रोग कम आवे, फसल है जी बढ़िया बिके,
0: निरोगी रहे,
1: निरोगी रहे, खेत कड़पान रहे।
0: देसी खाद और एक लोग खाद, देखो होड़ा
1: खाद, खाद दो साल ते गड़बोग रहे। दो साल ते दे भोग रहे आपको
0: कुल मिला विदेशी खेती वास्ते देसी खाद जरूरी है।
1: जैविक जीवन जरूरी है,
0: जैविक जरूरी है। तो जैविक खेती करो अंग्रेजी वालों कौन करो?
1: अंग्रेजी कौन करा सा
0: जैविक आलो करो
1: दवाई कम छिड़काव करा फसल सके जी तो बचाव करा जे ज्यादा ही रोग है जी तो करना ही पड़े
0: तो करना पड़े नहीं तो ज्यादा जैविक मत जोर। वाह सावा रिचपाल जी आज आप मिलर इतनी बंतल करी आपने घणो घणो धन्यवाद।
2: अरे मीहा तू इतनी रिलैक्स लग रही है आजकल, क्या सीक्रेट है यार?
3: सीक्रेट नहीं स्मार्ट मूव है, मैंने लिया है LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
2: ओ रियली, क्या स्पेशल है इसमें?
3: देख छोटी बचत से बड़ी सेविंग होती है और इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, इसमें गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है 3 अट्रैक्टिव ऑप्शंस के साथ, और तो और ऑटो कवर भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये प्लान केवल महिलाओं के लिए है, एक्सक्लूसिव।
2: वाह मुझे भी लेना है यार LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
3: तो अभी विजिट करें LIC.in या अपनी नजदीकी LIC शाखा में संपर्क करें। LIC हर पल आपके साथ।
4: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
5: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
6: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
7: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
9: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: तो वह देखो बंतल विहीर रिचपाल जी घणो अच्छो काम कर रही है, डेयरी व्यवसाय कर रही है, हाथे हाथे है जो बढ़िया बढ़िया के जो गोट फार्म लगाएड़ो है, बकरियां पाल रही है, बढ़िया कमाई कर रही है, क्योंकि टेम के साथ अपन काम करनो पड़ेगा। अब की बार बिरखा कम भी तो थोड़ो शौक एड़ो काम हो जाए, दाव धनालो जो कहूँ थोड़ी कमावड़ी ठीक हो जाए। और देखो बाजार भंवरी पांदड़ी मारे हाथ में फूकती हुई, तो आज नागौर मंडी में मूंगारी बोली 7,800 लेर 8,500 रुपए प्रति क्विंटल लगी, मोट 6,000 7,800 ते बिक्या, काला तिल 10,000 11,500, सफेद तिल 10,500 12,500 ते बिक्या, जवारी बोली 5,000 5,900 ते लगी, तो गंवार नागौर मंडी में 6,800 7,500 ते बिक्यो, तारा मीरो 6,500 7,200।

0: औसत 40% फैट का भाव रायडा करिया 8,300 जीरो नागौर मंडी में 20,000 25,000 ते बिक्यो तो मेथी 6,000 लेर 7,200 इस सब गोल 12,000 15,400 सोपरा भाव 8,000 14,000 ते चीना नागौर मंडी में 6,000 6,750 असाड़ियो 6,000 7,500 और सिंधी सुअ 6,500 9,000 ते बिक्यो जे आपने भाव दाय आवे तो आप नागौर मंडी में ले जा आप दे सको आमदनी ले सको।
1: कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए, दिनांक 10 अक्टूबर 2026 शनिवार को सुबह 11 से 12 बजे तक कृषि आयुक्त राजस्थान श्री नरेश कुमार गोयल जैविक खेती नए आयाम विषय पर राज्य की जनता से रूबरू होंगे। जैविक कृषि पर किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सीधे बात कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो के फोन नंबर हैं 2200600 और 2366477। जयपुर के बाहर के श्रोता एसटीडी कोड 0141 डायल करें। समय एक बार फिर आपको बता दें, 10 अक्टूबर शनिवार सुबह 11 से 12 बजे। सुनना न भूलें जैविक खेती नए आयाम विषय पर कृषि आयुक्त राजस्थान श्री नरेश कुमार गोयल से सीधा संवाद। प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
0: तो भाई हमें सिंजारो टेम रे मायने सुना वहां आपने हरिनारायण शास्त्री गाड़ो ओ भजन।

अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 MHz पर। जब सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। साथ ही साथ बहुत बहुत स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
2: तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, मेहनत हिम्मत और लगन से कल्पना और योजना साकार होती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
3: और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: गाँव ढाणी कुतुब जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना लिखते हैं।
3: कार्यक्रम उमंग की प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: 8 सितंबर 2026 को अरुणिमा सिन्हा के संघर्ष से सफलता की कहानी सुनकर वास्तव में बहुत प्रेरणा मिली
2: जी।
3: उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति यह सिखाती है कि निरंतर प्रयास और मजबूत संकल्प के सामने कोई भी शारीरिक बाधा सफलता की राह नहीं रोक सकती। साथ ही लुका छिपी कार्यक्रम ने बचपन की खूबसूरत यादें ताजा कर दी। आपका कार्यक्रम मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद भी है। आपकी कड़ी मेहनत और शानदार प्रस्तुति को दिल से सलाम
2: जी। आपने आगे लिखा है, दिनांक 10 सितंबर 2026 को कार्यक्रम उमंग के अंतर्गत भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन एवं उपलब्धियों की जानकारी अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक रही। वहीं माउंटेन मैन दशरथ मांझी के संघर्ष और दृढ़ संकल्प की प्रेरणादायक कहानी ने हमें सिखाया कि कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। आपका ये कार्यक्रम भारत की विविधता में एकता और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से परिचित कराता है, जिसका मुझे अपने परिवार के साथ बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए दिल से धन्यवाद एवं हार्दिक आभार।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार, क्योंकि आप परिवार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं
2: जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
3: आप सबके संदेशों के लिए हमारा आभार। श्रोताओं, इसी तरह से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। पुरस्कारों और सम्मानों की चर्चा के इस पड़ाव पर आज हम बात करेंगे भारत के साहित्य जगत के अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान की, ज्ञानपीठ पुरस्कार की।
2: जी हाँ श्रोताओं, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को कम होती है। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। अजीत जी, अब आपकी बारी।
3: जी विमलेश जी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को नहीं होती। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
2: ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का एक प्रमुख साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा की गई थी और पहला पुरस्कार 1965 में प्रदान किया गया।
3: तो हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला था।
2: जी बताती हूँ, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम के महान कवि जी शंकर कुरुप को वर्ष 2065 में प्रदान

0: किया गया था। उन्हें उनके काव्य संग्रह उड़क्कुझल यानी बांसुरी के लिए सम्मानित किया गया था।
1: बहुत सुंदर, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत ही भारतीय भाषाओं के साहित्य को सम्मान देने से हुई।
0: जी बिल्कुल। श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारत अनेक भाषाओं और साहित्यिक परंपराओं वाला देश है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक सृजन को पहचान और सम्मान देना है। तो अजीत जी, किन किन भाषाओं के साहित्यकारों को ये पुरस्कार मिल सकता है?
1: मिमरेश जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के साहित्य से संबंधित है।
0: जी।
1: समय के साथ साथ इसका दायरा बढ़ा है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ओडिया, असमिया, पंजाबी, कश्मीरी, मैथिली और अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकार अब तक इस सम्मान से अलंकृत हो चुके हैं।
0: जी, यानी ये पुरस्कार केवल किसी एक भाषा के साहित्य को नहीं बल्कि भारत की विविध साहित्यिक सृजन एवं परंपराओं को सम्मान देता है।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही, यही इसकी सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक है।
0: अजीत जी, अक्सर एक प्रश्न मेरे मन में आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम ज्ञानपीठ क्यों रखा गया?
1: बहुत सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ का अर्थ है ज्ञान का स्थान या ज्ञान का आसन। नाम से ही स्पष्ट है कि यह पुरस्कार साहित्य और ज्ञान की साधना को सम्मान देने की भावना से जुड़ा हुआ है।
0: तो इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कुछ प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम भी तो बताइए, हमारे विद्यार्थी श्रोता जरूर इस जानकारी से लाभान्वित होंगे।
1: जी जरूर। हिंदी साहित्य में सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, कृष्ण सोबती और विनोद कुमार शुक्ल जैसे साहित्यकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं।
0: जी, तो चलिए अजीत जी, अब लगे हाथों आपसे भी एक प्रश्न। और वो प्रश्न ये है कि भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी?
1: ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में बांग्ला साहित्य के लिए यह सम्मान मिला था।
0: जी,
1: तो अब एक प्रश्न मेरी ओर से, क्या यह पुरस्कार केवल कविता के लिए दिया जाता है?
0: नहीं अजीत जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जिसमें कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और अन्य साहित्यिक रचनाएं भी शामिल होती हैं।
1: श्रोताओं, आपकी जिज्ञासा तो जरूर बढ़ रही होगी कि इस पुरस्कार में मिलता क्या है। तो आपको हम बता दें, इस पुरस्कार के साथ साथ प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की प्रतिमा और नकद राशि भी दी जाती है।
0: आपने कहा वाग्देवी की प्रतिमा, यानी माँ सरस्वती की प्रतिमा?
1: जी हाँ, भारतीय परंपरा में माँ सरस्वती को ज्ञान, विद्या और वाणी की देवी माना जाता है।
0: जी,
1: इसीलिए साहित्य के सर्वोच्च सम्मानों में वाग्देवी की प्रतिमा का होना तो बहुत ही अर्थपूर्ण है।
0: तो श्रोताओ, आज हमने जाना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुआ, पहला पुरस्कार किसे मिला और इसका साहित्य में क्या महत्व है।
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात श्रोताओ, भारत की विविध भाषाएं हमारी सांस्कृतिक शक्ति हैं। हिंदी हो या बांग्ला, तमिल हो या मलयालम, मराठी हो या कन्नड़, हर भाषा अपने साथ एक समृद्ध साहित्यिक प्रवाह लेकर चलती है।
0: और ज्ञानपीठ पुरस्कार उस साहित्यिक विविधता को सम्मान देने वाली एक महत्वपूर्ण परंपरा है।
1: जी हाँ बिल्कुल। तो आइए श्रोताओ, हम भी अपनी मातृभाषा और स्थानीय भारतीय भाषाओं के साहित्य को पढ़ें, समझें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएं।
0: क्योंकि भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं बल्कि हमारी स्मृतियों, विचारों और संस्कृति की पहचान भी है। तो श्रोताओ, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी, जरूर लिख भेजिएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है श्रोताओं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए।
1: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है सीखो।
0: ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ सिंह जी द्वारा रचित कविता सीखो का संगीत रूपक है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करना चाहिए और उससे शिक्षा लेनी चाहिए।

0: खुशी जुगाना।
1: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: सीख हवा के झोंकों से लो,
1: कोमल भाव बहाना,
0: कोमल भाव बहाना,
1: दूध तथा पानी से सीखो,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
1: मिलना और मिलाना,
0: मिलना और मिलाना,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
1: जगना और जगाना,
0: जगना और जगाना,
1: लता और पेड़ों से सीखो,
0: लता और पेड़ों से सीखो,
1: सबको गले लगाना,
0: सबको गले लगाना,
1: दीपक से सीखो जितना,
0: दीपक से सीखो जितना,
1: हो सके अंधेरा हरना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: सच्ची सेवा करना,
0: सच्ची सेवा करना,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जीवन पथ में बढ़ना,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
1: और धुएं से सीखो हरदम,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
1: ऊंचे ही पर चढ़ना,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना।
1: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: ये कार्यक्रम भारतीय सेना के महानायक और वीर योद्धा सूबेदार जोगिंदर सिंह जी के जीवन और भारत चीन युद्ध के समय उनके द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता और शौर्य का विवरण देता है। उन्हें मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
1: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
0: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
1: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई?
3: हाँ,
1: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध

0: के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जुगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे, उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
0: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
0: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
1: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
2: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
3: जी सुबेदार साहब।
2: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
3: जी सुबेदार साहब।
2: बोले सोनिहार।
3: सत श्री अकाल।
0: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
4: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
5: साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल का।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थी और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
0: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
1: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
5: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
6: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
5: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
6: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
4: श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
7: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना,
4: कुसुमलता,
7: वीरेंद्र
4: और हमारी आज की विशेषज्ञ
7: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
8: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
9: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM बैंड 103.7 MHz पर। पेश है चंद फिल्मी कव्वालियां।

कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। दिनांक 10 अक्टूबर 2026 शनिवार को सुबह 11 से 12 बजे तक कृषि आयुक्त राजस्थान श्री नरेश कुमार गोयल जैविक खेती नए आयाम विषय पर राज्य की जनता से रूबरू होंगे। जैविक कृषि पर किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सीधे बात कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो के फोन नंबर हैं 2200600 और 2366477। जयपुर के बाहर के श्रोता एसटीडी कोड 0141 डायल करें। समय एक बार फिर आपको बता दें, 10 अक्टूबर शनिवार सुबह 11 से 12 बजे। सुनना न भूलें जैविक खेती नए आयाम विषय पर कृषि आयुक्त राजस्थान श्री नरेश कुमार गोयल से सीधा।

हाय हाय, कहीं तुमको मेरी नजर लग न जाए। छुपा लो मुझे अपने दिल में, छुपा लो, छुपा लो मुझे अपने दिल में, छुपा लो, छुपा लो मुझे अपने दिल में, छुपा लो।

0: सुनाए के मैं।
1: आवाज मोहम्मद रफी की है, फिल्म का नाम अधिकार।
0: वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली, मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हो आप पे निसार। हाँ, बचपन

अभी आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी कव्वालियाँ। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 MHz पर।

FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम गाने नए जमाने के। प्रोग्राम का पहला नगमा लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में है। फिल्म का नाम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम गाने नए जमाने के। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM 103.7 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने भी तमिलनाडु में विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में एक सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा विजय रही। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गयी। भारत ने कहा, स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवीपिल्ले को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में 3 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तमिलगा वेत्री कड़गम ने 2-2 तथा ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल कर ली है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम में जीत हासिल की। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम TVK ने दारापुरम और मधुरांतकम में जीत हासिल की। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजय रही। असम के नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा NDA के सुशासन पर भरोसा है। श्री मोदी ने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने पुदुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए NDA की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत लोगों की भलाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करने में पार्टी को और मजबूती देगी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं दिल्ली में सराय काली खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन आज रात 9 बजे से कल रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं तय समय पर सुचारू रूप से चलेंगी। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। शंकर रोड वंदे मातरम टी पॉइंट से नई दिल्ली की ओर जाने वाले गोल चक्करों, झंडेवाला, पंचकुइया मार्ग, मंडी हाउस, अशोक रोड से जंतर मंतर रोड, विंडसर पैलेस और टॉलस्टॉय मार्ग से जनपथ क्रॉसिंग तक के लिए मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यात्रियों को पहले से यात्रा की योजना बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को

0: कल कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि स्थायी श्रम प्रमाणन परम कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका के फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रतिभाओं का आवागमन भारत और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही अमेरिकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पर्म कार्यक्रम H-1B वीजा से अलग है।
2: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पर्म H-1B वीजा कार्यक्रम से अलग है। पर्म आवेदनों का निलंबन अपने आप में मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों डिपेंडेंट्स यानी की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि प्रभावित कंपनियां के योग्य कर्मचारियों की स्थायी निवास अथवा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।
1: श्री जायसवाल ने अमरीका के उपराष्ट्रपति J.D. वेन्स की गैर अमरीकी कामगारों पर टिप्पणियों को अनुचित बताया।
2: हम मानते हैं कि इस तरह के वर्णन अवांछित हैं और उस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि अमेरिका में भारतीय पेशेवर उच्च शिक्षित हैं। वास्तव में अमेरिका का अपना इतिहास पीढ़ियों से आए उन प्रवासियों द्वारा गढ़ा गया है जिनके श्रम, उद्यम और नवाचार ने उसकी वृद्धि और समृद्धि में योगदान दिया है। ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना जिससे दुखद ऐतिहासिक और उपनिवेशिक विरासत के संदर्भ जुड़े हों अत्यंत आपत्तिजनक है।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व साझा किए जाने के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी।
3: There are three parties that have got licenses.
4: तीन कंपनियों को इसके लिए लाइसेंस दिए गए हैं, इनमें रिलायंस जियो, वन वेब और स्टारलिंक शामिल हैं। राजस्व शुल्क से जुड़ी व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तीनों कंपनियों को अलग अलग निर्धारित शर्तों और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, साथ ही सभी जरूरी प्रक्रियाओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद ही प्रत्येक कंपनी परिचालन शुरू कर सकेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को हकीकत में कैसे बदला जा रहा है।
5: सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की नींव है और किसी भी देश की आर्थिक ताकत का एक अहम आधार है। इनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और आधुनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में होता है। पिछले दो वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत में 6 राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिनमें 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
6: भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा

0: रहा है जो हमें सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा ने कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा अब केवल सपने देखने तक सीमित नहीं है बल्कि अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है।
2: सेमीकंडक्टर जर्नी
3: भारत अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में केवल उपभोक्ता और डिजाइनर बने रहने के बजाय चिप निर्माण और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर तकनीक को AI, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, रक्षा, रेलवे और औद्योगिक ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों से जोड़ना भी है।
2: इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन
1: भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में रणनीतिक क्षमताएं विकसित करने से लेकर एक व्यापक घरेलू इकोसिस्टम तैयार करने तक का बदलाव आया है। इन प्रयासों से भारत सेमीकंडक्टर के हर क्षेत्र में काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से निरंतर कौशल उन्नयन और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में विश्व कौशल प्रतियोगिता में शामिल भारतीय टीम के सदस्यों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने ये बात कही।
0: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है। आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां हैं, उसका अपना महत्व है ही, लेकिन आपको आता क्या है उसका जवाब है स्किल। जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए, तब जाकर के आप काफी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
4: चीन में 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में टीम इंडिया ने 6 रजत पदक और उत्कृष्टता के लिए 20 पदकों के साथ 10वां स्थान हासिल किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से तय नहीं होती बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आधुनिक सैन्य उपकरणों के एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में उभर रहा है। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए। संजू सैमसन ने 82 रन की पारी खेली। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने तमिलनाडु में उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया NR कांग्रेस ने पुदुचेरी में तत्तान चावड़ी सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं।

इस समय रात्रि के ठीक 9 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं चंद गजलें। पहले समाधि फरमाइए पंकज उदास की गाई ये गजल।

0: जगजीत सिंह की गई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए विशेष कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा।
1: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 23वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। इसमें भाग ले रही हैं भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और राज

0: नीतिक विश्लेषक रवि पाराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: कल्पना कीजिए, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच चिनाब नदी के उफनते पानी से 359 मीटर ऊपर टिकी एक विशाल फौलादी मेहराब का, जहां कभी पहुंचना महज एक सपना था, वहां आज भारत की तरक्की की ट्रेन फर्राटा भर रही है। सोचिए, पंबन के नीले समुद्र पर खड़े उस पुल के बारे में जो जहाजों को रास्ता देने के लिए समुद्र के सीने पर किसी विशाल पंख की तरह हवा में ऊपर उठ जाता है, या कच्छ के रण से लेकर कन्याकुमारी तक फैले उन चमचमाते एक्सप्रेस वे का, जिन्होंने दूरियों को सिर्फ किलोमीटरों में नहीं वक्त के पैमाने में भी आधा कर दिया है। ये केवल कंक्रीट, क्रेन और स्टील की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस अदम्य इच्छा शक्ति की, जिसने चुनौतियों को संभावनाओं में बदला, जिसने भारत के भूगोल को एक नए भारत के भविष्य से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज हम रुख कर रहे हैं एक ऐसी ही बदलाव की कहानी की ओर। प्रस्तुत है विशेष अंक, बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार।
2: ये फ्रेट कॉरिडोर माल गाड़ियों के लिए बिछाई गई स्पेशल पटरियां है। इससे उत्तर भारत की बंगाल और गुजरात के समंदर से कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है, और दादरी वो स्थान है जहां ये दोनों कॉरिडोर आपस में मिलते हैं, यानी यहां किसान जो उगाते हैं, यहां उद्योग जो कुछ बनाते हैं, वो जमीन से, हवाई मार्ग से दुनिया के कोने कोने तक तेजी से जा पाएगा।
1: श्रोताओं, जब किसी राष्ट्र के महान बनने की गाथा लिखी जाती है तो उसकी नींव में उसकी रीढ़ यानी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। पिछले वर्षों में भारत ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में जो गति, पैमाना और इंजीनियरिंग का चमत्कार देखा है, उसने न केवल देश की कनेक्टिविटी बदली है बल्कि हर नागरिक की आकांक्षाओं को नए पंख दिए हैं। इसी अभूतपूर्व कायाकल्प और इसके दूरगामी प्रभावों को समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर नीति को दिशा देने वाले पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी, और इस पूरे विजन के सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत प्रभावों के विश्लेषक, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार रवि पाराशर जी। आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद।
3: धन्यवाद आनंद जी।
1: मिश्रा जी, आपके साथ शुरू करते हैं। और पिछले करीब एक दशक में भारत ने सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स, हर क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव देखा है। आपसे समझना चाहते हैं कि क्या ये बदलाव सिर्फ इतना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का स्केल बढ़ा है, या प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का तरीका भी बदला है? खासकर पीएम गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के जरिए क्या अब इन अलग अलग प्रोजेक्ट्स को एक दूसरे से जोड़कर एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क की तरह देखने की सोच बन रही है?
3: बिल्कुल आनंद जी, आपने सही कहा कि पहले हमारे लिए रोड रोड थी, रेल रेल थी, हवाई अड्डे थे जहाँ पे कुछ पैसेंजर जाते थे, कुछ गाड़ियां चलती थी, कहीं पे अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध थी। लेकिन पिछले 10-12 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक नई सोच, जो शहरों को जोड़ करके, स्थानों को जोड़ करके, लोगों की मोबिलिटी को करके, फ्रीट के मूवमेंट को, अनेकल केवल मूवमेंट ही नहीं बल्कि उसको कितने सस्ते, अफोर्डेबल तरीके से उसको कर सकते हैं, कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, तो ये एक ऐसा नया व्यवस्था बनाया है पिछले 10-12 सालों में कि पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हमारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वो सारी की सारी बुनियादी सुविधाएं एक नए स्वरूप ले रही हैं। और वो स्वरूप है हमारा विकसित भारत, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 आजादी का 100वीं सदी मना रहे होंगे, सभी वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हमारा देश जो विकसित होगा उसके लिए पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, एयरपोर्ट में ले लीजिए, जिस प्रकार से एयरपोर्ट की संख्या आज दूने से ज्यादा हो गई है, और केवल एयरपोर्ट की संख्या नहीं बढ़ी है बल्कि एयरपोर्ट पे चलने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। एक साधारण सा आदमी जो कि कभी सोच नहीं सकता था, वो उड़ान इस योजना के तहत अब उसको कहीं से कहीं, देश में लगभग 95 ऐसे एयरपोर्ट है जहां पे उड़ान योजना के अंतर्गत वो जल के जा सकता है। तो उसको एक नई चीज, आप कभी एयरपोर्ट पे जाइए तो देखिए, देख करके लगता है कि ये क्या है, ये नया भारत है। आप रेलवे को देख लीजिए, रेलवे में जिस प्रकार से न केवल हमारे जितने डबल ट्रैक उसको बनाया गया बल्कि लगभग 99% से ज्यादा, ऑलमोस्ट लाइक 100% ये सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, और उसमें स्पीड पे ध्यान दिया गया, आज काफी करीब 80% ट्रैक हमारे ऐसे जिसके ऊपर

0: 110 किलोमीटर की रफ्तार से रेल चल सकती है। तो स्पीड पे ध्यान दिया गया, सुरक्षा पे ध्यान दिया गया, पीपल्स कन्वीनियंस जो हम कभी सोचते नहीं थे, चाहे शौचालय से लेकर के आपको पावर पॉइंट प्लग जिससे कि आप अपना मोबाइल को चार्ज कर सके, आपके जो है खाने पीने की सुविधा, सारी की सारी हर तरह से। और स्पीड तो है ही, अफोर्डेबिलिटी, जैसे आनंद हमारी जो अमृत भारत ट्रेनें चली, अफोर्डेबिलिटी के ऊपर उस पर ध्यान दिया गया। तो वंदे भारत ट्रेनें चली जिसको स्पीड के ऊपर ध्यान दिया गया, एक अमूल चूल परिवर्तन पूरा का पूरा, या फ्रीट कॉरिडोर में ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर। तो मुझे लगता है कि पूरी सोच में बदलाव आया। आप मेट्रो का नेटवर्क का देख लीजिए, जो मेट्रो कभी थोड़े से शहरों में हुआ करता था, हम इस पर बाद में विस्तार में बात करेंगे, तो एक छोटे शहर में जो करके आज हमारे लगभग 30 शहरों में मेट्रो चल रही है और तमाम सारे शहरों में चल रही है। पहले बार हमारे देश में रैपिड रीजनल ट्रेन की जो शुरुआत हुई है, जो नमो भारत के नाम से जो पहली शुरुआत हुई, तो ये एक नई सोच है कि कैसे हम व्यक्तियों के जो हमारे काम करने के, चाहे कारखाने से लेकर के उत्पादन के केंद्रों से लेकर के व्यवसायिक केंद्रों से लेकर के विदेशों तक, क्योंकि आज हम अपने देश के लिए ही नहीं बना रहे बल्कि हम दुनिया के लिए बना रहे, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे, तो उसको कैसे हम जहाज रानी के माध्यम से उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक नई आर्थिक सोच जो पिछले 10-12 साल में बढ़ी है, और मुझे लगता है कि ये विकसित भारत का बहुत बड़ा एक बुनियाद, उसको आगे रंग देने के लिए, उसको ताकत देने के लिए तैयार हुआ है।
1: रवि जी, अगर एक एक करके बिंदुओं पर आए और सबसे पहले शुरुआत सड़क से करते हैं, नेशनल हाईवे नेटवर्क जो 91,287 किलोमीटर था वो बढ़कर लगभग 1,46,572 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। फोर लेन हाईवेज की संख्या बढ़कर लगभग 45,000 किलोमीटर तक पहुंच गई है। आपसे ये समझना चाहते हैं कि 2014 के बाद से जो ये परिवर्तन हुआ है आम नागरिक के जीवन में, ये जो आंकड़े हैं बढ़े हुए, इनका वास्तविक मतलब क्या है और देश की प्रगति में इनके क्या मायने हैं?
2: आनंद जी, राष्ट्रीय राजमार्गों का जिस तरह से विकास हो रहा है, न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी, तो जाहिर है कि इससे आम आदमी के दैनिक रोजमर्रा के जनजीवन पर काफी सकारात्मक असर पड़ा है। दूरियां घटी हैं, कनेक्टिविटी बढ़ने से बहुत सारी चीजें हुई हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से फसल को अच्छी मंडियों तक लाना ले जाना, इलाज के लिए अच्छे अस्पतालों तक पहुंच बढ़ना, और बहुत सारे स्तरों पर अगर हम देखें तो जैसा आपने कहा कि देश में सड़कों का जाल एक तरह से बिछ रहा है, और जो आपने आंकड़ा बताया कि 2014 में जो भी प्रतिदिन सड़क निर्माण का आंकड़ा था वो अब बढ़कर 28 से 30 किलोमीटर रोज हो गया है, उल्लेखनीय वृद्धि है। 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग थे देश में, उनकी कुल लंबाई 91,287 किलोमीटर थी। अभी 2025-26 में ये आंकड़ा 1,46,572 किलोमीटर तक पहुंच गया है। ये करीब परसेंटेज में देखें तो ये 61% बढ़ोतरी है
1: जी।
2: ये अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है किसी भी सरकार के लिए। गति शक्ति मास्टर प्लान
1: जी,
2: इसका उल्लेख करना हमें यहाँ पर बहुत आवश्यक है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम गति शक्ति योजना में सड़क, रेल और दूसरे ट्रांसपोर्ट, जैसे दुर्गा शंकर जी ने कहा, साधनों को, सारे जो यातायात के साधन है उनको एकीकृत किया गया है, और इसका बहुत बड़ा फायदा अलग अलग सेक्टर्स को बिल्कुल मिला है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात आई है, देश के चारों कोनों में हर जगह एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, उनसे दूरियां बहुत घट गई हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है ये। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई 1,350 किलोमीटर है, और दिल्ली से मुंबई जाएं या मुंबई से दिल्ली के बीच हम एक्सप्रेसवे के जरिए सफर करें बाय रोड, तो 24 घंटे की बजाय 12 घंटे में ये सफर संभव है। अब ये कितना बड़ा अंतर है, जो यात्रा आप 24 घंटे में कर पाते थे वो अब करीब करीब आधे समय में आप कर सकते हैं। तो न केवल समय की बचत है बल्कि ऊर्जा की भी बचत है। इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो इंजीनियरिंग के, भारतीय इंजीनियरिंग के जो अद्भुत चमत्कार हैं वो भी आप देखेंगे। इसी दौरान कुछ प्रोजेक्ट जो है संभव हुए। तमिलनाडु के मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला एक ब्रिज है जो अंग्रेजों के शासन काल में 1914 में शुरू हुआ था उसका बनना, और करीब करीब इसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर है। जंग लगने की वजह से और कुछ पुराना पड़ने की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। अब जो नया पंबन ब्रिज बना है वो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। अटल सेतु की बात कर ले, इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है, और ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। दक्षिण मुंबई के सेवरी को नवी मुंबई से जोड़ता है ये। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। जो समुद्र पर इसका हिस्सा बना है उसकी लंबाई 16.5 किलोमीटर है और जमीन पर इसकी लंबाई 5.5 किलोमीटर है। ये 6 लेन का अटल सेतु है। मुंबई

0: नवी मुंबई तक 20 मिनट में इसके जरिए जो यात्रा करते हैं इसके माध्यम से, उसमें केवल अब आजकल 20 मिनट लगते हैं, पहले घंटों लगते थे क्योंकि ट्रैफिक जैम बहुत लंबे लंबे लगते थे और इसकी लागत थी 17,840 करोड़ रुपए। इसी तरह सुदर्शन सेतु को ले, भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है ये, गुजरात के द्वारका जिले में अरब सागर पर ये सुदर्शन सेतु स्थित है। ओखा को बेट द्वारका से ये जोड़ता है, इसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है, लागत आई थी करीब 979 करोड़ रुपए। ये 4 लेन का पुल है और दोनों किनारों पर लोगों की सुविधा के लिए 2.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ है जिस पर वो चहलकदमी भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में सड़क कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी पर बहुत ध्यान दिया गया है और इसका लाभ बहुत सारे सेक्टरों को मिल रहा है।
1: मिश्रा जी, अगर सड़क से सफर को आगे बढ़ाएं और रेल की तरफ चलें, जैसा कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जिक्र भी किया अमृत भारत स्टेशन का, तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हो रहा है। साथ ही साथ नमो भारत और वंदे भारत जो ट्रेनें चली हैं उससे यात्रा समय में तकरीबन 30-40% की समय की कमी आई है, जो आप स्पीड की भी बात कर रहे थे। सवाल यह है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने और देश की जीडीपी में इस आधुनिक कनेक्टिविटी का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, इसको आप कैसे देखते हैं?
2: आनंद जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मैं इसके पहले इसको बात करूं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा जो पराशर जी बोल रहे थे। देखिए, पहले दिल्ली से मैं रहने वाला हूं पूर्वांचल का। दिल्ली से अगर आपको बलिया या आजमगढ़ जाना हो तो बहुत टाइम लगता था, समझे कि पूरा दिन भर आपको नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 20-22 घंटे लग जाते थे। और आज आप दिल्ली से लेके लखनऊ तक एक्सप्रेसवे है जो कि मुश्किल से 5 घंटे में आप लखनऊ पहुंच सकते हैं, और वहां से अगले 3-3.5 घंटे में 4 घंटे में आप हो जाते हैं। जो दूरी हम लगाते थे 20-20 घंटे लगा देते थे, वो हम 9 घंटे के भीतर भीतर वहां पहुंच जाते। उसका क्या नतीजा निकला? आज जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था तो पहले पूर्वांचल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था क्योंकि वहां कोई सामान ले जाना अपने आप में बहुत दुरू हुआ करता था। आज पूर्वांचल में तमाम सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, बुंदेलखंड में काफी सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को इस प्रकार से कनेक्टिविटी जोड़ा है हाईवे के, नेशनल हाईवे के माध्यम से, एक्सप्रेस वे के माध्यम से, या तमाम सारे इंजीनियरिंग मार्बल जिसका भी जिक्र कर रहे थे, जैसे अटल सेतु की बात कर रहे थे, अटल सेतु में उसको सेतु नहीं लेता हूं, मैं उसको समझता हूं कि दो इकोनॉमिक सेंटर, दो ग्रोथ सेंटर, एक तरफ तो मुंबई है, दूसरे नवी मुंबई है, या आगे चलिए पूना का देख लीजिए, इन दोनों के बीच की दूरी को कम करके उसने एक बिल्कुल नया चीज ला दिया। मैंने आर्थिक विकास के लिए जो हम, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक हमारा ये पाई, इकोनॉमिक पाई बढ़ेगा नहीं, तब तक हमारे देश के लोगों की समृद्धि, लोगों के जीवन की जो स्तर में, उसमें सुधार नहीं होगा। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा काम हमारा एक्सप्रेसवे, हाईवेज और इसके माध्यम से भारत सरकार कर रही है, और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राज्य सरकार भी इसके ऊपर काफी सारा, आज महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमाम सारे जगह इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अब आपका जहां तक रेल का सवाल है, रेल में देखिए कि पिछले 10-12 साल में टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक उनका एक संदेश है कि पहले चीजों को स्केल अप करिए, पहले चीजों को नई टेक्नोलॉजी को लाइए, फिर स्पीड अप करिए, और फिर स्केल, बड़े ऐसे स्केल जो कि संभव न हो, स्केल स्पीड एंड देन स्केल। तो आज देखिए कि जिस प्रकार से रेलवे का ट्रैक हमारा लगभग 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया, रेलवे जो नए ट्रैक बने हैं, पिछले जो अगर हम देख रहे थे, जो डाटा देख रहा था, जो पिछले 10 साल में बनाते उससे दूने से ज्यादा जो पिछले 10 साल में बना, यानी उस रफ्तार से बना, और उसमें रेल में वंदे भारत से जो था, वंदे भारत से इतना सारा जो जुड़ रहा है बहुत हाई स्पीड। और सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या है, ये हमारा आत्मनिर्भर भारत है। इसकी जो वंदे भारत की जो ट्रेन है, वो हम विदेशों से, पहले तो मिस्टर की चीजें विदेशों से लाते थे, कितना हमारा पैसा खर्च होता था, कितना हमारा फॉरन एक्सचेंज लगता था, आज सब कुछ चीजें हमारे देश बन रही है, न केवल हमारे जो कोचेज बन रहे हैं बल्कि हमारी पूरी टेक्नोलॉजी, चाहे कम्युनिकेशन सिस्टम हो या सारा का सारा चीज हमारे यहाँ पे बन रहा है। अब एक तरफ तो हमने स्पीड लाई, दूसरे तरफ हमारे देश में इतने सारे लोग हैं जगह जगह अपनी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए एक अफोर्डेबल ट्रेन, अफोर्डेबल, कंफर्टेबल, स्पीड भी और सारी फैसिलिटीज भी, सिक्योरिटी के लिए जो कवच ऑटोमेटिक सिस्टम, जो हमारा जो कवच का जो सिस्टम है, आज तेजी से कवच का पूरा पूरा प्रसार हो रहा है
1: जी।
2: अब ट्रेन का तो एक तो डिस्टेंस हो रहा है, अगर आप देखेंगे शहरों के भीतर एक जो नेटवर्क होता है मेट्रो का, अब मेट्रो नेटवर्क हम 2014 में तक 5 शहर में 250 किलोमीटर भी नहीं था, आज करीब 1150 किलोमीटर मेट्रो हमारे 26 शहरों में चल रहा है, और जो काम चल रहा है अनदर 1000 किलोमीटर पर काम चल रहा है, और लगभग हम पूरी तरह से इसमें आत्मनिर्भर हो चुके हैं। मैं तो

0: करीब 15 स्टेशनों पर रुकते हुए आप केवल 55 मिनट में कर लेते, कहां 3 घंटे पहले लगते थे, 55 मिनट में कर सकते हैं। और इसे उसका क्या फायदा हुआ, आज उसके बीच तमाम सारे ग्रोथ सेंटर बनने चालू हो गए, तमाम सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी पूरा का पूरा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वो सोच कनेक्टिविटी तो एक बेसिस है, लेकिन कनेक्टिविटी के आधार पर आर्थिक उन्नयन
1: जी,
0: कैसे लोगों की हम अपने बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग की लोगों की अदर एक्टिविटी को बढ़ा करके कैसे लोगों का जीवन का स्तर को सुधार करें।
1: बिल्कुल ठीक बात है। रेल की चर्चा को थोड़ा रवि जी आपकी तरफ मोड़ते हैं और दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज की बात करें या देश के पहले केबल स्टेड अंजी खड ब्रिज और भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट न्यू पंबन ब्रिज का निर्माण की बात करें, यह सिविल इंजीनियरिंग की उपलब्धि तो है ही, साथ ही ये सामरिक और भौगोलिक दुर्गमताओं पर भारत की तकनीकी विजय है। आपसे समझना चाहते हैं कि ऐसे कठिन प्रोजेक्ट्स में इंजीनियरिंग विल पार और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की गति को किस तरह साधा गया और इसे देश में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिला।
2: देखिए आनंद जी, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी योजना परियोजना हो, इच्छा शक्ति अगर नहीं है तो वो पूरी नहीं हो सकती। अभी दुर्गा शंकर जी ने बताया कि दैनिक यात्रियों की रोजमर्रा की जीवन में मेट्रो रेल बहुत उपयोगी है, शहर टू शहर, छोटे शहर से छोटे शहर तक रैपिड रेल यानी नमो भारत जो सेवा शुरू की गई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और देश के दुरूह और दुर्गम क्षेत्रों में भी रेलवे ने, रेलवे के इंजीनियरों ने बहुत कमाल दिखाए हैं। आपने चिनाब रेलवे ब्रिज का उल्लेख किया, पहले कितनी लंबी यात्रा होती होगी जब ये रेलवे ब्रिज नहीं रहा होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बनाया गया है, ये इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है और ये एफिल टावर जो पेरिस में है उससे भी 35 मीटर ऊंचा है। इसकी लंबाई 1315 मीटर है, लागत इसमें आई 1486 करोड़ रुपए की, और इसकी मजबूती इतनी है कि ये 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आने वाली हवाओं और रिक्टर स्केल पर अगर कोई 8 की तीव्रता तक भूकंप आता है उसको भी ये सहज ही झेल सकता है। इसके अलावा आपने अंजी खड ब्रिज का उल्लेख किया, इसकी विशेषता ये है कि ये भी जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर बना भारत का पहला केबल के सहारे लटका हुआ पुल है। कटरा और रियासी को ये पुल आपस में जोड़ता है। ये उधमपुर श्रीनगर बारापुला रेल लिंक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी लंबाई 725.5 मीटर है, ऊंचाई नदी तल से 331 मीटर है। इसमें 96 केबलों का इस्तेमाल किया गया है और मुख्य स्तंभ नींव से 193 मीटर ऊंचा है और इसकी क्षमता है कि 213 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली जो हवाएं हैं उनको ये झेल सकता है। वो इस रफ्तार से चलने वाली हवाएं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और इस पर रेलगाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर सकती हैं। एक और दक्षिण भारत के ऐसे ही अद्भुत पुल की बात कर लें, ये है पाम्बन ब्रिज जो तमिलनाडु में मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला है। मोदी सरकार के कार्यकाल में इसको नया स्वरूप दिया गया, नया बनाया गया। जो अब नया पुल बना है ये पाम्बन ब्रिज तमिलनाडु में, वो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। ये आधुनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ऑटोमेटेड सिस्टम पर काम करता है। डबल ट्रैक वाला ये ब्रिज, इस पर ट्रेनें 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजर सकती हैं। जब आपने बताया, उल्लेख किया कि जब कोई जहाज निकलना होता है पुल के रास्ते से, तो ये अद्भुत तकनीकी क्षमता है इस पुल की कि 5 मिनट के अंदर पूरा पुल दो हिस्सों में विभाजित होकर ऊपर की ओर उठ जाता है, तो ऊंचे समुद्री जहाज हैं वो इसके रास्ते से निकल जाते हैं और फिर अगले 5 मिनट में इसको वापस पुल की शेप में लाया जा सकता है।
1: श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में प्रस्तुत है विशेष अंक बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर नीति को दिशा देने वाले पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार रवि पाराशर जी। रेलवे के बाद अगर एयरपोर्ट की चर्चा करें मिश्र जी, तो और हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि जो धौलेरा एक्सप्रेसवे बना या जो धौलेरा एयरपोर्ट बना, उसको भारत के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन के नजरिए से विकसित किया गया। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में जो कुछ समय पहले तक, अगर 2014 से पहले की बात करें, तो सरकारी लाल फीताशाही बहुत ज्यादा चरम पर थी, तो गवर्नेंस रिफॉर्म्स किस तरीके से किए गए कि ये बड़े प्रोजेक्ट सफल हुए, साथ ही साथ ये जो धौलेरा एयरपोर्ट या फिर एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ी, इससे भारत का वैश्विक स्तर पर कितना समृद्ध प्रभाव पड़ा? और जो हम निवेश की बात करते हैं कि विदेश

0: निवेश आए, उसमें एयरपोर्ट्स ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई।
1: बिल्कुल ठीक आपने कहा, धोलेरा एयरपोर्ट जो अभी बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है
0: जी।
1: धोलेरा एक ऐतिहासिक स्थान है, लोथल का आपने नाम सुना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो है जुड़ा हुआ वो स्थान है। मुझे वहां भी जाने का सौभाग्य मिला। वहां किसी समय इतना बड़ा सी पोर्ट हुआ करता था, इतनी सारी समृद्धि उस जमाने में, बहुत सारे बीट्स के काम दुनिया भर से वहां का संबंध हुआ करते थे। आज वहां पहुंचना भी बड़ा मुश्किल था। तो जैसे मैंने बताया कि एक तो वहां पे जाने के लिए अहमदाबाद से डायरेक्ट वहां के सड़क धोलेरा के लिए बन गई है,
0: धोलेरा एक्सप्रेस वे।
1: अभी हाल में जो कैबिनेट के डिसीजन के साथ एक अप्रूवल किया गया, एक वहां पे भी रेल लिंक भी, फास्ट रेल लिंक भी जो है अहमदाबाद से डायरेक्टली वहां धोलेरा से जोड़ने के लिए एक रेल लिंक भी सेंक्शन कर दी, और वहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। अब धोलेरा जो है एक बहुत बड़ा स्पेशल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट सेंटर, जहां पे आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ रही है, तमाम सारे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को मतलब के जुड़ने का मतलब बहुत सारी किस्म की इंडस्ट्रीज वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है
0: जी।
1: आज एक वो नया स्वरूप लेकर के आगे बढ़ रहा, और केवल धोलेरा की कहानी नहीं है बल्कि उसके जैसे आज देश में तमाम सारे जो नए नए एयरपोर्ट्स बने, जो 174 मैंने आपने बताया कि 64 से लेकर के 174 से बढ़ करके 160-170 के आसपास आज एयरपोर्ट बन गए हैं और सारे चालू हो गए हैं। उन एयरपोर्ट्स पे अब जैसे नवी मुंबई का एयरपोर्ट है
0: जी,
1: या गुवाहाटी का जो नया एयरपोर्ट बना है
0: जी,
1: जेवर का जो नया एयरपोर्ट बना है, आपका चित्तूर का वहां साउथ का जो एयरपोर्ट बना है, जो गोवा में एक अल्टरनेटिव एयरपोर्ट बना, मोपा का जो एयरपोर्ट बना
0: जी,
1: मतलब इतने सारे देश में जो एयरपोर्ट्स बने, एयरपोर्ट से हमने दुनिया से कनेक्टिविटी, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है, तो दुनिया से अपने आप को जोड़ा। हमने लॉजिस्टिक्स को बहुत सारा, इससे हमारा काफी सारा जो है, इससे जो व्यापार होगा, व्यापार हमारे इसमें काम आएगा। और एक आम आदमी के लिए जिस प्रकार का जो एक एयर फेयर हो गया है, आम आदमी को भी, क्योंकि समय बचाना उसको, उसके लिए भी उतना मत पड़े। तो वो जो आपने जो बात कही, एक हवाई चप्पल में चलने वाला आदमी हवाई सफर कर रहा है, एक देश का एक नई तस्वीर उभर करके सामने आई है।
0: रवि जी, अगर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, बतौर पत्रकार आप कितना बड़ा बदलाव देखते हैं? 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स इस देश में हैं, और हम उड़ान योजना की बात कर रहे हैं, और अब उड़ान 2.0 की भी बात हो रही है, जिसमें और सुविधाएं आम नागरिकों को मिले। हमने ये भी देखा कि सरकार ने एयरपोर्ट्स पर मिलने वाली सुविधाओं को भी आम नागरिक के ध्यान में रखकर बहुत बदलाव किए हैं, चाहे वो वहां पर फूड आइटम्स के प्राइस को कम करना हो, या फिर पैसेंजर्स के लिए लाउंज की सुविधा उपलब्ध कराना हो। बतौर पत्रकार जमीनी स्तर पर कितना बदलाव देखते हैं आप?
2: आनंद जी, जमीनी स्तर पर एक पत्रकार के तौर पर जो मेरे अनुभव है, मेरा करियर 1988-89 में पत्रकार के तौर पर शुरू हुआ था, और उस समय मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि जो मेरा वेतन था उससे मैं हवाई यात्रा कर सकूंगा। और आज इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है और जो मेरी स्थिति है, आज मैं जब चाहूं समय बचाने के लिए हवाई यात्रा मेरी सीमा में, मेरी जेब की सीमा में, तो ये फर्क बहुत धीरे धीरे आया है, और पिछले 10-12 साल से बहुत तेजी से हम देख रहे हैं। आपने बताया कि 2014 में हवाई अड्डे केवल 74 थे, अभी 165 हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। पहले क्या होता था कि आप घर के पास हवाई यात्रा करने के लिए भी आपको सड़क से बहुत लंबी चौड़ी यात्राएं करनी पड़ती थी, जो स्थिति आज नहीं है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किया गया, 15 जून 2026 से यहां से कमर्शियल उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। हिंडन एयरपोर्ट से छोटे छोटे शहरों की हवाई कनेक्टिविटी बनाई गई है। तो दिल्ली NCR के जो लोग हैं उनके लिए, और दूर दराज विदेश से आने वाले और दूर दराज के क्षेत्रों से राजधानी NCR क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए हवाई यात्रा की कितनी सुगमता हो गई है, कितनी सुलभता हो गई है, ये आज देखने को हमें मिलता है। और हवाई अड्डों, जो पुराने हवाई अड्डे थे, इस सरकार ने केवल उनकी क्षमता ही नहीं बढ़ाई, उनकी साज सज्जा, उन पर जैसे आपने कहा कि खान पान की सुविधाएं, उनका जो लुक भारतीय विरासत और भारतीय संस्कारों से जीवंत रहे, ऐसे प्रयास भी किए। हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ाने के लिए नए टर्मिनल भवन बनाए गए हैं। तो एक पत्रकार के तौर पर पिछले 12 साल के अनुभव मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग पहले हवाई यात्रा की कल्पना नहीं कर सकते थे अपने बजट के हिसाब से, वो आज हवाई यात्रा की कल्पना, अगर उन्हें कहीं अपेक्षाकृत जल्दी पहुंचना है, तो कर सकते हैं
0: जी। बिल्कुल। कार्यक्रम में अब चर्चा करते हैं सागरमाला की। श्रोताओं, सागरमाला के 5 प्रमुख पिलर्स हैं: पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट और कोस्टल शिपिंग। लेकिन मिश्रा जी, जो मेरा आप

0: से सवाल है वो वाटर मेट्रो को लेकर है। 2026 में यानी इसी वर्ष नेशनल वाटर मेट्रो पॉलिसी का ड्राफ्ट मसौदा पेश किया गया। सवाल ये है और बहुत सारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं कि जो वाटर मेट्रो की पहल है, एक तो उससे भूमि अधिग्रहण की जो स्थिति है वो खत्म हो जाएगी, उसमें भी हम कई सारे पेंच देखते थे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना वाइबल है भारत जैसे देश में, क्या इसको एक शहर से दूसरे शहर तक जोड़ा जा सकता है, क्या है इसकी वर्तमान स्थिति और वास्तविक धरातल पर कब हम इसे देखने वाले हैं?
1: बहुत अच्छी बात कही आप आनंद जी आपने। ऐसा है जैसे मेट्रो आया, मेट्रो का क्या मकसद है कि शहर में आप हर किलोमीटर पे आपके स्टेशन हो, 800 मीटर से लेकर के 1000 बाज हो, कि कहीं से कहीं पहुंचना तो आप जो है 10-12 मिनट में आप एक मेट्रो स्टेशन में पहुंच सकते हैं
0: जी।
1: उसे पूरा शहर, आज दिल्ली में 400 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो का नेटवर्क बना हुआ है, तो दिल्ली में कितना आसान हो गया, ट्रेवल कितना आसान हो गया और भी बढ़ रहा है। अभी नए उसका जो फेज 5 का उसके मेट्रो का काम चल रहा है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे शहर हमारे देश में है जहां पे या तो समुद्र या वहां पे पानी का नेटवर्क बना हुआ है
0: जी।
1: अब वहां पे पहले क्या होता था कि पुराने जमाने वाली जो बड़ी बड़ी बोट चलती थी और वो आराम से 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की रफ्तार से चली करती थी, आपको घंटों लग जाता था, कोई सुविधा नहीं होती थी धूप में और उसमें आप परेशान होते थे
0: जी।
1: मेट्रो ने क्या लाया, मेट्रो आपको कंफर्ट लाया, कनेक्टिविटी लाया, आपको जो पंक्चुअलिटी लाया
0: जी,
1: आपकी चीजों को आसान कर दिया, उसके पूरी तरह से जा सकते हैं। पहले जो इन शहरों में क्या होता था, कोची शहर में, क्योंकि मैं उस समय भारत सरकार का सेक्रेटरी था इसी मिनिस्ट्री का और हमारी उसमें हमें सब सारा का सारा चीज डेवलपमेंट हो रहा था, तो आप कोची में अगर आप देखें तो वहां पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दूरी तो मुश्किल से 2 किलोमीटर की होगी, 1.5 किलोमीटर की होगी, लेकिन आपको 2500-300 किलोमीटर जाना पड़ता था उसका समुद्र का जो अंदर गया, उसे 30 किलोमीटर जाकर के आपको घंटों लग जाते थे
0: जी।
1: अगर इसको ऐसा आपको महसूस हो जाए कि जो वहां पे स्टेशन बना हुआ वो स्टेशन मेट्रो स्टेशन टाइप का, एयर कंडीशन है, बैठने के लिए अच्छी जगह है, सारी की सारी सुविधाएं हैं और आपको कंफर्ट है, अगर आप कुछ खाना पीना चाहे, कुछ खरीदना चाहे, सारी की सारी फैसिलिटी है
0: जी।
1: ऐसा स्टेशन अगर आपको बन जाए तो आप कहीं से कहीं आप कनेक्ट कर सकते हैं
0: जी।
1: अब तो काफी कुछ चीजें हम आत्मनिर्भर भी हो चुके हैं, उस समय इस चीज को कोची में डेवलपमेंट शुरू किया गया और आज मुझे खुशी है कि वहां पे 20 स्टेशन में इस प्रकार के कंफर्टेबल बोर्ड्स और रेलवे स्टेशन वगैरह तमाम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। अब ये एक हमारे लिए नया अवसर पैदा हो गया और नया अवसर ये पैदा हो गया कि इसके हिसाब से अब आप हमारे देश में ऐसे बहुत सारे, क्योंकि हमारे देश में करीब 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और उसमें कई सारे जगह पे इस प्रकार की चीजें हैं, तो अगर जहां पे है तो वहां पे ऐसे 18 शहर चुने गए हैं जहां पे इस प्रकार की वाटर मेट्रो की सुविधा हो सकती है। इसी में मैं आपको एक और चीज बताऊं कि केवल वाटर मेट्रो के अलावा अब एक नई चीज पहले बार देश में होने जा रहा है, उसमें अगेन मैं एज ए सचिव मुझे मौका मिला काम करने का, भारत में पहले बार हमको ट्रांसपोर्ट को एयर के माध्यम से
0: जी।
1: यानी रोपवे, अभी तक हमारे देश में रोपवे का उपयोग होता था, वो कहीं कोई धार्मिक स्थान है वहां पे जाने के लिए लोगों को केवल टूरिस्ट पर्पज से, बकायदे आप अपना सामान लेकर के कहीं से कहीं आप जा सकते हैं। और बनारस में बहुत जल्दी मैं आशा करता हूं कि ये जो रोपवे जो बनेगा, ऐसे शहरों में बहुत कंजेशन, आज लैटिन अमेरिका के कई सारे शहरों में, यूरोप के कई सारे शहरों में रोपवे का उपयोग करते हैं ट्रांसपोर्ट के तौर पे
0: जी।
1: ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नया चीज और पहले बार उनके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहला हमारा देश का जो ट्रांसपोर्ट रोपवे, बहुत जल्दी मैं आशा करता हूं कि शुरू होने जा रहा है।
0: कार्यक्रम में समय कम है, एक एक सवाल आप दोनों से बहुत संक्षेप में, रवि जी आपसे समझना चाहेंगे कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो बॉर्डर एरियाज हैं हमारे, चाहे वो लद्दाख हो, अरुणाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो या उत्तर पूर्व के सीमावर्ती क्षेत्र हो, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 2014 के बाद हमने देखा है कि वहां भी बहुत तेजी से विकास हो रहा है, किस तरह देखते हैं इस बदलाव को?
2: आनंद जी देखिए, पिछली सरकारों की जो नीति थी उस नीति को बिल्कुल मोदी सरकार ने उलट दिया है। मुझे याद है कि 2013 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने पार्लियामेंट में बताया था कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास इसलिए नहीं करती है केंद्र सरकार कि कहीं जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करें और उसका फायदा हमारे दुश्मन न उठा लें, इसलिए जैसा है दूभर को दूभर बना रहने दीजिए। लेकिन 2014 में अगले साल मोदी सरकार केंद्र में बनते ही ये नीति बिल्कुल आमूल चूल बदल दी गई और अब स्थिति ये है कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, वहां सुरंगों का विकास, अटल टनल और बहुत सारी सुरंगें बनाई जा रही हैं जो आपातकाल में बिगड़े हुए मौसम में सेना के आवागमन को बहुत सुगम बनाती हैं, बहुत सारे बंकर सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों को जो बसे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे स्थानीय स्तर पर काम किए जा रहे हैं, सड़कें बहुत मजबूत और पक्की बनाई जा रही हैं, और इसके अलावा जो हमारे रोड कनेक्टिविटी की बात हम कर रहे थे, हम वहां भी देखते हैं कि उनको इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि हमारे हवाई जो हमले करने में सक्षम जो विमान है, लड़ाकू विमान, उन पर टच लैंडिंग कर चुके हैं, यानी उतर सके हैं अगर ऐसी स्थिति हो तो। तो सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के मामले में मोदी सरकार बहुत प्राथमिकता दे रही है और पिछली सरकारों के तमाम नीतियों के उलट ये काम अब वहां हो रहा है।
0: मिश्रा जी, कार्यक्रम के समापन में बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की गति है इस देश में, उससे विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में कितना हमें आसानी होने वाली है।
1: मैं इसके पहले एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, जो फ्रीट कॉरिडोर, क्योंकि हमने अभी तक मोबिलिटी जो है पैसेंजर मोबिलिटी की ज्यादा बात की, जो हमारा डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर ईस्टर्न और वेस्टर्न बनकर के लगभग तैयार हुआ, 2800 किलोमीटर से ज्यादा है। इससे पूरा का पूरा एक हमारा फ्रीट ईस्ट से लेकर वेस्ट, वेस्ट से लेकर के ये सारा इतना बड़ा ये फैसिलिटी बन गई है। और नया इसके बाद फिर से अभी सूरत से लेकर के दुला वो भी प्रारंभ किया गया, उसको शुरुआत का अनाउंस किया गया। तो देश में हमारा लॉजिस्टिक का मूवमेंट इतना आसान किया गया जिससे लॉजिस्टिक का कॉस्ट बहुत हमारा कम हो जाएगा। देखिए, कोई भी देश आगे बढ़ता है तब जबकि उसके लिए ऐसा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए जिससे लोगों का मूवमेंट आसान हो जाए, गुड्स का मूवमेंट आसान हो जाए, सारा का सारा प्रोसेसेस हमारे आसान हो जाए और वो सब कुछ बनकर के तैयार है या तैयार होता हुआ दिख रहा है। देखिए, हम बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि 100% हम वहां पहुंच चुके, तैयार होता हुआ दिख रहा है और ये सारा का सारा जो धरातल तैयार की जा रहा है ताकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 में भारत को विकसित बनाने का, वो हम विकसित होकर के रहेंगे। क्योंकि जब ये सब कुछ हो जाएगा तो एक तरफ हमारा मेक इन इंडिया हो रहा है, मेक फॉर द वर्ल्ड हो रहा है, एक तरफ हम जितनी सारी नई टेक्नोलॉजीज है, आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, सब में हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे ग्रीन एनर्जी हो, हर तरह की हर चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम सब चीजों को बिल्कुल आसान कर दे, मैंने ये लुब्रिकेशन कहेंगे, ये इकोनॉमी को लुब्रिकेशन लुब्रिकेट कर रहा है। एक और भी बड़ा इसका इंपॉर्टेंट पहलू है, ये सारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर से इतना बड़े लेवल पे रोजगार क्रिएट हो रहा है
0: जी,
1: और उस रोजगार के क्रिएट होने से लोगों की इनकम बढ़ रही है
0: जी।
1: तो एक इनकम तो इकोनॉमी के ग्रोथ से हो रहा है, दूसरा इसके वजह से तमाम सारे हमारे जो नौजवान है, जो हमारे युवा ज्योति, जो नए आजकल के बच्चे पढ़कर निकल रहे, उनके लिए इतना बड़ा रोजगार का साधन भी इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उनको नए साधन क्रिएट कर रहा है। ये हमारे देश की बदलती हुई तस्वीर है। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आपका जन सेवा से देश सेवा की बात है, वो इस प्रकार की चीज करके आज देश को हमारे एक नए लेवल पे, एक नए भारत को, आत्मनिर्भर भारत, एक विकसित भारत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं।
0: बिल्कुल, जब बुनियादी ढांचे के पहिए तेजी से घूमते हैं तो पूरे देश की प्रगति को नई रफ्तार मिलती है। आज भारत सिर्फ रास्ते नहीं बना रहा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के समृद्ध भविष्य की नींव रख रहा है। डॉक्टर मिश्रा, आपका, रवि पाराशर आपका, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद। धन्यवाद आनंद जी।
0: ये थी बुनियादी ढांचे की वो नई रफ्तार जो आज भारत के हर कोने को एक दूसरे से जोड़ रही है और देश को आत्मनिर्भरता के साथ साथ समृद्धि के मार्ग पर आगे भी बढ़ा रही है। जनसेवा से देश सेवा के इस विशेष श्रृंखला के आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 23वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और राजनीतिक विश्लेषक रवि पाराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 10 बज चुके हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल सवेरे 8:51 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।